सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। प्रातः के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बताते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। शीर्षक होगा दयानंद सरस्वती। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:10 से। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का वाचन। आज आप सुनेंगे इसमें सूक्त 156। भक्ति संगीत का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 और संध्या 6:30 पर। शीर्षक होगा देवगढ़ किले की सुरक्षा व्यवस्था। योग संवाद कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग वाशिष्ठ, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के दोष। इसका भाग 75 आज सुना जा सकेगा। प्रसारण समय होगा सुबह 9 और संध्या 7। नौ बजकर 30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भारत विभूति। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे अर्थात बाबा आमटे पर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, जिसमें आज टूरिया जंगल सत्याग्रह सुना जा सकेगा। माधवी मधुकर झा का भक्ति गायन आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसागर में। प्रसारण समय दिन में 11:00 और रात्रि 9:00। 11:30 का समय रहेगा युग प्रवर्तक विवेकानंद का 83वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें आज आप रेडियो आजाद हिंद से सुनने वाले हैं। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रातः 7:00 से रात्रि 10:00 तक निरंतर सुन सकते हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ।

दंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। वे सत्य के पुजारी थे और अहंकार व पाखंड से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था और उनसे शिक्षा पाने दूर दूर से लोग आते थे। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था, किंतु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता था, जिसमें मात्र गुड़ और भुने हुए चने होते थे। रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें कम ही दी जाती थी, जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत में इसकी निंदा भी करते थे, किंतु दयानंद को गुरु की निंदा असहनीय थी। वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो वे मौन ही रहे। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ कराने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को बुलाकर के उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया, किंतु सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बैठाया गया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। सभी शिष्यों पर दयानंद भारी पड़े और जीत गए। तभी दंडी स्वामी ने शेष शिष्यों से कहा, देखा आप लोगों ने, दयानंद अकेला आप सबसे लोहा ले सकता है, क्योंकि वह हर काम पूर्ण समर्पण से करता है। दयानंद खरा सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चल करके भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुई।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 156 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विष्णु और छंद है जगति।
2: भवा मित्रो न शेव्यो घृतासु तिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथाः अधाते विष्णो विदुषा चिदर्घ्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता। हे विष्णुदेव, आप जल के उत्पादन करता, अति देदीप्यमान, सर्वत्र गतिशील, अति व्यापक तथा मित्र के सदृश ही हितकारी सुखों के प्रदाता हैं। हे विष्णुदेव, इसके पश्चात मनुष्यों द्वारा हविष्यान्न समर्पित करते हुए संपन्न किया गया यज्ञ स्तुति योग्य है। ज्ञान संपन्न मनुष्यों द्वारा आपके प्रति कहे गए स्तोत्र सराहनीय है। यह पूर्व्याय वेद से नवीय से सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर युज्यम चिदभ्यसत। जो अनंत काल से ज्ञान रूप एवं सदा नवीन दिखते हैं तथा जो सद्बुद्धि के प्रेरक हैं, उन विष्णुदेव के लिए हविष्यान्न अर्पित करने वाले मनुष्य कीर्तिमान होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। तमुस्तोतारः पूर्व्यम् यथाविद ऋतस्य गर्भम् जनुषा पिपर्तन आस्य जानन्तो नाम चिद् विक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम् भजामहे। हे स्तोताओं, यज्ञ के नाभि रूप चिर पुरातन उन विष्णुदेव से संबंधित जिस भी ज्ञान से आप परिचित हों, उसी के अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इनके तेजस्वी पराक्रम से संबंधित जानकारी के अनुरूप आप इनका वर्णन करें। हे सर्वत्र व्यापक देव, हम आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं के अनुगामी बने। तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुम सचन्त मारुतस्य वेधसः दाधार दक्ष मुत्त मम हविर्विदम व्रजम च विष्णुः सखिवाम अपोर्णुते। सर्वज्ञ विष्णुदेव के साथ तेजस्विता संपन्न वरुण और अश्विनी कुमार देवता भी कर्मरत रहते हैं। मित्रों से युक्त सूर्य रूप विष्णुदेव अपनी श्रेष्ठ सामर्थ्य से दिवस को प्रकट करते हैं, आवरण को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आयो विवाय सचथाय दैव्य इंद्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः वेधा अजिन्वत त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमान मा भजत। दिव्यलोक में निवास करने वाले श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वालों में सर्वोत्तम विष्णुदेव, श्रेष्ठ कर्मशील इंद्रदेव का सहयोग करते हैं। तीनों लोकों में व्याप्त ये विष्णुदेव श्रेष्ठ पुरुषों को तुष्ट करते हैं, यज्ञकर्ता के पास स्वतः पहुंच जाते हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 156 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात ईश्वर में परम प्रेम ही भक्ति है। भक्ति कोई रास्ता नहीं बल्कि स्वयं में लक्ष्य है। ईश्वर को हम जान सकते हैं ज्ञान को प्राप्त करके, कर्म से उन्हें पा सकते हैं, लेकिन भक्ति से हम ईश्वर के ही हो जाते हैं।

कलिकराल कलिमल दहन नाम प्रताप प्रचंड, अर्थात कलयुग के पाप सिर्फ नाम से ही जल जाते हैं, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए।

भक्ति में मैं नहीं होता, तू होता है। और जब तक मैं, मेरा, मुझे ये सब चलता है, तब तक हमारे मन में अशांति रहती है। जैसे ही हमारा ध्यान तू, तेरा पर गया, तो हमारा मन ठहर जाता है,

0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। एक छोटे से अंतराल के बाद हम लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

19वीं सदी में जब वंदे मातरम गीत की रचना हुई तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये गीत नारा बनकर पूरे हिंदुस्तान में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनका आधा बांग्ला और आधा संस्कृत में लिखा ये गीत उनकी पहचान बन जाएगा। बंकिम चंद्र का लिखा गीत वंदे मातरम स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। बंकिम चंद्र ने इस गीत में स्वदेश प्रेम को साकार रूप देने का माध्यम माँ को बनाया। वे एक बंगाली हिंदू थे जो माँ या स्त्री को दुर्गा रूप में पूजते थे। शायद यही बात उनके इस गीत में परिलक्षित हुई। एक बार बंकिम ने कहा था कि शायद मेरे मरने के बाद लोगों को इस गीत का आशय समझ में आए, और हुआ भी वही। उनके मरने के पश्चात ये गीत आजादी के आंदोलन का एक ओजस्वी स्वर बन गया। बंग भंग आंदोलन में ये गीत क्रांति का शोला बनकर भड़क उठा।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल स्थित 24 परगना के कांठाल पाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय था, जो कि मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे। उनके पिता अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी साधु संन्यासियों के प्रति काफी श्रद्धावान थे। शायद यही गुण बंकिम ने अपने पिता से ग्रहण किया। सरकारी नौकरी में होने के कारण उनके पिता को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत के भी संस्कार दिए। शायद यहीं से बंकिम के मानस पर भारतीय संस्कृति की छाप अंकित हो गई। बंकिम चंद्र के परिवार में उनकी माँ दुर्गा देवी, बड़े भाई श्यामाचरण, संजीव चंद्र और बहन नंदरानी के अलावा उनके सबसे छोटे भाई पूरन चंद थे। बंकिम चंद्र का विवाह राजलक्ष्मी से हुआ और उनकी 3 पुत्रियां हुई। बचपन से ही बंकिम का झुकाव साहित्य की ओर था और उन्होंने लगभग 15 साल की आयु में लेखन आरंभ कर दिया। विद्यार्थी काल में ही उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिनका नाम था ललिता और मानसी। बंकिम के भीतर कवि की अपेक्षा उपन्यासकार अधिक बलवान था। उनका पहला उपन्यास राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके उपरांत उनका सारा साहित्य बांग्ला भाषा में लिखा गया। बंकिम चंद्र ने सन 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये गौरव प्राप्त करने वाले वे पहले स्नातक बने। उनकी पढ़ाई कलकत्ता के प्रख्यात हिंदू कॉलेज से हुई, जिसे सन 1885 से प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाने लगा। यहाँ पर उनके सहपाठी थे केशव चंद्र सेन और सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई ईश्वरचंद विद्यासागर जैसी विभूति से। स्नातक होने के बाद उनका चयन डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ और फिर डिप्टी कलेक्टर बनकर वे बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के रूप में लोकप्रिय हो गए। नौकरी के साथ साथ उनकी साहित्य सेवा अनवरत चलती रही। उनके साहित्य का कुछ श्रेय सरकारी नौकरी को भी जाता है। सरकारी नौकरी में होने के कारण एक ओर उनका संपर्क समाज के विभिन्न वर्गों से हुआ, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अंग्रेज अधिकारियों के आंतरिक कारनामों की प्रत्यक्ष जानकारी मिली। वे निष्ठावान और कठोर प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने न तो सुंदरवन के चोर डाकुओं पर शिकंजा कसने में कोई हिचक की और न ही गलती करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को बख्शा। इस कारण बंकिम चंद्र का तबादला जल्दी जल्दी हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। यह उनकी चतुराई का ही परिणाम था कि अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी उन्होंने अंग्रेज विरोधी साहित्य रचा।

26 वर्ष की आयु में बंकिम चंद्र ने दुर्गेश नंदिनी लिखी। ये उनका पहला बांग्ला उपन्यास था जो 1865 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास बेहद लोकप्रिय हुआ और बंकिम चंद्र के जीवन काल में इसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए। बंकिम चंद्र का दूसरा उपन्यास था कपाल कुंडला जो 1866 में प्रकाशित हुआ। सन 1869 में स्वदेश प्रेम पर आधारित उपन्यास मृणालिनी का प्रकाशन हुआ। ये उपन्यास शिक्षित वर्ग में काफी लोकप्रिय हुआ। इस उपन्यास का प्रमुख आकर्षण इसमें निहित काव्य गुण था। आज भी इस उपन्यास के गीत ग्रामांचलों में सुने जा सकते हैं। बंकिम चंद्र का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ। बांग्ला समीक्षकों ने पहले तो इस उपन्यास की कड़ी आलोचना की, लेकिन धीरे धीरे इस उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ने लगी। आनंद मठ उपन्यास का आधार था सन 1776 में हुआ सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में जो कुछ भी लिखा गया वो सब प्रामाणिक था। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि बंकिम चंद्र के जीवन काल में इसके 5 संस्करण प्रकाशित हो गए। 1763 के बाद 1780 तक के काल में ढाका, उत्तरी बंगाल, नेपाल का तराई प्रदेश, दिलाजपुर, रंगपुर और पूर्णिया क्षेत्रों में हुए सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित कागजातों और दस्तावेजों के आधार पर आनंद मठ उपन्यास का जन्म हुआ। 1882 तक बंकिम चंद्र के अनेक उपन्यास और लेख प्रकाशित हो चुके थे। धीरे धीरे उनका रुझान धार्मिक विचारों की ओर हुआ। नौकरी के कारण लेखन में आ रही कठिनाइयों ने उन्हें नौकरी से त्याग पत्र देने पर मजबूर कर दिया। सन 1891 में वे रिटायर हुए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। इस कार्यक्रम की 14वीं कड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। हर बार की तरह हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पूजा सक्सेना यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका एक बार फिर से।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, हम गोंड राज्य शासन के बारे में बात कर रहे हैं 13वीं कड़ी में, यानी कि अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि छिंदवाड़ा, आज के छिंदवाड़ा में जो देवगढ़ का गोंड राज्य तब हुआ करता था, जाटवा अजानबाहू की हमने कथा सुनी जिन्होंने देवगढ़ का गोंड राज्य स्थापित किया था। उन्होंने किले का दरवाजा अपने हाथों में उठा लिया था और गवली बंधुओं का वध कर वो देवगढ़ राज्य के राजा बने थे। पिछले एपिसोड में ही पूजा जी ने हमें बताया कि उन्होंने किले के निर्माण के लिए स्थान का चुनाव किस प्रकार किया, ऊंची पहाड़ी चुनी और पहाड़ी के ऊपर जल की उपलब्धता भी थी, जानबूझकर देवगढ़ किले तक पहुंचने के लिए सर्पिलाकार मार्ग बनाया और बहुत सारे दरवाजे बनाए ताकि दुश्मन आसानी से किले तक पहुंच नहीं सके। हमने बात की हाथी दरवाजे की और इसके साथ ही हाथियों के लिए मुगलों की चाहत की। मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच मध्य हुए 5 पत्र व्यवहारों की हमने बात की, जिसमें हमने विचित्र हाथी जटाशंकर, जिसके बारे में जनश्रुतियां थी कि वो बहुत विचित्र हाथी है, विशाल हाथी है, बहुत शक्तिशाली है और वो देवगढ़ गोंड राज्य के पास है, उसे हासिल करना चाहते थे शाहजहां और जिसके लिए औरंगजेब को उन्होंने नियुक्त किया हुआ था। इसके साथ ही हमने बात की देवगढ़ किले के अंदर स्थित कचहरी की, जहां पर राजा विराजमान होते थे, नक्कार खाने की, जहां राजा के आगमन पर नगाड़े बजते थे, बादल महल और उसमें स्थित टेराकोटा पाइपलाइंस की और उससे चलने वाले फव्वारों के पीछे के विज्ञान की, और साथ ही किस किले के परिसर को किस तरह सुरक्षित किया जाता था। लेकिन अब हम इसी बारे में, सुरक्षा के बारे में विस्तार से आज जानेंगे डॉक्टर पूजा सक्सेना से। तो सबसे पहले पूजा जी से यही पूछते हैं कि किले की जो सुरक्षा थी उसके क्या इंतजाम थे।
1: जैसा हमने पिछली बार भी बात की थी कि किले को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची पहाड़ी का चयन किया गया और ऐसी पहाड़ी जिस पर पानी की उपलब्धता हो, रसद हो, आसपास जंगल था, खेत रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन किले की सुरक्षा का खतरा तो हमेशा ही मंडराता रहता है, इसलिए किले को बहुत सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाई जाती हैं। तो देवगढ़ के किले में भी हमने देखा सर्पिलाकार मार्ग है और उस पर जाते हुए कई सारे दरवाजों से होकर हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन ठीक है, दरवाजे तक तो आप अंदर आ गए, लेकिन इन दरवाजों से जुड़ी हुई पहाड़ी पर चारों ओर ऊंची ऊंची किले की दीवारें हैं, जिसे हम नॉर्मली फोर्टिफिकेशन वॉल बोलते हैं, है ना। और ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, किले की दीवार आपने देखी ही होंगी कैसी होती हैं, चौड़ी और ऊंची दीवारें और उसके ऊपर कंगूरे बने होते हैं ना, जहां से चौकसी के दौरान देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक और बात जो मैंने देवगढ़ के किले की दीवार में देखी वो ये थी कि दीवारों में स्लिट्स बने हुए हैं, यानी आयताकार छेद, लंबे लंबे छेद,
0: जिससे कि कुछ हथियार निकाले जा सके, वो तोप या बंदूक भी निकाल के इस्तेमाल की जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन स्लिट्स का इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, हथियार चलाने के लिए होता है और दूसरा निगरानी रखने के लिए भी होता है
0: जी।
1: तो यहाँ पर खास बात क्या है कि एक एक स्लिट्स में के तीन तीन पार्ट्स हैं
0: जी,
1: तीन, कहीं पांच और कहीं कहीं तो 7 भी देखे मैंने। अगर आप किले के अंदर से इन स्लिट्स से बाहर की ओर देख रहे हैं, किले के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी नजर जम जाएगी। यानी कि अगर कोई शत्रु इस जगह से आ सकता है, स्लिट से देखने पर बिल्कुल वही जगह आपको दिखाई देती
0: है। ये तो बिल्कुल मतलब किसी कैमरे के व्यू फाइंडर की तरह हो गया।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, ऐसा ही है। एकदम इतना सटीक निर्माण कैसे किया होगा, ये तो बहुत, मुझे तो लगता है कि ये बड़ी ज्ञान परंपरा की बात है जो परंपरागत रूप से सदियों से चलती आ रही होगी, लेकिन देवगढ़ किले में उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो हम देखते हैं कि किले की सिर्फ एक ही दीवार नहीं है, ये जो पहाड़ी है ये तीन ओर से बिल्कुल खड़ी हुई है, यानी इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ओर से पहाड़ी थोड़ी ढलवा है, तो जिस ओर से पहाड़ी ढलवा है वहां दोहरी दीवार बनाई गई है, यानी कि कई सुरक्षा चक्र होंगे। अगर पहाड़ी पर दुश्मन सेना चढ़ भी गई है तो पहले एक दीवार को पार करना होगा, यदि उसमें वो सफल हो जाती है तो फिर दूसरी दीवार की चुनौती उसको मिलेगी। तो इस तरीके से दोहरी दीवार उस तरफ है जहां ऊंची पहाड़ी है
0: जी।
1: और इन दीवारों में बहुत सारे बुर्ज भी बने हैं। पहले हमने बात की थी एक बुर्ज की, जिस पर मैंने बताया था कि चंडी देवी का मंदिर भी बना हुआ है
0: जी।
1: क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमने जाटवा की कहानी भी सुनी थी जिसमें उन्होंने भैंस का वध करके शक्ति प्राप्त की थी। ये चंडी देवी का मंदिर एक बुर्ज पर है, पर वास्तव में ये बुर्ज जो है सुरक्षा चौकियों की तरह होते हैं जो किले के ऊपर से खड़े होकर सैनिक नीचे की तरफ देखते हैं, चारों ओर निगरानी जी, रखते हैं। तो एक तो ये वाली बुर्ज है और इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए चौड़ी रैंप बनी हुई है। आपको मालूम होगा कि ये रैंप इसलिए बनाई जाती है कि जो तोप होती है उसको धका धका के ऊपर तक बुर्ज के ऊपर सेटल कर देते हैं, तो फिर वो बुर्ज जो है कई दिशाओं में वार करने लायक हो जाती है ऊंचाई से। तो इसी तरीके से और भी कई सारी बुर्ज हैं, लेकिन जहां ये चंडी देवी वाला बुर्ज है उसके बिल्कुल अपोजिट एक और बुर्ज है।
0: अच्छा,
1: मुझे याद है कि मैं 2003 में काम कर रही थी देवगढ़ किले में, तो जहां हम लोगों को बड़ी समस्या होती थी पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ के जाना, हांफ जाते थे और बड़ा दुर्गम लगता था, यहाँ तक कि गाड़ी भी जो है हांफने लगती है, बड़ी धीमे धीमे धीमे चढ़ती थी। लेकिन वहां के जो गोंड थे वो इतनी तेजी से पैदल चढ़ते हुए पहाड़ी पर आ जाते थे और कई बार उतर जाते कई बार चढ़ जाते
0: जी।
1: उनके लिए तो मतलब जैसे वो एक समतल रास्ता हो
0: जी।
1: हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। एक और चीज मैंने वहां पर देखी कि मैं जब काम कर रही थी तो कुछ गोंड लड़के भी हमारे साथ में काम कर रहे थे, तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि किसी एक बुर्ज पर अगर आप खड़े होकर एक खास तरीके की आवाज निकालें
0: जी।
1: जैसा कि उन्होंने करके दिखाया कि वो एक बुर्ज पर खड़े हो गए और उसने जैसे पक्षी की आवाज होती है इस तरीके
0: जी।
1: की साउंड निकाली अपने मुंह से,
0: जी।
1: तो वो लगभग 5 किलोमीटर दूर पर सुनाई दी और वहां कोई गोंड खड़ा होगा तो उसने भी आवाज निकाली और हमें सुनाई दी, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर
0: आवाज पहुंच कैसे रही है बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के, माइक्रोफोन के। ये तो वाकई ध्वनि विज्ञान के भी मतलब बहुत बड़े जानकार थे।
1: हाँ, ध्वनि विज्ञान के जानकार हैं, उसका उपयोग करना जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में आप किले से जो सामने वाली पहाड़ियां हैं वहां तक यदि संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो उस तरीके विविध प्रकार की उन्होंने उस तरह की कई आवाजें सुनिश्चित कर रखी होंगी जिनका उपयोग करके आपस में बात की जा सकती होगी, संकेत दिए जा सकते होंगे कि सुरक्षित है या सुरक्षित है, कि कोई भी इस तरीके के मैसेज उसके माध्यम से दिए जाते होंगे।
0: मात्र किले के अंदर और ऊपर ही ऐसे लोग नहीं थे जो नीचे नजर रख रहे थे, समतल भूमि पर भी 5 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं कि ऐसे लोग तैनात रहते थे जो अगर किसी भी गतिविधि को ऐसे देखें और उन्हें किले तक पहुंचने में क्योंकि वक्त लगेगा तो ऐसी कुछ आवाजें निकालते जो किले तक पहुंच जाएं और किले से वो आवाजों का प्रत्युत्तर दिया जाता था।
1: बहुत ही ये ध्यान देने योग्य बात है, अब धीरे धीरे लोग इसको भूलते जा रहे हैं कि ये होता कैसे था, आवाजें किस तरीके की निकाली जाती थी। इसके साथ ही मैंने देखा कि उनको औषधि का भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। हम लोग देव उठनी ग्यारस करते हैं ना
0: जी, जी।
1: जो देव उठनी ग्यारस है उससे पहले आपको बहुत सारी परिक्रमाएं करनी है और ज्ञान को दोबारा अर्जित करना, ये वो समय होता है
0: जी।
1: ऐसा हम लोग हमारी परंपरा में है, तो मैंने यहाँ भी देखा कि जो गोंड हैं वो भी इन दिनों में जगह जगह घूमते हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब किसी पहाड़ पर चले गए, किसी नदी तक चले गए और करते क्या है, ये लोग औषधियां ढूंढते हैं, औषधियों के बड़े अच्छे जानकार हैं और उन औषधियों को बटोरते हैं और फिर साल भर उनका उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से।
0: अच्छा।
1: तो वो भी एक ज्ञान परंपरा इनके साथ में जुड़ी हुई है।
0: तो श्रोताओं, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें पूजा जी के माध्यम से मिल रही हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 14वीं कड़ी आप सुन रहे हैं जी। पूजा जी, हम बहुत उत्सुक हैं आगे की कहानी जानने के लिए, आगे के बारे में विस्तार से बताइए।
1: अच्छा, देवगढ़ की दीवार के बारे में मैं एक बात और बता दूं। यहाँ एक और चीज मैंने खास देखी
0: जी।
1: कि दीवार क्योंकि बहुत चौड़ी होती है तो उसमें कई कक्ष निकल आते हैं जो कि सैनिकों के रहने के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि दीवार में कुछ कक्ष ऐसे भी हैं छोटे छोटे जो कि टॉयलेट की तरह यूज किए जाते थे।
0: अच्छा, मतलब उस जमाने में उन्होंने टॉयलेट्स का निर्माण किया था वहाँ।
1: जी हाँ, 400-500 साल पहले टॉयलेट्स बने हुए हैं जिसका जो मैला है वो किले के बाहर जिस तरफ उपयोग नहीं होता, जंगल है, उस तरफ निकल जाया करता होगा।
0: लेकिन पूजा जी, पानी का भी बहुत अच्छा उपयोग किया, पाइप्स के बारे में आपने बताया कि इस किले में किस तरह से पाइप्स और फव्वारे वगैरह चलते थे। लेकिन एक तो उस समय हम बहुत बार सुनते हैं कि न सिर्फ उस समय बल्कि आज़ादी के समय भी, और गांधी जी ने भी इस बात का, इस परंपरा का बहुत विरोध किया था, क्योंकि हम तो ये तक सुनते हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में मैला ढोने की परंपरा रही है, तो क्या ये उस वक्त नहीं थी इस किले में?
1: जी हाँ, मैला ढोने की परंपरा भारतीय नहीं है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ, आपने सुना होगा, बल्कि अब तक बहुत कुछ समय पहले तक भी हम देखते थे कि खुले में शौच जाने की परंपरा है
0: जी।
1: और भारत में टॉयलेट निर्माण की परंपरा तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दिखाई देती है
0: जी।
1: ये मैला ढोने की जो परंपरा आई ये बहुत बाद में थी। जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण होने लगे तो जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते थे किसी भी कीमत पर, उनको सजा के तौर पर ये दिया जाता था कि उन्हें अपने सर पे मैला ढोना पड़ेगा,
0: तो उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए ये बनाया गया।
1: बिल्कुल, मतलब ये जानकर हैरानी होती है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर धर्मांतरण नहीं किया और वो मैला तक ढोने के लिए तैयार हो गए।
0: पूजा जी, आपने किले के अंदर तो जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा दीवार, दोहरी सुरक्षा दीवार, इसके बारे में बताया, लेकिन किले के बाहर किस तरह की सुरक्षा थी, बिल्कुल इर्द गिर्द, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जो गोंड किले होते हैं
0: जी,
1: उनका सुरक्षा चक्र तो जैसे देखने लायक होता होगा, और अभी भी उसके अवशेष हैं
0: जी,
1: तो हम जान सकते हैं शोध के माध्यम से कि ये कैसे होता होगा। तो हम अगर देवगढ़ के किले को ही उदाहरण के तौर पर देखें, किला तो अपने आप में सुरक्षित है ही, लेकिन चारों दिशाओं में कुछ दूरी पर और भी चौकियां बनाई गई थी। जैसे यहाँ देवगढ़ का किला है
0: जी,
1: तो उसके बाहर पूर्वोत्तर दिशा में हम देखते हैं कि कुसुम घाट नाम की एक चौकी है।
0: अच्छा।
1: उसके अवशेष आज भी हैं।
0: अच्छा।
1: और उत्तर में एक कालकोट चौकी है। पश्चिम दिशा में अगर सुरक्षा चाहिए तो सूर्य कुंड चौकी है
0: जी।
1: और दक्षिण की तरफ से जौवनी चौकी सुरक्षा दिया करती होगी। तो ये इसको घेरते हुए चारों दिशाओं में जहां आवश्यकता थी वहां पर चार चौकियां स्थापित कर दी। इन चौकियों को आप गढ़ी भी बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत जगह आपको गढ़ी सुनाई
0: शब्द बुंदेलखंड में खास तौर पर गढ़ी शब्द का इस्तेमाल होता है।
1: जी हाँ, छोटे किले जी। तो ये जो गढ़ियां हैं या चौकियां हैं, अब देवगढ़ में इनके बाद इनको घेरते हुए दो नदियां भी हैं।
0: अच्छा।
1: और नदियां इनको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करेंगी। तो जैसे हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा है तो वहां पर से कान्हा नदी बहती है, तो इसने दो दिशाओं को सुरक्षित कर लिया। और उत्तर और पूर्व की दिशा देखेंगे तो वहां पर पेंच नदी बहती है।
0: अच्छा।
1: तो ये चारों दिशाओं को नदियों ने सुरक्षित कर लिया। अब इसके बाद बहुत घना जंगल है
0: जी।
1: तो जंगल अपने आप में बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें जंगली जानवर होते हैं, उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होता है, सेनाओं का मूवमेंट मुश्किल होता है, तो ये अपने आप में सुरक्षा देता है। अब इतना ही नहीं है, अगर देवगढ़ के सुरक्षा चक्र को और दूर तक देखा जाए, 100-200-250 किलोमीटर की दूरी पर
0: जी,
1: तो भी आपको गोंड किलों की एक ऐसी श्रृंखला दिखेगी जो कि वृत्त में है, मतलब चारों दिशाओं से सुरक्षित कर देगी। जी हाँ, गोलाकार है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर में गोंडों का किला है चौरागढ़, आजकल नरसिंहपुर जिले में
0: जी।
1: इसी तरीके से पूर्वोत्तर में देखें तो आज का जो सिवनी जिला है वहां पर छपरा का किला है।
0: अच्छा।
1: और पूर्व में देखें तो लांजी का किला है, ये बालाघाट जिला है आजकल
0: जी जी।
1: और इसी तरीके से दक्षिण पूर्व में अगर हम देखें तो सानगढ़ी का किला है
0: जी।
1: इसी और प्रतापगढ़ का किला भी है जो गोंदिया जिले में।
0: ये तो महाराष्ट्र पहुंच गए हम।
1: जी हाँ, महाराष्ट्र तक जी। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो देवगढ़ से दक्षिण दिशा में अंबागढ़ का किला है
0: जी।
1: और इसी ओर पवनी का किला भी है जो भंडारा जिले में है महाराष्ट्र के
0: जी।
1: तो इस तरीके से पूरी एक श्रृंखला बनते हुए अब हम पहुंच जाते हैं नागपुर।
0: अच्छा।
1: और नागपुर में नागपुर का खुद किला है जो कि एक हिस्सा उसका गोंड है, और दूसरा उमरेड़ की गढ़ी भी है नागपुर में।
0: अच्छा।
1: और अगर हम यहाँ से पश्चिम जाएं देवगढ़ से, खेरला का किला है आजकल बैतूल जिला जिसे हम कहते हैं, और पश्चिमोत्तर में फतेहपुर का किला है होशंगाबाद जिले में।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इस तरह ये पूरे किलों ने देवगढ़ के किले को घेर रखा है और ये सभी गोंड किले हैं। तो ये एक विस्तृत सुरक्षा चक्र की तरह हमें धरती पर दिखाई देता है।
0: तो न सिर्फ देवगढ़ का किला, मान लीजिए अगर होशंगाबाद के किले पर आफत आती है तो दूसरी जगह से भी कोई सहायता मिल सकती
1: जी
0: है।
1: हाँ।
0: तो सभी किले एक दूसरे को एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए सुरक्षा चक्र ये बना हुआ है।
1: जी हाँ, हर किले का अपना एक सुरक्षा चक्र है और वो दूसरे से भी मिक्स होता है
0: जी।
1: तो इस तरीके से एक पूरा जाल जैसा है।
0: क्या बात है, ये बहुत हैरत की बात है। तो देवगढ़ के किले के चारों ओर आपने बताया कि छोटी छोटी गढ़ियां थी, इसके अलावा क्या था? और
1: किले की पहाड़ी की ढलान पर अगर हम देखें
0: जी,
1: तो कई सारी मढ़िया दिखाई देती हैं।
0: अच्छा,
1: ये मढ़िया क्या है? छोटे छोटे कक्ष हैं जिनकी वॉल्ट छत है या गुम्बजाकार छत है। एक तो इनमें से राजा जाटवा की समाधि है।
0: अच्छा,
1: तो उस समय समाधि कैसे बनाई उन्होंने कि एक कक्ष है और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो राजा जाटवा शिव के बड़े भक्त रहे होंगे ऐसा लगता है उसको देखकर। तो ऐसी कई सारी समाधियां हमको कई सारे राजाओं की या राज परिवार की किले की पहाड़ी की ढलान पर दिखाई देती हैं। और जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो आज भी वहां पर पुराने गांव हैं जिसमें आज भी लोग रहते हैं और आसपास सागौन का बड़ा घना जंगल है। पर किले से जब हम नीचे उतरे तो कई सारी बावड़ियां हैं जो उस समय पानी के लिए उपयोग आती होंगी। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए भी बावड़ियों का उपयोग होता था क्योंकि वहां ठंडक रहती है।
0: अच्छा,
1: तो गर्मियों में वहां पर बैठ गए। तो ऐसी कई सारी बावड़ियां वहां पर हैं, कई सारे तालाब भी हैं जिनमें वर्षा का जल संग्रहित होता होगा, यानी कि एक एक बूंद को संग्रहित करके साल भर के लिए रखा जाता था। आज भी ये तालाब और बावड़ियां हैं। इसमें से एक तो चोर बावड़ी है। जी हाँ, चोर बावड़ी। बड़ी सारी किंवदंतियां हैं उसमें, किसी चोर की कहानी है, किसी की कहानी है। लेकिन इस तरीके की जो चोर बावड़ियां होती हैं असल में, ये जब राज परिवार यात्राएं करता है या फिर जब युद्ध होते हैं तो उस समय ये छिपने के भी काम आती हैं। तो इनका प्रवेश द्वार कहाँ से है वो पता नहीं चलता, लेकिन जो वहां का रहने वाला उसे मालूम है सिर्फ कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है। तो अंदर ही अंदर निकलते हुए कई सारे कमरे और टनल्स वगैरह होती हैं।
0: हाँ, तो कई तो सारी ऐसी जनश्रुतियां होती हैं कि महल के नीचे से सुरंग थी जो कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, कुछ इसी तरह की बात।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी।
1: तो ये चोर बावड़ी बड़ी देखने लायक है। इसके अलावा मेरा एक बड़ा फेवरेट मॉन्यूमेंट है देवगढ़ का, किले की तलहटी में एक स्मारक है, उसका नाम है किसबन महल।
0: अच्छा
1: जी हाँ। और जैसे हम श्रुतियों में कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं
0: जी,
1: तो यहाँ भी बड़ी ध्यान से इस स्मारक को देखें तो ये कृष्ण का शायद कोई मंदिर रहा होगा।
0: अच्छा
1: हाँ, नाम देखिए किसबन महल, वो कृष्ण वन है।
0: अच्छा, वो अपभ्रंश होते होते वो कृष्ण वन से किसबन हो गया।
1: किसबन हो गया। तो जब हम किले की तलहटी में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा मैनमेड तालाब है
0: जी,
1: तीनों ओर उसके सीढ़ियां बनी हुई हैं और किले की पहाड़ी से बहता हुआ वर्षा का जल इसमें इकट्ठा होता होगा। और एक और ये कृष्ण वन या किसबन बना हुआ है
0: जी।
1: तो ये मंदिर है, बिल्कुल स्पष्ट इसका स्थापत्य है, इसमें गर्भगृह है, उसके शिखर के अवशेष हैं और साथ में ही अंतराल और फिर एक मंडप है। तो वो पूरा के पूरा एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर रहा होगा और साथ ही जो दृश्य बनता होगा ना वो तो देखने लायक होता होगा, क्योंकि आज भी अगर आप जाएं ठंडों में या बारिश के दिनों में तो पूरा दूर दूर तक हरा भरा जंगल दिखाई देता है और उसके पास में ये तालाब पानी से भरा हुआ नीला नीला और उसके पास में ये किसबन महल, तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता होगा। और उस जंगल में जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, खूब चिड़ियों की कलरव की आवाजें आती हैं। मुझे बस एक कमी लगती है, मोर और होने चाहिए थे, बाकी तो वो
0: हो सकता है पूजा जी उस समय रहे हों।
1: जी हाँ, उस समय जरूर रहे होंगे,
0: क्योंकि इतना सुरम्य वातावरण जब आप वर्णन कर रही हैं तो वहाँ मोर फिर कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं नाचेंगे, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी, वहाँ पर जंगली जीव थे, वहाँ पर घना जंगल था, तो निश्चित रूप से वहाँ मोर भी हो सकते हैं। जबकि हम हाथियों की कल्पना तो नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हाथी हुआ करते थे।
1: जी हाँ।
0: वाह, क्या बात है। तो पूजा जी, अब तो ये जो देवगढ़ का किला है ये तो अब हम इस इतिहास की धरोहर मानते हैं, इतिहास की थाती मानते हैं, लेकिन गोंडों का शासन इस किले पर कब तक रहा?
1: सन 1735 में देवगढ़ का राजा था चांद सुल्तान।
0: अच्छा।
1: और 1735 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो दोनों बेटे थे वो अल्पायु थे। इसलिए वो राज्यकाज तो संभाल नहीं सकते थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर एक स्थानीय सेनापति था वली शाह, उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो जो चांद सुल्तान की रानी थी रतन कुंवर, उन्होंने देवगढ़ की रक्षा के लिए नागपुर के रघुजी भोसले को संपर्क किया। आप जानते ही ये काल तो मराठा काल के नाम से भी जाना जाता है, और संपूर्ण भारत में मराठाओं ने इस समय विजय पताका फहरा दी थी। तो रघुजी ने रतन कुंवर के आमंत्रण पर एक युद्ध किया और वली शाह को मार डाला। उसके बाद रघुजी भोसले रानी कुंवर रतन और उनके जो दोनों बेटे थे उनको नागपुर ले गए। अच्छा। क्योंकि अब यहाँ से संचालन करना रतन कुंवर के बस का नहीं था। लगातार शत्रु आग गड़ाए हुए थे देवगढ़ पर, और जब रघुजी उनको नागपुर ले गए तो उन्होंने उनको वहाँ बहुत सम्मान के साथ रखा और उन्हें वो माँ कहा करते थे।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। तो 1738 में रानी रतन कुंवर और रघुजी के बीच में एक संधि भी हुई, और इस संधि के तहत रानी तो उन्हें अपना पुत्र मानती ही थी
0: जी।
1: तो उन्होंने उन्हें अपना पुत्र कहा और जो देवगढ़ राज्य का तीसरा हिस्सा था, अपने दोनों पुत्रों को एक एक हिस्सा दिया और एक तीसरा हिस्सा उन्होंने रघुजी को दिया। तो रघुजी ने उनको उतने ही सम्मान के साथ हमेशा नागपुर में रखा, और इस बीच में ही जो रतन कुंवर के दोनों बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई, वो युद्ध में मारे गए। तो फिर देवगढ़ राज्य मराठा राज्य में विलय हो गया और उसका संचालन फिर नागपुर से होने लगा।
0: तो चलिए, देवगढ़ के किले की हमने बात की, गोंड राज्य की हम बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों से हमारा जो कार्यक्रम है चौदहवीं कड़ी में हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देवगढ़ के किले की कहानी समाप्त होती है। तो अगली बार पूजा जी आप हमें किस किले के बारे में बताने वाली हैं, किस राज्य के बारे में बताएंगी?
1: गोंड राज्य की श्रृंखला में अगली बार हम जानेंगे खेरला का गोंड राज्य।
0: तो चलिए, उत्सुकता तो बहुत हो रही है कि अभी से जान ली, क्योंकि बहुत सारी अनूठी जानकारियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन समय की कमी है। तो आज हम पूजा जी को यहीं धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इस जानकारी के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अब आपसे विदा लेता हूं, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि संपादन और ध्वनि अंकन किया अमित कुंदानी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। नमस्कार, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, काल की उंगलियों पर नाचता ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है। जो कल अंकुर था वो आज वृक्ष है, और जो आज पुष्पित है वो कल मुरझाने की ओर अग्रसर होगा। दिन रात के साथ जीवन बहता जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, देह ढल जाती है, लेकिन काल का प्रवाह कभी नहीं रुकता। वृद्धावस्था जीवन का वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी समस्त उपलब्धियों, आकांक्षाओं और अभिमानों का वास्तविक स्वरूप देखता है। जिन पैरों में कभी गति का गर्व था वहां अब थकान है, जिन आंखों में कभी स्वप्न थे उन आंखों की ज्योति क्षीण हो चली है। काल उस अग्नि की तरह है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। काल पर्वतों को धूल और राजाओं को कथा बना देता है। उसके सम्मुख यौवन का मद, संपत्ति का मोह और संसार का आकर्षण निस्सार हो जाता है। इस सत्य का बोध भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि उस शाश्वत तत्व की खोज के लिए है जो कालातीत है, जो अविनाशी है। आइए योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के साथ वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा करें। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आज इस कार्यक्रम में हम वृद्धावस्था पर बात करने जा रहे हैं, काल के स्वरूप पर बात करने जा रहे हैं। वृद्धावस्था के बारे में वैसे हर मन में वही बात आती है जो मैंने कही, वृद्धावस्था को वृद्धावस्था में ही महसूस नहीं करता आदमी, बल्कि जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है तभी से उसका भय उसके भीतर आने लगता है और एक तरह की दृष्टि हर मनुष्य के भीतर आने लगती है। भगवान श्री राम इतनी छोटी उम्र में वृद्धावस्था के विषय में क्या विचार कर रहे हैं?
1: ये विचार कर रहे हैं कि वृद्धावस्था किस तरीके से लोग इसमें दुखी हैं। वृद्धावस्था की दुख रूपता का वर्णन करते हैं वो गुरुजी से, कहते हैं वशिष्ठ जी से कि ये अवस्था वैसे ही है जैसे लेश मात्र विष का भक्षण करने से शरीर कुरूप बन जाता है, ऐसे ही वृद्धावस्था व्यक्ति के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है, और जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं वह जरा अवस्था के सारे अंगों पर जब विचार करते हैं तो उनको बड़ा गहरा दुख होता है और शरीर के नष्ट होने का भय भी उन्हें दिखाई देता है। और उनके साथ जो आसपास के सुहृद जन हैं, जो व्यवहार करते हैं, क्योंकि हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो जो नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव, ये सब लोग उनको उन्मत्त समझकर उनका हंसी उड़ाते हैं। बुढ़ापे में ऐसा भी राम जी देखते हैं बूढ़ों के साथ। तो ऐसे में कहते हैं कि ये अवस्था देख करके हमें लगता है कि इस शरीर और इस संसार के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे में जिसमें दुख ही दुख हो, ऐसे जीवन के साथ हम जी करके क्या करेंगे, ये प्रश्न राम जी के चित्त में तब उठ रहा है जब वो 14 वर्ष के हैं। तो अब आप ये विचार करें कि यहाँ तो वृद्धावस्था में व्यक्ति भूत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, न कि वृद्धावस्था के सत्य को देख करके वो उससे कुछ सीखता है। कुल मिलाकर के जैसा कि आपने कहा कि ये वैराग्य जो प्रकरण है ये किसी प्रकार के भय का पटाक्षेप नहीं है, बल्कि ये आपको सजग और मतलब सावधान होने की बात है कि इसके पहले की वृद्धावस्था आए आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानने या जीवन का जो सच है उस सच का साक्षात्कार करने की तरफ अग्रसर हो सके, ये जिज्ञासा है।
0: योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम क्या देखते हैं कि इस अवस्था में किस तरह का भय होता है?
1: इस अवस्था में सबसे बड़ा भय ये होता है कि व्यक्ति का संसार छूट रहा होता है तो आदमी सोचता है कि परलोक में जाके मैं करूंगा क्या, क्योंकि परलोक की भी तमाम सारे दृश्य बनाए गए हैं कि परलोक में ये चीजें मिलेंगी, और संसार में भी वो दृश्य है लेकिन आज उसका भोग करने की स्थिति में व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में जिस अवस्था में वो है उस अवस्था के अनुसार जब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे परलोक जाऊंगा तो उस परलोक में मैं क्या करूंगा, ये सबसे बड़ा भय वृद्ध के मन में उत्पन्न हो रहा होता है और वो इस भय से भयभीत होता रहता है।
0: वृद्धावस्था में किस तरह के विचार आते हैं? भगवान श्री राम ने अपने विवेक से इस बात को देखा है,
1: बिल्कुल,
0: वो क्या कहते हैं, कैसे विचार आते हैं?
1: बहुत सुंदर आपने कहा। वो कहते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने आप को बेचारा महसूस करता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बेचारा हूं, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार कर्म करूं। क्योंकि उस समय व्यक्ति को उपेक्षा पूर्ण दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने सपनों को जीने का प्रयास किया, लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, जब बुढ़ापा आता है तो उस समय जब उसकी उपेक्षा होती है तो उस उपेक्षा में वो अपने जीवन पर सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी हस्ती क्या है, मैं क्यों हूँ, ऐसे तमाम तरह के निराशाजनक जो ख्याल हैं उसके मन में आते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वृद्धों के साथ बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके चित्त में ऐसे विचार तो स्वयमेव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको उपेक्षित किया जाए तो इन विचारों को और बल मिलेगा और वो हताशा, निराशा और तमाम तरह के मानसिक विकृतियों के शिकार हो सकते हैं।
0: अच्छा, इस अवस्था में शरीर की जो शक्ति है उसकी जो स्थिति है उसके विषय में भी भगवान श्री राम कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के सामने वो भी आप एक व्याख्या की तरह।
1: इसमें जो शक्ति का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि वो हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आंख से धुंधला दिखने लगता है, खाने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है लेकिन पचाने का सामर्थ्य नहीं होता, और पचाने का सामर्थ्य जो होता है तो खाने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस तरह से भोग की शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो प्रबल होती है लेकिन उपभोग करने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस तरीके से शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। और राम जी कह रहे हैं कि संध्या काल की संध्या के प्रकट होते ही जैसे अंधकार दौड़ पड़ता है, वैसे ही जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। ऐसा भी मतलब बुढ़ापे में व्यक्ति देखता है, जी, क्योंकि अपने साथ मतलब बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देख रहा है वो। तो इस तरह से राम जी कहते हैं कि भूतल पर जो किसी से पराजित नहीं हुआ उसको ये अवस्था पराजित कर देती है और व्यक्ति की सारी ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं, उसका तिरस्कार हो जाता है, उसकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती है जरावस्था।
0: बिल्कुल, अनुभव में भी ये बात आती है ना कि अगर हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं उनको जब हम देखते हैं तो सामान्य सी बीमारियां जो पहले भी उन्हें कभी हुई होंगी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उम्र बढ़ने के बाद जब वही रोग दोबारा होता है, कोई बीमारी होती है, छोटी बीमारी ही हो, तो उनके मन में जो पहला विचार आता है वो मृत्यु का आता है,
1: बिल्कुल,
0: कि
1: बिल्कुल।
0: शायद ये उसका बहाना हो ना, तो एक स्वाभाविक सोच वैसी बनती जाती है वृद्धों की।
1: निश्चित ही बनती जाती है। और जब इसको व्यक्ति देखता है तो अब राम जी तो जिस उम्र में देख रहे हैं वो आज ही सजग हैं कि हमारे इन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें नहीं मिला तो हमें तो संसार में करने योग्य कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर कर्म करके ही तो वृद्ध हुआ है, तो बुढ़ापा में सारे सामर्थ्य उसके क्षीण हो गए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ दुख रूप ही है और किसी भी जन्म लेने वाले व्यक्ति की अंतिम जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था ही होती है, जिसको वो पार करते हुए मृत्यु के करीब पहुंचता है। तो वो कहते हैं कि जब इतना दुख रूप ये संसार है तो इस संसार में करने योग्य क्या है, ये सवाल उनके मन में उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो कर्म से ही अपने को अलग कर रहे हैं। तो गुरुजन तो अभी उनकी इस वैराग्य की दशा की सारी बातें सुन रहे हैं, जिसको वो बेबाकी से कहकर पहले अपने चित्त को शांत कर लें, और उसके बाद फिर उनकी क्या जिज्ञासा होती है, कैसे उनकी कह सकते हैं वैराग्य की अवस्था से उनको हटा करके फिर कर्म में कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए आगे के प्रकरण में हम लोग देखेंगे।
0: अच्छा, मैं अभी योग वासिष्ठ को जब पलट रही थी तो इसमें काल के ग्रास की बात आती है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को पहले तो आप बताएं कि काल क्या है,
1: जी,
0: पहले तो ये समझाएं और फिर ये बताएं कि वो किसका भक्षण करता है।
1: बिल्कुल, काल का मतलब यहाँ पर बहुत विशद रूप में भगवान ने देखा है। काल का मतलब ये कह सकते हैं, काल का अर्थ समय भी है, और भगवान ने तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी है कि गणना में मैं काल हूँ। कोई भी जो गणना करते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये काल की ही गणना है। तो कहते हैं ये काल जो है सातों भुवनों को निगल जाता है, इस काल से कभी भी कोई बचा नहीं है। तो इस काल को देखते हैं कि ये काल का ग्रास ये जगत है, जिसमें पूरा जगत समाता जा रहा है। तो जगत जब समा रहा है तो जगत के सारे प्राणी भी समा रहे हैं, और मैं इसके लिए थोड़ा सा जो योग का सबसे मतलब वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता, जिसमें भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसमें वो काल का ही स्वरूप है जिसको हम विश्व रूप दर्शन कहते हैं, कि कोई उनके जबड़े में फंसा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई जवान हो रहा है, कोई मर रहा है। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि पूरा जगत, यानी जहां आपकी बुद्धि की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, ऐसे विस्तार का नाम है काल। उस काल में ये सारा जगत समा जाता है, जिस जगत को साधने के लिए व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है और चिंतित होता है और व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को ग्रसित करता है और विभिन्न रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो जब जगत ही काल का ग्रास बन जाता है, तो फिर जगत में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से निश्चिंतता का भाव जो योगियों के चित्त में होता है, इस भाव को भी हम समझ सकते हैं काल के स्वरूप से, कि काल में जैसे कबीरदास जी कहते हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। ये भी एक काल का चित्रण है कि जो होना है वो हो ही जाता है, तो फिर अनहोनी कुछ भी नहीं होता। हाँ। क्योंकि काल में निश्चित है वो क्या होना है, और मनुष्य अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाते उसको उद्घाटित करने की या उसको डिकोड करने की, उस रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास करता है, जबकि वो जाना नहीं जा सकता।
0: आपने भी विश्वरूप की बात की, कहा कि काल का ही एक स्वरूप वो है विश्वरूप का, जो दर्शन करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण
1: जी
0: अर्जुन को। भगवान श्री राम ने क्या देखा, काल का स्वरूप क्या है?
1: भगवान श्री राम कहते हैं कि ये काल बड़ा निर्दय है, कठोर है, क्रूर है, कर्कश है, कृपण और अधम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त न कर ले, जिसको ये उदर में अपने धारण न कर ले। अब आप देखिए कि जीव इसी संसार को साधने का प्रयास कर रहा है, जिसको ये काल अपने उदर में लगातार लेता जा रहा है। हम लोग कहते भी हैं ना कि जीवन में जन्म लेने वाला जीव जो है हर पल मृत्यु के करीब, यानी काल के करीब जा रहा है। तो काल के उदर में हम जा रहे हैं, और उसके बाद भी इस संसार को पकड़ने और इस संसार के मोह में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि जहां लगता है कि यह संसार ही हमारे जीवन का अभिष्ट है। इसको बड़ा एक सुंदर उदाहरण में उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे काल को आपको देखना हो, तो वो कहते हैं ऋषि कि जैसे एक मेढक को एक सांप ने अपने मुंह में पकड़ लिया है, लेकिन वो मेढक बार बार कीड़े को खाने का प्रयास कर रहा है, वो अभी भी जीवन की तलाश कर रहा है, जबकि उसका जीवन खुद संकट में है, उसका काल बन करके वो सर्प उसे अपने उदर में लेना चाहता है। ऐसे ही काल के उदर में सब समाये हुए हैं, लेकिन इसको न देखने की वजह से वो भ्रम बस संसार में
0: तस्वीर
1: भटक रहे हैं।
0: डरावनी बन जाती है, लेकिन भय की बात नहीं, समझ की बात
1: है
0: कि हम किस तरह से समय को देखें, किस तरह से हम जीवन को देखें।
1: जी
0: अच्छा, मैं देख रही थी, योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी, तो कहीं एक जगह वो कहते हैं भगवान श्री राम, काल को उन्होंने धूर्तों का शिरोमणि कहा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप समझाएं कि ये किस तरह से उन्होंने ये कहा है।
1: हम लोग संसार में कहते हैं ना, ये बड़ा धूर्त है।
0: हाँ।
1: तो कहते हैं समय बहुत धूर्त की तरह है, कि जहां आपको लगता है कि ये आपको पोषित कर रहा है, आपको जवान कर रहा है, आपके जीवन में खुशियां ला रहा है, लेकिन आपके जीवन की खुशियों का भक्षण भी यही कर रहा है, है ना। जो दुख है वो इसी काल के प्रभाव से है। तो श्री राम जी ने इनको धूर्तों का शिरोमणि इसलिए कहा कि इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं, और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं है। ये दिखता तो है, लेकिन ये दृश्य रूप में जो दिखाई देता है, इसका सत्य हम नहीं देखते।
0: हाँ।
1: सत्य ये है कि जैसे परिणाम में आपको क्या मिल रहा है, जिस चीज को पाने के लिए आपने प्रयास किया, उसका परिणाम क्या हुआ। तो संतुष्ट होने के लिए आपने प्रयास किया, परिणाम में असंतोष मिला। सुख के लिए आपने प्रयास किया, परिणाम में आप दुखी हो गए। तो ये इसकी धूर्तता का प्रभाव है। तो राम जी कहते हैं तो धूर्तों का शिरोमणि है, जो दृश्य होकर के भी दिखता नहीं है, जो है वो नहीं दिखता, और जो दिखता है वो है नहीं। इसीलिए इसको माया भी कहा गया है। माया का मतलब मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है और होने जैसा प्रतीत हो, वो है काल। तो काल की महिमा बड़ी विशद रूप में राम जी ने वर्णन किया है इसमें, कि वो काल का जो मुझे दृश्य दिखाई देता है, ये काल बड़ा भयावह तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका स्वरूप ऐसा है कि इस काल से ना कोई बच सकता है। तो ऐसे में इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर पाए, क्योंकि अंततः वो काल का ग्रास बन ही जाएगा।
0: जी जी। अच्छा, मेरे मन में अचानक ही मतलब मुझे याद हुआ कि जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं,
1: जी जी,
0: तो जन्मदिन का आना भी काल से जुड़ा हुआ है।
1: हाँ, बिल्कुल जी, जी,
0: है ना?
1: जी।
0: तो उसको एक उत्सव की तरह आप मनाते हैं, समारोह पूर्वक मनाते हैं
1: जी,
0: लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि हम मृत्यु की तरफ एक और कदम बढ़ गए
1: जी,
0: तो शायद ऐसी ही बात है ये।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस दृष्टि से हम देख नहीं पाते, हाँ,
1: देख नहीं पाते। एक बात और देखिए, वैराग्य का मतलब क्या हुआ, या योग का मतलब ये होता है कि समग्रता से किसी चीज को देखना। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम अपने चुनाव के अनुसार चीजों के एक पार्ट को देखते हैं और दूसरे विषय को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क का ऐसा बनावट है कि जैसे हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं और जो हम नहीं देखना चाहते हैं वो होते हुए भी दिखता नहीं है। यहाँ पर जो कहते हैं जो नहीं देखते आपके अनदेखा कर देने से वो मिट नहीं जाता, उसका भी होना है। तो अगर आप उसको देख पाएंगे तो जो राग द्वेषात्मक जो बंधन है ये बंधन ढीला पड़ेगा और इसके जो प्रभाव से आपके चित्त में जो आंदोलन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, उस विचलन से आप शांति की अवस्था को उपलब्ध हो सकेंगे जब समग्रता से देखेंगे। तो ये इसका इशारा है कि आप उसे अनदेखा मत करें, अनदेखा करने से मिटेगा नहीं। जो चाहते हैं वो देखिए, लेकिन जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसके भी सत्य को स्वीकारिए,
0: स्वीकारिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अब आप ये बताएं कि इस संसार में, जगत में, व्यावहारिक स्थिति में काल किस तरह से अभिव्यक्त होता है।
1: बिल्कुल सुंदर कहा आपने, व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता और संहार करने वाला स्मरण करता भी यह काल ही है। इन तमाम रूपों में यह काल प्रदर्शित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो हम हर पल अपनी स्मृतियों के साथ ही अपने मैं का अस्तित्व बनाते हैं। आप देखें तो स्मृतियां क्या हैं, काल की ही तो हैं। आप अपने बचपन की करें, युवावस्था की करें, किसी भी दृश्य की स्मृति करें, चाहे वृद्धावस्था के बारे में सोचें, तो अंततः आप सोच किसके बारे में रहे हैं, काल के बारे में ही तो सोच रहे हैं। तो ये काल का जो स्वरूप है, जो व्यवहार में ये व्यक्त होता है, वो कर्ता, भोक्ता, संहार करता और स्मरण करता के रूप में काल ही है। यानी देखें तो समस्त जो कर्ता मनुष्य को अपने कर्तापन का जो बोध होता है वो उसके कर्तापन का बोध नहीं है। उस कर्तापन में जो जो योग की तरफ या वैराग्य जिसके चित्त में विवेक से उत्पन्न हुआ है उसमें कर्ता काल दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समय ही सब कुछ है, समय बलवान है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम कमजोर हो गए या हम ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं है, वो समय की शक्ति है। जी
0: अच्छा शशिकांत जी, इसमें काल की पत्नी की चर्चा भी एक जगह आई।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं चाह रही थी कि हमारे सुनने वालों को अब बताएं कि काल की पत्नी कौन है।
1: काल की पत्नी को चंडी कहा गया
0: जी,
1: और इसको काल रात्रि भी कहते हैं। अत्यंत कोपवती है ये काल रात्रि, मतलब जैसे काल का स्वरूप क्रूर है तो जो उसकी पत्नी है, जो काल रात्रि जिसे कहते हैं, कई बार हम लोग अपने साधनाओं में काल रात्रि की पूजा देवी के रूप में काल रात्रि भी कहते हैं उसे, तो उसमें ये कहते हैं कि बड़ी कोपवती है जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है और इसके साथ सारी मातृकाएं, डाकिनी, शाकिनी आदि रहती हैं इनकी पत्नी के साथ। ये जो मतलब जो मातृकाएं हैं, आप देखते होंगे जब हम घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मातृकाओं, षोडश मातृकाओं की भी पूजा करते हैं।
0: जी, जी,
1: तो वो काल की जो पत्नी कालरात्रि हैं उन्हीं की साथ रहने वाली जो मातृकाएं हैं उनकी पूजा है। तो काल की पूजा भी की गई हमारे यहाँ, क्योंकि काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल में ही हम हैं, तो काल से डर के हम जाएंगे कहाँ। तो जिससे हम बच नहीं सकते उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके स्वरूप को जानने से हमारे चित्त में जरूर शुद्धि होगी और चित्त का जो मलिनता है वो दूर होगा।
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा, काल के धनुष की भी चर्चा है इसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं चाह रही थी कि वो भी आप बताएं।
1: काल का धनुष अभाव है, संहार है।
0: जी।
1: जैसे आप देखें तो काल स्मृति करता, जब आप स्मरण करते हैं किसी चीज को, तो जो चीज समाप्त

0: सारी चीजों में मन मतलब कर रहा है या भाग रहा है या नाच रहा है, उसे नाचना भी कह लें, दौड़ रहा है, तो वो अंततः काल की सीमा से अलग कोई चीज नहीं है। तो इस जगत को इस काल काल का नृत्यशाला भी राम जी ने कहा। और कहते हैं कि जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवनों, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता रहता है। यह है काल की नृत्यशाला
1: जी। तो शशिकांत जी, आज हमने वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा की है। मैं चाहती हूँ संक्षेप में इस पूरी चर्चा को, अगर मैं कहूँ कि आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं के लिए रखते हैं।
0: संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था जो जीवन का एक कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जहां उसके अवसान भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ जीवन की यात्रा का वो एक मंजिल भी है वृद्धावस्था, जहां हर व्यक्ति वहां पहुंचेगा, तो वो दुख से भरा हुआ है। तो दुख से भरा हुआ है इस नाते इस संसार में जो सुख खोजने की मनुष्य की प्रकृति है, वो प्रकृति संसार में न हो बल्कि वो अपने स्वरूप के प्रति, अपने अद्वय जो रूप है उसको जाने, वो कि हम हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है और जो सच्चिदानंद जो रूप है उसकी तरफ हो जाए, ना कि संसार की तरफ। और दूसरी बात, जो आपने काल की बात कही, काल का विस्तार इतना प्रबल है कि काल इस जगत को अपना ग्रास बना लेता है, तो ऐसे में उस काल के स्वरूप को जानते हुए ये जाने कि सब कुछ काल में ही है और काल कभी भी स्थिर नहीं है, निरंतर गति उसकी हो रही है। और भगवान ने जब कहा कि गणना में मैं काल हूं, तो इसका मतलब काल से हम बच नहीं सकते। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति संज्ञान लेकर के करें, ताकि काल हमारे कर्म का जो फल बनाए वो हमारे अनुकूल हो। और इसके लिए हमें कर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा
1: जी।
0: तब जाकर के फल हमारे मन के अनुकूल होगा।
1: बिल्कुल। तो शशिकांत जी, आज वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर हमने बहुत ही सार्थक चर्चा आपसे सुनी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपका बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, वृद्धावस्था और काल के स्वरूप का विवेचन आपने सुना योग संवाद कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम भारत विभूति के इस अंक में एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सुखद और समृद्ध जीवन त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा को अपना धर्म चुना। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिखाया कि मनुष्यता की सच्ची सेवा में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। हम आज भारत विभूति में बात करने जा रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं स्वाति और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
1: दीपेश।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों को केवल दवाई नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया अर्थ दिया, जिन्होंने समाज की सोच बदली और घृणा को करुणा में बदल दिया।
1: जिनके लिए हर मनुष्य, चाहे वह कितना भी रोगग्रस्त या विकलांग हो, सम्मान का पात्र था, जिन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है, जिनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा की एक अमर कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, यानी बाबा आमटे की जीवन यात्रा के बारे में। तो आइए उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को जानें और उनसे प्रेरणा लें। तो आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा।
0: श्रोताओं, भारतीय समाज सेवा के इतिहास में बाबा आमटे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और विकलांग लोगों के लिए उनका कार्य न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और करुणा से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: मुरलीधर देवीदास आमटे जी का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता देवीदास आमटे ब्रिटिश सरकार के अधीन एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। परिवार हिंगनघाट के सबसे प्रभावशाली और धनी परिवारों में से एक था। बचपन में मुरलीधर को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ था।
0: मुरलीधर के घर में नौकर चाकर थे, अच्छे वाहन थे और हर तरह की विलासिता की चीजें उपलब्ध थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। परिवार में शिक्षा और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। घर में धार्मिक वातावरण था, लेकिन साथ ही आधुनिक विचारधारा को भी स्थान मिला था।
1: बालक मुरलीधर अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि थी। वे घुड़सवारी करते थे, शिकार किया करते थे और अन्य खेलों में भी निपुण थे। उन्हें तैराकी और कुश्ती में भी रुचि थी। उनका बचपन विलासिता और आराम से बीता, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार में उन्हें प्यार से बाबा के नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में उनकी पहचान और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया।
0: बचपन में बाबा आमटे को सांपों में विशेष रुचि थी। ये रुचि केवल एक शौक भर नहीं था बल्कि एक जुनून था। वो सांपों को पकड़ने और उनके बारे में जानने में घंटों बिता दिया करते। वे जंगलों में जाकर विभिन्न तरह के सांपों को पकड़ते और उनका अध्ययन करते। इस अनोखे शौक ने उन्हें निडर और अत्यंत साहसी बनाया। जो डर दूसरे बच्चों में होता था, वो बालक मुरलीधर में नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी और उनके हर शौक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी अपने बेटे को रोका टोका नहीं बल्कि उसके साहस की हमेशा प्रशंसा ही की। बचपन के इन अनुभवों ने बाबा आमटे के व्यक्तित्व को गढ़ा। सांपों के साथ काम करने से उन्हें ये सीख मिली कि जिन चीजों से लोग डरते हैं वो वास्तव में उतनी भयानक नहीं होती। ये सीख बाद में उनके जीवन में बहुत काम आई जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ काम करना शुरू किया।
1: मुरलीधर आमटे की प्रारंभिक शिक्षा हिंगन घाट के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और हर कक्षा में प्रथम आते थे। शिक्षकों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे किसी भी विषय को शीघ्रता से समझ लेते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के प्रतिष्ठित मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। नागपुर उस समय मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और वहां शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं थी। कॉलेज में भी वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने गए। वे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने कॉलेज में नाटकों में भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि दिखाई।
0: कॉलेज के दिनों में युवा मुरलीधर एक शानदार जीवन शैली जी रहे थे। उनके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे शौक थे और वो अपने मित्रों के बीच लोकप्रिय भी थे। वे अक्सर पार्टियों में जाते, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते। उनके पास एक कार भी थी जो उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वकालत उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा हुआ करता था। परिवार भी चाहता था कि मुरलीधर एक सफल वकील बने। उन्होंने कानून की पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1942 में वकालत की डिग्री हासिल की। उसी साल उन्होंने वर्धा में अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू की।
1: बाबा आमटे की प्रतिभा, वक्तव्य कला और कानूनी ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही एक सफल और लोकप्रिय वकील बन गए। उनकी आय बहुत अच्छी थी और वे आरामदायक जीवन जी रहे थे। उनके मुवक्किलों में धनी और प्रभावशाली लोग होते थे। वे अदालत में अपनी दलीलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन युवावस्था में ही बाबा आमटे के मन में देश और समाज के प्रति चिंता जागने लगी थी। वे उस समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का दर्शन और उनकी विचारधारा ने युवा मुरलीधर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश उन्हें बहुत पसंद आया।
0: गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रह रहे थे जो बाबा आमटे के घर से ज्यादा दूर नहीं था। बाबा आमटे ने कई बार सेवाग्राम जाकर गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी के सरल जीवन और उच्च विचारों ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा। बाबा आमटे ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कानूनी मदद भी की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कई माह बिताए। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इन महान व्यक्तियों के विचारों और जीवन शैली ने युवा मुरलीधर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा।
1: जेल से बाहर आने के बाद भी बाबा आमटे की वकालत चलती रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। वे महसूस करते थे कि केवल धन कमाना और आरामदायक जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसी बीच 1946 में बाबा आमटे का विवाह साधना ताई मोघे से हुआ। साधना ताई एक असाधारण महिला थी। वे भी एक संपन्न परिवार से थी और उन्होंने आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय महिलाओं का इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक असाधारण बात थी। साधना ताई प्रगतिशील विचारों वाली और समाज सेवा में रुचि रखने वाली महिला थी।
0: विवाह के बाद साधना ताई ने अपने पति के हर निर्णय में उनका साथ दिया। वो न केवल एक पत्नी थी बल्कि बाबा आमटे की सबसे बड़ी सहयोगी और मित्र भी बनी। उनका विवाह एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण था। साधना ताई ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पति के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। विवाह के समय बाबा आमटे का जीवन बहुत आरामदायक था। वो एक सफल वकील थे, उनकी अच्छी कमाई थी, उनके पास एक बड़ा मकान था, कार थी और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा आमटे के मन में एक अजीबोगरीब सी बेचैनी थी। वो महसूस करते कि जीवन में कुछ कमी है, कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
1: 1945 की एक रात की घटना ने बाबा आमटे के जीवन की दिशा ही बदल दी। वर्धा की एक सुनसान सड़क पर रात के समय वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी कार की रोशनी में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक मनुष्य सड़क के किनारे असहाय पड़ा था। पास जाने पर पता चला कि वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसकी उंगलियां गल चुकी थी, पूरा शरीर सड़ रहा था और असहनीय दुर्गंध आ रही थी। उस अंधेरी रात में आवारा कुत्ते उसके घाव को चाट रखे थे और वह असहाय व्यक्ति चिल्लाने की शक्ति भी खो चुका था। यह दृश्य देखकर बाबा आमटे के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उन्हें घृणा और भय हुआ, उनका मन हुआ कि वहां से भाग जाए। लेकिन फिर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं इतना कायर हूं कि एक मरते हुए मनुष्य की मदद नहीं कर सकता? क्या मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा साहस सब बेकार है?
0: वो कार से उतरे और उस व्यक्ति के पास गए। पहली बार उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को इतने करीब से देखा था। वो दृश्य इतना भयावह था, लेकिन बाबा आमटे ने अपने डर पर विजय पाई। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया, अपनी कार में बिठाया और उसे नजदीकी अस्पताल तक ले गए। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उस कुष्ठ रोगी को भर्ती करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल होते हैं। कोई भी उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहता था, सभी उससे दूर भागते थे, जैसे वो कोई जानवर हो, इंसान नहीं।
1: वो रात बाबा आमटे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात साबित हुई। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति कितनी क्रूरता और घृणा है। ये लोग न केवल एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि समाज द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए गए हैं। उन्हें न इलाज मिलता है, न सम्मान, न प्यार। वे जीते जी मर चुके हैं। उस रात घर लौटकर बाबा आमटे को नींद नहीं आई। वे सारी रात सोचते रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन इन उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने साधना ताई से अपने विचार साझा किए। साधना ताई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहेंगी।
0: 1946 से 1949 के बीच बाबा आमटे ने कुष्ठ सेवा की शुरुआत की। उन्होंने अपने निर्णय के बाद सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पूरी जानकारी के वो इन रोगियों की सही सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता, के प्रसिद्ध स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में जाकर कुष्ठ रोग का विधिवत अध्ययन किया। कलकत्ता में रहते हुए बाबा आमटे ने कई महीने कुष्ठ रोग के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग संक्रामक तो है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते हैं। लंबे समय तक और निकट संपर्क से ही यह फैलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है। सही दवाइयों और देखभाल से कुष्ठ रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं।
1: बाबा आमटे ने यह भी सीखा कि कुष्ठ रोग में त्वचा और नसें प्रभावित होती हैं। इसके कारण रोगी को अपने हाथ पैरों में संवेदना महसूस नहीं होती। छोटे छोटे घाव और चोटें, जिन्हें रोगी महसूस नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। उंगलियां और अंग सड़ने लगते हैं, लेकिन सही समय पर इलाज से इसे रोका जा सकता है। वापस वर्धा लौटने के बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम शुरू कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। पहला सवाल यह था कि रोगियों को कहां से लाया जाए। कुष्ठ रोगी जो समाज से छिपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बाबा आमटे ने शहर के बाहरी इलाकों में जाना शुरू किया। वे उन जगहों पर जाते थे जहां कुष्ठ रोगी छिपकर रहते थे। उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वे उनका इलाज करेंगे और उनकी मदद करेंगे। धीरे धीरे कुछ रोगी उनके पास आने लगे।
0: बाबा आमटे ने अपने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। वो अपने हाथों से रोगियों के घावों को साफ किया करते, पट्टियां बदलते और उन्हें दवाइयां देते। प्रारंभ में उन्हें बहुत घृणा और भय होता था। घावों की दुर्गंध से उनका मन मिचलाता था। सड़े हुए मांस को छूते समय उनके हाथ पैर कांप जाते। रात को सोते समय वो सपनों में वही दृश्य देखते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने इस भय को और घृणा को खुद से जीत लिया। एक दिन बाबा आमटे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी तुलसीराम को अपने घर में रहने के लिए बुलाया। तुलसीराम की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी उंगलियां गल चुकी थी और पूरे शरीर में घाव थे। बाबा आमटे ने उसे अपने घर में रखा और उसकी नियमित सेवा की। वो रोज उसके घावों को साफ किया करते, दवाई लगाते और उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाते।
1: साधना ताई ने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने तुलसीराम के लिए खाना बनाया, उसके कपड़े धोए और उसकी देखभाल की। एक संपन्न घर की पढ़ी लिखी महिला का इस तरह एक कुष्ठ रोगी की सेवा करना उस समय अकल्पनीय था। धीरे धीरे तुलसीराम की हालत में सुधार आने लगा, उसके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया। कुछ महीनों में वह काफी स्वस्थ हो गया। यह बाबा आमटे के लिए एक बड़ी सफलता थी। इस घटना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा संभव है और वे भी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
0: लेकिन समाज में इस कार्य का भारी विरोध हुआ। पड़ोसी बाबा आमटे से नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कुष्ठ रोग उन तक भी फैल जाएगा। लोग बाबा आमटे और उनके परिवार से दूर रहने लगे। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक करार दे दिया। ये कहा गया कि एक सफल वकील अपना करियर और जीवन बर्बाद कर रहा है। उनकी वकालत पर भी इसका असर पड़ा। कुछ मुवक्किलों ने उनसे संबंध तोड़ लिया। लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों को छूता है उसके पास कैसे जाया जाए। बाबा आमटे की आय में अब कमी आने लगी थी।
1: लेकिन बाबा आमटे और साधना ताई ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे और रोगी उनके पास आने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि केवल घर में छोटे से क्लिनिक से काम नहीं चलेगा। कुछ रोगियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां वे रह सकें, इलाज करा सकें और सम्मान से जी सकें। फिर स्थापना हुई आनंद वन की। 1949 से 1960 के बीच बाबा आमटे ने अपने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्धा जिले के वरूरा तहसील के पास चंद्रपुर में 264 एकड़ जमीन खरीदी और वहां आनंद वन यानी आनंद का वन इसकी स्थापना की। यह नाम भी बहुत सोच समझ कर चुना गया था। आनंद वन, जहां दुख और पीड़ा से भरे जीवन को आनंद मिले।
0: ये जमीन खरीदने के लिए बाबा आमटे ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उन्होंने अपना मकान, कार और सभी कीमती सामान बेच दिए। उन्होंने अपनी सफल वकालत को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक संपन्न जीवन से वे सब कुछ त्याग कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ चले। प्रारंभ में जो जमीन खरीदी गई थी वो पूरी तरह से बंजर थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, न पेड़, न पानी, न कोई इमारत, केवल सूखी बंजर जमीन जिस पर कांटेदार झाड़ियां उगी थी। कोई भी इस जमीन पर खेती करने का साहस नहीं करता था, लेकिन बाबा आमटे ने इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया।
1: साधना ताई और उनके दो छोटे बेटे प्रकाश और विकास, ये भी उनके साथ आनंद वन आ गए। साधना ताई ने अपने आरामदायक घर, सभी सुविधाओं और समाज की प्रतिष्ठा को छोड़कर इस बंजर जमीन पर रहने का निर्णय लिया। बच्चे भी छोटी उम्र से ही इस कठिन जीवन में शामिल हो गए। शुरुआत में परिस्थितियां बहुत कठिन थी। कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। पानी की बहुत समस्या थी, खाने पीने की भी दिक्कतें थी। रात को जंगली जानवर आते थे और डर पैदा करते थे। मच्छरों और अन्य कीड़ों का भी प्रकोप था।
0: बाबा आमटे ने पहले कुछ कुष्ठ रोगियों को आनंद वन में बुलाया। शुरू में केवल 6 रोगी ही आए। इन रोगियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ तो चल भी नहीं पाते थे, कुछ की आंखें खराब हो चुकी थी, लेकिन बाबा आमटे का दृष्टिकोण कुछ अलग था। वो इन रोगियों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सक्षम व्यक्ति ही मानते थे। आनंद वन में बाबा आमटे का दर्शन बहुत स्पष्ट था। कार्य ही पूजा है और भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें काम का अवसर देना चाहता हूँ। तुम भी काम कर सकते हो। तुम्हारे हाथ पैर भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है।
1: यह विचार क्रांतिकारी था। उस समय लोग कुष्ठ रोगियों को केवल दान और भीख का पात्र समझते थे, लेकिन बाबा आमटे ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। सबसे पहला काम था जमीन को उपजाऊ बनाना। बाबा आमटे ने स्वयं कुदाल उठाई और खेत जोतना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। साधनाताई भी उनके साथ काम करती थी। कुष्ठ रोगियों को भी काम में लगाया गया। जो चल सकते थे वो खेतों में काम करते थे, जो हाथों से काम नहीं कर सकते थे उन्हें दूसरे काम दिए गए।
0: धीरे धीरे बंजर जमीन हरी भरी होने लगी। पेड़ लगाए गए, कुआं खोदा गया, छोटे छोटे घर बनाए गए, खेतों में सब्जियां उगाई गई, पशु पालन शुरू हुआ। हर रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता और उसके लिए मजदूरी भी मिलती। बाबा आमटे ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने आनंद वन में एक स्कूल खोला। यहाँ कुष्ठ रोगियों के बच्चे पढ़ते थे और साथ ही आसपास के गांवों के बच्चे भी। ये समाज में एक बड़ा बदलाव था। पहली बार कुष्ठ रोगियों के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे।
1: आनंद वन में अस्पताल की सुविधा भी विकसित की गई। यहाँ कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी इलाज होता था। कई रोगी जो पूरी तरह निराश हो चुके थे, यहाँ आकर नया जीवन पाने लगे। उनके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आनंद वन में विभिन्न कार्यशालाएं भी स्थापित की गई। यहाँ बुनाई, चमड़े का काम, कृषि उपकरण बनाना और अन्य कई तरह के काम होते थे। कुष्ठ रोगी इन कामों में लगे थे और अपनी रोजी रोटी कमा रखे थे। यह उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी। वे अब भिखारी नहीं रहे, बल्कि कमाने वाले व्यक्ति बन गए थे। धीरे धीरे आनंद वन की ख्याति फैलने लगी। देश के विभिन्न हिस्सों से कुष्ठ रोगी यहां आने लगे। 1950 के दशक के अंत तक आनंद वन में सैकड़ों रोगी रह रहे थे। यह एक समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदाय बन गया था।
0: बाबा आमटे ने अपने कार्य को केवल कुष्ठ रोगियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विकलांग लोगों, अंधों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए भी काम किया। आनंद वन में नेत्रहीनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गईं। 1973 में उन्होंने गढ़चिरौली जिले के हेमलक्सा में एक नई परियोजना की शुरुआत की।
1: उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। बाबा आमटे ने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे बड़े बांधों के निर्माण से होने वाले विस्थापन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विकास के नाम पर गरीब लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
0: बाबा आमटे को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। बाबा आमटे के अथक सेवा कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1986 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: 1985 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया। इस पुरस्कार की राशि उन्होंने आनंद वन के विकास में लगा दी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें टेम्पलटन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन सभी पुरस्कारों के बावजूद बाबा आमटे अत्यंत विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी भी इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि उन लोगों के प्रति समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक माना जिनकी वे सेवा कर रहे थे।
0: जीवन के अपने अंतिम वर्षों में बाबा आमटे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और वो बिस्तर पर ही रहने लगे। चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन बीमारी ने भी उनके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आनंद वन और हेमलक्सा के कार्यों का संचालन किया करते। वे अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे।
1: साधना ताई ने अंत तक अपने पति की सेवा की। उनके दोनों बेटे प्रकाश और विकास ने भी अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में आदिवासियों की सेवा को जारी रखा। विकास आमटे ने आनंद वन का संचालन संभाला। 9 फरवरी 2008 को आनंद वन में बाबा आमटे ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति था। भारत ने अपना एक महान समाज सेवक खो दिया।
0: उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन सबसे अधिक दुख उन हजारों लोगों को था जिनके जीवन में बाबा आमटे ने उजाला भरा था। बाबा आमटे का जीवन दर्शन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। उनके कुछ प्रमुख विचार और सिद्धांत इस तरह थे।
1: मैं एक मनुष्य की जान बचाना नहीं चाहता, मैं एक मनुष्य को जीवन देना चाहता हूँ।
0: ये उनका मूल मंत्र था। वो केवल रोगियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देते थे।
1: कर्म ही पूजा है, उनका मानना था कि मनुष्य को काम करना चाहिए। काम से ही मनुष्य को आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य मिलता है। भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। विदान और भिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मनुष्य को भीख नहीं बल्कि काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय, बाबा आमटे ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारा। आनंद वन में सभी को समान अवसर और सम्मान मिलता था।
0: बाबा आमटे पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में विश्वास रखते थे। हेमलक्सा में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर खासा ध्यान दिया। बाबा आमटे की मृत्यु के बाद भी उनका काम जारी है। आनंद वन और हेमलक्सा आज भी सक्रिय है और हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में अपने माता पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मिलित है।
1: बाबा आमटे के जीवन पर कई किताबें लिखी गई, उन पर वृत्त चित्र बनाए गए। उनकी जीवनी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। आनंद वन आज भी कुष्ठ पुनर्वास का एक आदर्श मॉडल है, जहां विकलांगों के लिए विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं हैं। यहां के निवासी आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बाबा आमटे का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने सुखद जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा की। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और समर्पण समाज में महान परिवर्तन

0: बाबा आमटे जी ने कहा था, मैं केवल एक मोमबत्ती जला रहा हूं। यदि हर कोई अपनी एक मोमबत्ती जलाए तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। यही उनका संदेश था और यही उनकी विरासत है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना।
1: तो श्रोताओं, इसी प्रेरक संदेश के साथ हमारा ये कार्यक्रम भारत विभूति अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बात कर रहे थे पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पातम का, वाचन कर रहे थे मैं यानी स्वाति
0: और मैं दीपेश,
1: लेखन था अखिलेश कुमार वर्मा का। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

90.8 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के 10 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम परिक्रमा का। नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, रंग विदूषक का नया ठिकाना बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन शनिवार को यानी आज होने जा रहा है। इस नए ठिकाने का नाम होगा रंग विदूषक द बंसी कॉल सेंटर फॉर थिएटर प्रैक्टिस रिसर्च एंड एजुकेशन। जाने माने रंग निर्देशक बंसी कॉल ने भोपाल में 1984 में रंग विदूषक की शुरुआत की थी। इसकी प्रेरणा उन्हें मिली उनकी घुमक्कड़ी से, जहां वे परिचित हुए बहुरूपियों से एवं भांड शैली, नटगिरी और अखाड़ेबाजी की कलाओं से। इसी से निकलकर आई रंग विदूषक की अपनी शैली, अपनी रंग भाषा और अपना रंग मुहावरा, जिससे आज भी रंग विदूषक का परिवार अपने ऑल टाइम हिट शोज तुक्के पे तुक्का और सौदागर जैसे नाटकों से जीता आ रहा है। इस सेंटर की शुरुआत कर रही रंगकर्मी अंजना पुरी ने कहा, थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी होलिस्टिक एजुकेशन का जरिया है जो व्यक्ति को जीवन के हर लक्ष्य को पाने के लिए सक्षम बनाता है। इसलिए मुझे लगता है कि रंग विदूषक के जरिए थिएटर की जो स्टाइल और ट्रेनिंग टेक्निक डेवलप हुई है, उसे आम लोगों के बीच, बच्चों के बीच एजुकेशन की तरह पहुँचनी चाहिए। रंग कलाओं की अद्भुत परंपरा पर फोकस रखेगा रंग विदूषक का ये रिसर्च सेंटर। बेरखेड़ी में बंसी जी ने 3 एकड़ जमीन 20 साल पहले खरीदी थी। उसके एक हिस्से में रंग प्रशिक्षण के लिए अब आवास आंगन बना है। इसे हम रंग विदूषक के सेकंड चैप्टर की शुरुआत मानते हैं। यहाँ रंग विदूषक की रंगमंच शैली मंच से उतरकर शिक्षा के रूप में आने वाली पीढ़ी तक पहुँचेगी।

आइए अब चलते हैं भारत भवन। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा और सुर साधना के अद्वितीय रंगों से सराबोर 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन अनहद भारत भवन द्वारा 3 से 5 जुलाई तक किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के शास्त्रीय गायकों की प्रस्तुतियां संगीत प्रेमियों को राग, लय और भावों से परिचित कराएंगी। समारोह का शुभारंभ 3 जुलाई को शाम 7 बजे स्वाति तिवारी के गायन से होगा। इसके बाद शाम 7:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पद्मश्री गायिका अश्विनी भिड़े देश पांडे प्रस्तुति देंगी। 4 जुलाई को शाम 7 बजे संगीत प्रेमियों को एक दुर्लभ गायन जुगलबंदी सुनने का अवसर मिलेगा। आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार अपनी संयुक्त प्रस्तुति के माध्यम से सुरों का संवाद रचेंगी। इसमें परंपरा और सृजनात्मकता का समन्वय दिखाई देगा। अंतिम दिन 5 जुलाई को शाम 7 बजे डॉक्टर ऋषि मिश्र अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद शाम 7:45 पर मंजरी असनारे केलकर अपनी सधी हुई और भावपूर्ण गायिकी से समारोह का समापन करेंगे। देश की सबसे पुरानी संगीत यूनिवर्सिटीज़ में से एक प्रयागराज की प्रयाग संगीत समिति में जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा और प्रभाकर की पढ़ाई कर रहे नृत्य और संगीत के विद्यार्थियों का एक अनूठा प्रैक्टिकल एग्जाम रखा गया। श्रोताओं, हम सभी ने अभी तक कई परीक्षाएं होने की बात सुनी है, मगर ये एक ऐसी अनोखी परीक्षा है जिसमें विद्यार्थी अपने सुर, ताल और राग की समझ के साथ नृत्य की भावभंगिमाओं, मुद्राओं और चाल का भी परीक्षण देते हैं। शुक्रवार को मानस भवन में आयोजित इस परीक्षा में अपने गुरुओं के साथ लगभग 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए एग्जामिनर के रूप में बांसुरी वादक पंडित एकांत शर्मा, शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ और तबला वादक पंडित अनूप शर्मा, नृत्य कला में महारत रखने वाले पंडित राजेश दबे आए। इस परीक्षा को पूरा करने के बाद प्रभाकर के बच्चे आगे संगीत में MA, PhD और NET परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकेंगे।

आइए अब आपको लिए चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां अब फिल्म, टेलीविज़न और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए विद्यार्थियों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग 1,55,00,000 रुपये की लागत से अत्याधुनिक एजुकेशन टेलीविज़न सेंटर, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और एग्जीबिशन हॉल विकसित किए जा रहे हैं। दिसंबर तक शुरू होने वाली इन सुविधाओं में विद्यार्थियों को इंडस्ट्री के समान माहौल में फिल्म मेकिंग, टेलीविज़न प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री निर्माण और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। कॉलेज के फिल्म टेक्नोलॉजी एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि सेंटर का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें कंटेंट इंडस्ट्री में उद्यमी और क्रिएटर के रूप में स्थापित करना है। विद्यार्थी स्क्रिप्ट लिखने से लेकर शूटिंग, एडिटिंग और फाइनल आउटपुट तैयार करने तक पूरी प्रोडक्शन प्रक्रिया वास्तविक स्टूडियो माहौल में सीखेंगे। इससे वे पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली, मार्केट की समझ को समझ सकेंगे।

और अब आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और उनके चित्रों के विक्रय के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य से संग्रहालय की लिखनधारा प्रदर्शनी दीर्घा में हर महीने आयोजित होने वाली शलाका चित्र प्रदर्शनी के अंतर्गत इन दिनों गोंड जनजातीय चित्रकार मनीषा धुर्वे के चित्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में प्रकृति, लोक जीवन और जनजातीय संस्कृति पर आधारित उनकी आकर्षक कलाकृतियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। 32 वर्षीय युवा चित्रकार मनीषा धुर्वे मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल डिंडोरी जिले के छोटे से गांव बीजापुरी से हैं। उनके किसान पिता तीथलाल की 3 संतानों में वे सबसे छोटी हैं। जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक परिवेश के बीच बीता उनका बचपन उनकी कला की सबसे बड़ी प्रेरणा बना है। सीमित संसाधनों और आसपास उच्च विद्यालय न होने के कारण मनीषा केवल प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं। बावजूद इसके अपनी प्रतिभा, मेहनत और प्रकृति से मिले अनुभवों के बल पर उन्होंने गोंड चित्रकला की विशिष्ट शैली में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके चित्र जनजातीय जीवन, लोक आस्थाओं, वन्य जीव जंतुओं और प्रकृति के जीवंत रंगों को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करते हैं। प्रख्यात गायक, अभिनेता, संगीतकार किशोर कुमार की 97वीं जयंती पर 4 अगस्त को वजीर इवेंट एंड एंटरटेनमेंट संस्था की ओर से पहला बांगड़ू अवार्ड 2026 दिया जाने वाला है। संस्था के संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बांगड़ू वह शब्द है जिसका उपयोग किशोर कुमार अपने लाइव शोज में दर्शकों को संबोधित करते हुए किया करते थे। इसी शब्द से प्रेरित होकर इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता का उद्देश्य किशोर कुमार के गीतों को जीवंत रखने वाले नए गायकों की खोज करना है। ऐसे में किशोर कुमार के गीत गाने वाले गायकों के बीच प्रतियोगिता कराकर किशोरदा के बांगड़ू को तलाशा जाएगा। चुने गए 15 प्रतिभागियों के बीच 4 अगस्त को डीबी सिटी में फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे होगा और इस फाइनल में विजेता को बांगड़ू अवार्ड 2026 की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें हम आपको दे रहे थे जानकारी हमारे अपने भोपाल शहर में होने वाली साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की। इसी के साथ परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हम देशभक्ति गीत।

0: रेडियो आजाद हिंद सुनिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: स्वाधीनता संग्राम और देशभक्ति को पूर्णता समर्पित देश का पहला रेडियो चैनल आजाद
0: हिंद। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रणबांकुरों की वीर गाथा,
1: देशभक्ति के गीत सुनाता
0: रेडियो आजाद हिंद,
1: देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद सुनते रहिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी का एक कारण भारत के लोकमानस में आई आजादी की वो चेतना थी जो सुदूर वन प्रांतरों में बसे टोलों में स्वतंत्रता के लिए पनपी थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी तो मध्य प्रदेश में नमक की जगह जंगल सत्याग्रह ने ले ली। प्रदेश भर में ये आंदोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया। अनेकों देशभक्त शहीद हुए, लाठियां खाई, जेल की यातनाएं भोगी, पर टस से मस नहीं हुए। आंदोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। सिवनी जिले के ग्राम टुरिया में उठी आंदोलन की आंधी बिना प्रशिक्षण और बिना किसी योजना के उठी एक ऐसी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयंसेवक शासकीय जंगल चंदन बगीचा में जाकर घास काटकर सत्याग्रह करते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिए जाते। बावजूद इसके आंदोलनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घास काटकर सत्याग्रह किया जाना तय हुआ। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया, मगर सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। पुलिस ने आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोग भड़क उठे। लोगों की उत्तेजना के विरोध में उन पर गोलियां बरसाई गईं। आंदोलनकारियों को वृक्षों से बांधकर कोड़े मारे गए। लहूलुहान आजादी के दीवानों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। टुरिया गांव चीत्कार कर उठा, मगर अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीढ़ियों तक आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा। स्वाधीनता के लिए उठा ये विप्लव देश की आजादी तक नहीं थमा।

0: यार ये गजबी काका का खाना इतना लजीज बनता है, क्या बताएं यार।
1: अरे वो इसलिए कि काका केवल खाना ही नहीं देते बल्कि उसमें अपने पन का बघार भी लगाते हैं।
0: बिल्कुल सचमुच ऐसा खाना मिले तो यार मैं तो कभी शादी ही ना करूं।
1: बिल्कुल सही। अरे जब काका का खाना हो तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है।
0: सही बात है।
1: लेकिन यार आज पूरा वातावरण महक रहा है, ऐसी कौन सी अगरबत्ती लगाई है काका ने?
0: अरे अभी पूछ लेते हैं। काका, ओ काका, अरे ये तो बताओ आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है जो पूरे वातावरण को महका रही है?
2: ये चंदन की अगरबत्ती है बेटा।
0: चंदन की अगरबत्ती? क्या इस अगरबत्ती से आपका कोई खास लगाव है?
2: अब क्या बताएं बेटा, चंदन की अगरबत्ती जलती है तो न जाने कितनी आहें इतिहास से टकरा कर लौट आती हैं।
0: क्या चंदन की इस अगरबत्ती का भी कोई इतिहास है काका?
2: लगता है आज एक बार फिर तुम सब ने मिलकर काका को फंसा ही लिया। अब तुम्हें चंदन के जंगल और टुरिया सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताना ही होगा।
0: हाँ काका बताओ ना, यही तो हम सुनने आए हैं, हमें अच्छा लगेगा अपने पुरखों का इतिहास जानकर।
2: तो सुनो, ये कहानी है जंगल सत्याग्रह की।
0: अच्छा।
2: इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह अंग्रेज हम भारतीयों पर जुल्म ढाते थे, किस तरह निर्दोषों पर गोली चलाकर उन्हें मार डालने में कोताही नहीं बरतते थे।
0: अच्छा।
2: फिर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर सीमेन हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदरुद्दीन, आतंक का चेहरा सब तरफ एक जैसा ही होता है।
3: अरे ये तो हद हो गई भैया।
1: अरे ऐसा का हुआ जो इतना चिल्ला रहे हो?
3: क्या, अरे तुम्हें पता नहीं ये जो अंग्रेज अब हमारे जंगल पर भी अपना अधिकार जमाने लगे हैं?
1: वो तो हमारे देश में मेहमान बनकर आए और अब पूरे देश पर कब्जा जमा लिया।
3: हा?
1: तो जंगल भी उन्हीं के होंगे ना?
3: पर भैया ये तो अति हो गई। जब जंगल पर ही उनका कब्जा हो जाएगा तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे और हमारे पशु कहाँ चरेंगे?
1: कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: अच्छा सुनो।
1: हाँ।
3: तुम्हें पता है कि हमारे गांधी बापू ने कोई सत्याग्रह किया है?
1: हाँ, नमक बनाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। मुझे तो बस इतना ही मालूम है।
3: अच्छा, इससे अधिक जानकारी हमें भाई मूका और राम प्रसाद से ही मिल पाएगी।
1: हाँ।
3: है ना, वो ही हमें बताएंगे क्योंकि वो आसपास ही नहीं पूरी दुनिया की खबर रखते हैं।
1: तो फिर चलो उनसे ही पूछते हैं।
3: हाँ।
1: इसका कोई उपाय है भी? हाँ। या नहीं?
3: चलो चलो
1: चलो चलो।
2: तो ये थी एक चिंगारी जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम टुरिया से उठी। यही चिंगारी आग बनकर जंगल सत्याग्रह के रूप में पूरे देश में फैल गई। सन 1929-30 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया।
0: अच्छा।
2: जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। इस नमक सत्याग्रह को मध्य प्रदेश में एक नया स्वरूप दिया गया जिसे आज जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
3: तो मूका भाई, आप ही हमें कुछ सलाह दो ताकि हम इन अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त हो सकें।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो कभी कम नहीं होगा साथियों, हमें ही कुछ करना होगा।
3: आप तो देख ही रहे हैं मूका भाई, अभी कुछ ही दिनों पहले ही अंग्रेजों के पिट्ठू बने हमारे ही भारतीय भाइयों ने किस तरह से हमारे साथियों को पेड़ों पर बांध कर 40-40 कोड़े मारकर उन्हें लहूलहान कर दिया।
1: कुछ को तो कांजी हाउस में ही बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ भी कोड़े फटकारे गए।
5: भाई यदि हमें भोजन के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मजबूरन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
4: हमें जंगल सत्याग्रह करना पड़ेगा ताकि हम ईंधन और चारे की सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
3: ये कैसे होगा मुका भाई, अरे आखिर हमें भी तो कुछ बताएं।
5: देखो भाई, हमें गांधी जी को अपना आदर्श मानकर बिना अस्त्र और शस्त्र लिए चंदन के बगीचों में जाकर घास काटने का काम करना होगा।
4: और हाँ, ये काम हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर करेंगे ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे अंग्रेज और अधिक आक्रामक हो जाएंगे।
5: जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में दांडी यात्रा की और नमक बनाया, उसी तरह हम अपने जंगल में घास काटकर विरोध दर्ज करेंगे ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हम में भी एकता है। हमारा नारा होगा आदिवासियों की हुंकार
6: डोलेगी गोरी सरकार,
7: आदिवासियों की हुंकार
8: डोलेगी गोरी सरकार।

0: लो भाई, जंगल सत्याग्रह तो शुरू हो ही गया।
1: ये दुर्गा शंकर मेहता जी भी कमाल के आदमी हैं। कांग्रेस कार्यालय में शिविर प्रारंभ कर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।
0: भैया कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: कि हमारे साथी चंदन बागीचे में रोज ही जाकर घास काटने का काम कर रहे हैं।
1: अरे घास काटने के पहले नोटिस भी तो देते हैं, तभी तो चार पांच लोग मिलकर जा पाते हैं।
0: इसके एवज में जुर्माना जो भरना पड़ता है वो?
1: अरे वो तो हमें भरना ही पड़ेगा, आखिर देश के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं।
0: तुमने देखा
1: क्या,
0: पहले तो इन अंग्रेजों ने हम पर जुर्माना किया।
1: हाँ।
0: फिर हमारे बर्तन भाड़े रख लिए, लेकिन अब जब सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ गई, तो सबको गिरफ्तार नहीं करते बल्कि जंगल में ही कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं।
1: इन्हें भी पता चल गया है कि हमारे मूका भाई की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, लोग उनकी एक आवाज पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
0: सही कहा।
2: इधर जंगल सत्याग्रह चल ही रहा था, पर अंग्रेज सरकार भला कैसे चुप रह सकती थी। वो भी ताक में थी कि किस तरह ये आदिवासी भड़के और गोरी सरकार अपना वास्तविक

0: तुम चिंता मत करो, तुमको आदेश भी मिलेगा और पुलिस फोर्स भी।
1: थैंक यू साहब, तब तो समझो काम हो गया।
0: सद्दुद्दीन, तुम इन आदिवासियों को ऐसा सबक सिखाना ताकि और कोई आदिवासी सर न उठा सके।
1: जी साहब।
0: टीच देम ए लेसन, समझा?
1: जी साहब।
0: तुमको आदेश चाहिए, ये लो आदेश।
1: समझ गया साहब, समझ गया। चलो मेहता, अब हमें कोई डर नहीं है, साहब भी हमारे साथ हैं। अब तो जो भी सामने आएगा उसे भून कर रख देंगे।
2: पर इंस्पेक्टर साहब, आदिवासियों में जबरदस्त एकता है, उसका क्या करें?
1: उनकी एकता के पीछे मुंह का लुहार है, उसको गिरफ्तार कर लो, बस काम पूरा।
2: ऐसे में कहीं स्थिति विस्फोटक हो गई तो?
1: उससे निपटने के लिए हमारे पास बंदूकें तो हैं। तुम चिंता मत करो मेहता, मेरे पास सीमेन साहब का ये लिखित आदेश है कि टूरिया गांव के लोगों को जोरदार सबक सिखाना है ताकि फिर कभी कोई मुंह का लुहार पैदा ही ना हो पाए।
2: कैसा आदेश है साहब?
1: ये देख रहे हो?
2: हाँ।
1: ये सीमेन साहब का आदेश।
2: अच्छा।
1: जिसमें साफ साफ लिखा है कि टूरिया गांव के लोगों को ऐसा सबक सिखाओ जिससे कभी कोई सर ऊंचा ना कर पाए।
2: यार सदरुद्दीन, ये सीमेन तो बहुत ही कमीना साहब है यार।
1: अरे ये तो इतना कमीना है कि जब भी वाइसराय को चिट्ठी लिखता है तो गांधी जी के मरने की कामना करता है।
2: हम ऐसे ही कमीने अफसर के साथ कब तक काम करते रहेंगे यार?
3: क्या करें यार, अंग्रेजों की खा रहे हैं ना, तो उनकी बजानी भी होगी।
2: हाँ।
4: भैया सुना?
5: हाँ।
4: ये इंस्पेक्टर सदरुद्दीन के नखरे आजकल बहुत ही बढ़ गए हैं।
6: अरे जब से वो सीमेन साहब से मिलकर आया है ना, तब से न जाने कहाँ से उसके पर उगाए हैं। हमेशा मार डालने की धमकी देता रहता है।
4: मार डालने की धमकी देता है, यूँ नहीं देगा, पर जिस दिन वो मूका भाई के हत्थे चढ़ गया ना, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
6: पर मूका है कहाँ आजकल, वो कर क्या रहा है पता ही नहीं चलता।
4: अरे वो आजकल गांव गांव घूम कर लोगों को जागृत कर रहे हैं ताकि ये गोरी सरकार कुछ सबक सीख सके।
6: हाँ, लगता है अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा।
4: ऐसा कैसे कह रहे हो भाई?
6: मुझे लगता है कि सदरुद्दीन के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं।
4: हे ईश्वर, हमारे गांव को बुरी नजर से बचाना।
6: अरे भाई, बुरी नजर तो लग ही गई है, अब तो कुछ होकर ही रहेगा।
4: तुमने सुना है, जंगल सत्याग्रह की आग अब पूरे देश में फैल रही है।
6: हाँ।
7: सुनो साथियों, बैतूल के पास चिकलार गांव में 22 अगस्त को हमारा एक साथी शहीद हो चुका है।
4: अरे ये आपको कैसे पता चला मूका भाई?
7: वहां से मुझ तक खबर आई कि दीपचंद गोठी के नेतृत्व में बैतूल के पास चिकलार ग्राम में और गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में बंजारी ढाल में जंगल सत्याग्रह हो चुका है। इसी में हमारे साथी कोका गौंड पुलिस की गोली से शहीद हो चुके हैं।
6: अब तो हमें भी कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे।
7: तो हम सब मिलकर तय करते हैं कि 9 अक्टूबर 1930 को हम सब घास सत्याग्रह करेंगे।
6: हाँ।
7: इसके लिए गोरी सरकार को नोटिस भेजने का काम मैं कर देता हूँ। धरती की माटी है, साधारण वस्तु नहीं, सोने चांदी से अधिक कीमती माटी है, जो मूल्यवान सर्वाधिक प्राण हुआ करते वे प्राण धरा हित देने की परिपाटी है। जिस धरती की है गंध हमारी सांसों में, अभिमान उसी के प्रति अपना अपनापन है, उस माँ के प्रति ममता वो सबसे बड़ा गर्व, उसका कहलाना ही गौरव संवर्धन है।
4: चलो भाई, आज 9 अक्टूबर है, सब नदी किनारे चलो।
6: हाँ,
4: वहाँ आज मूका भाई और राम प्रसाद सत्याग्रह करेंगे, इसके लिए उसने गोरी सरकार को नोटिस भी दे दिया है।
6: तभी मैं सोचूं कि आज हमारे गांव के आसपास इतनी पुलिस क्यों दिखाई दे रही है।
4: अरे वो तो आएगी ही, आखिर उन्हें भी तो अपनी ड्यूटी करनी ही है।
6: हाँ चलो, सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। चलो।
4: हाँ, हाँ, हाँ, चलो भाई आओ। चलो। अरे वाह, इसमें तो औरतें भी शामिल हैं।
6: अरे उधर देखो, वो बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।
5: अरे आखिर ऐसा क्या होने वाला है भाई?
6: अरे भाई, हमारे मूका भाई और राम प्रसाद जी अपना भाषण करेंगे और बताएंगे कि ये आंदोलन कितना जरूरी है।
7: हाँ, चलो, चलो, चलो चलो, आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? हाँ चलो, उठो बैठे।
8: आज की ये तारीख एक इतिहास रचने जा रही है। पूरा गांव ही इस नदी के किनारे जमा हो गया है। पुलिस भी अपनी तैयारी में है।
9: अच्छा,
8: कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इतिहास ऐसे ही नहीं रचे जाते, कई कुर्बानियों के बाद ही इतिहास रचा जाता है। पुलिस इस सत्याग्रह को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही थी। ग्रामीणों से मारपीट तो अब आम बात हो गई थी। लोगों का आक्रोश उबल पड़ने को तैयार था। पूरा गांव ही मानो बारूद के ढेर पर बैठ गया था। किसी को भी अपनी जान की फिक्र नहीं थी। सभी के सर पर मौत का कफन था।
10: मीटिंग बड़ी जोरदार होने वाली है। आज मौका भाई जो है ना, उसके ऊपर बात करेंगे।
7: साथियों, ये गोरी सरकार हम पर लगातार जुल्म ढा रही है। हमें जंगल से लकड़ी और घास काटने की इजाजत नहीं मिलती। आखिर हमें भी तो भोजन के लिए लकड़ी और हमारे पशुओं के लिए चारा चाहिए। हम कहां से लाएं ये सब? यदि इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक नहीं होगा तो आखिर किसका होगा? बोलो साथियों।
11: बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने।
12: सही कह रहे हैं मुका भाई।
7: इसी भूमि पर हम पैदा हुए, बड़े हुए। अब इस जंगल पर हमारा नहीं तो फिर किसका अधिकार होगा? आखिर हम इस जंगल के पेड़ों को तो नहीं काट रहे? हम तो यहाँ से लकड़ी और घास ही तो काट रहे हैं। फिर ये गोरी सरकार हम पर क्यों जुल्म करती है? ये कौन होती है हमारा हक मारने वाली? साथियों, आज तो हम घास काट कर सत्याग्रह करके ही रहेंगे।
11: बिल्कुल
12: बिल्कुल,
7: चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों नहीं लगानी पड़े। साथियों, बस मुझे इतना ही कहना है, जो कुछ बच गया है उसे भाई राम प्रसाद पूरा करेंगे।
11: मुका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
12: हम तुम्हारे साथ हैं।
11: मुका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
13: साथियों, भाई मुका सच कह रहे हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। गांधी जी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से अधिक दोषी तो जुल्म सहने वाला होता है। हमने इस गोरी सरकार का बहुत जुल्म सह लिया। अब हम और अधिक दोषी नहीं बनना चाहते। हमें गांधी जी के इस उपदेश को सामने रखकर गोरी सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ एक होना होगा और उसके लिए इसका विरोध करना होगा, तब ये सरकार जीतेगी। कहां तो ये गोरे हमारे देश में मेहमान बनकर आए और कहां ये हम पर ही राज करने लग गए। अब सहन नहीं होता ये सब। इसलिए आओ साथियों, आज हम चंदन के इस बाग में पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल घास ही काटेंगे। इस संकल्प के साथ आओ, हम सब मिलकर घास काटें।
11: हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ। मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
14: मूका, तुम घास नहीं काट सकते, तुम्हें अपनी गिरफ्तारी देनी होगी।
7: गिरफ्तारी? आखिर किस जुर्म में? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया।
14: इतने सारे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हो और कह रहे हो मैंने कोई जुर्म नहीं किया।
13: लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना जुर्म नहीं है?
14: ये तुमसे ज्यादा हम अच्छी तरह से जानते हैं।
7: तुम क्या जानोगे क्या होती है देशभक्ति? तुम तो बिक चुके हो। हमारे ही साथी होकर हम पर बंदूक तानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
14: लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई है। इन्हें गिरफ्तार कर लो। मूका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
7: कर लो गिरफ्तार।
14: सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उनको।
7: कर लो गिरफ्तार। इसका परिणाम भी सोच लो।
14: वह तो बाद में देख ही लेंगे।
7: अरे साथियों, सुना तुमने? हमारे मूका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो गोरी सरकार के कैदी बन गए हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो उनके आखिरी दर्शन तो कर लें। क्या पता अब उनसे कब भेंट हो पाए। तो चलो साथियों, चलो उठो। आओ चलो चलो।
1: रेंजर मेहता
15: जी,
1: देख रहे हो इस जनसराब को?
15: हाँ देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, भीड़ का गुस्सा भी देख रहा हूँ।
1: जानते हो इनसे कैसे निपटना है?
15: हमारे पास इन बंदूकों के सिवाय और कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
1: नहीं मेहता, तुम भूल रहे हो, हमारे पास पूरी पुलिस फोर्स है।
15: वो तो है इंस्पेक्टर साहब, पर भीड़ को देखते हुए हमारी फोर्स बहुत कम दिखाई देती है।
1: मेहता, तुम कैसी बेवकूफ़ी ऐसी बात कर रहे हो। हमारे जवानों के पास भरी हुई बंदूकें भी तो हैं।
15: ये सभी मूका के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये उसका अभिवादन करना चाहते हैं। एक गिरफ्तार व्यक्ति का अभिवादन, यही है हमारी भारतीय परंपरा।
1: अरे तुम देखते रहो मेहता, कौन किसका किस तरह से अभिनंदन करता है।
15: हे भगवान।
9: सिपाहियों तैयार हो जाओ, इस भीड़ पर अत्याचार शुरू कर दो।
15: देख रहे इंस्पेक्टर साहब, लोग अत्याचार सहकर भी हमारे सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं।
1: वही तो मैं चाहता हूँ रेंजर मेहता, ये लोग उत्तेजित होकर कुछ ऐसा करें कि गोली चलाने के लिए मेरे हाथ खुल जाएं।
15: तुम हाथ खुलने की बात कर रहे हो सदरुद्दीन, उधर लोग हसिया लेकर के इधर ही बढ़ रहे हैं।
1: मुझे तो इसी घड़ी का इंतजार था।
9: सिपाहियों तैयार हो जाओ, ये लोग उस पॉइंट से आगे बढ़े तो गोली चला देना।
15: अरे ये तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे सदरुद्दीन ये तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करो वरना हमारी भी जान खतरे में।
9: सिपाहियों फायर।
8: तो इस तरह से गोरी सरकार ने जो चाहा वो होकर रहा। अंततः इस मनोरम शांतिपूर्ण घाटी में पुलिस की बंदूकें गरज उठी, परिणाम स्वरूप 4 लोग शहीद हो गए।
16: अरे?
8: और 30 लोग घायल हो गए।
16: ओ।
8: विशाल जन समुदाय पर गोली चलाकर आखिर ये गोरी सरकार क्या समझती थी कि उसने कोई तीर मार लिया। इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक महिला ने तो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। 2 अन्य महिलाओं एवं एक पुरुष को सिवनी अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इन 4 शहीदों के नाम थे गुड्डेबाई साकिन खामरीट, श्रीमती रेनीबाई साकिन खंबा, श्रीमती देवोबाई साकिन भीलवा और बिरजू भोई साकिन मुरझोड़। ये 4 अमर शहीद आदिवासी थे। जंगल सत्याग्रह की लपटें सतपुड़ा के जंगलों में उठी तो खंडवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मुंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगांव आदि स्थानों पर आंदोलन तेज हो गया। क्रांतिकारी चेतना को लोक आश्रय मिला, हुकूमत के प्रतिरोध की भावना को पंख लग गए। 103 सेनानी जेल पहुंचे। अंग्रेजों के जुल्म की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती।
7: अरे भाई सुना, ये सदरुद्दीन ने जो गोली चलाई उससे कितने लोग मारे गए हैं?
6: हाँ, 4 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल भी हुए हैं। पर ये गोरी सरकार तो बहुत ही जल्लाद निकली।
7: क्यों, क्या हुआ क्या?
6: अरे तुमने नहीं सुना, अभी तक शहीदों की लाश उनके परिवार वालों को नहीं दी गई है। यही नहीं, घायलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
7: हाँ हाँ हाँ, ये तो सुना और ये भी सुना कि सिवनी अस्पताल में भी कड़ा पहरा लगा रखा है।
6: पर ऐसा आदेश दिया किसने होगा?
7: अरे वही है पुलिस कप्तान पेरी, ये उसी की हरकत है।
6: कैसे कैसे लोग होते हैं, इन्हें ना तो लाशों पर दया आती है और ना ही विवश घायलों पर, पूरी कौम ही जल्लाद है।
7: अरे भाई, विदेशी सरकार के स्वदेशी पुलिस कर्मियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे साम्राज्य के प्रति इतने अधिक वफादार होते हैं जितना कि खुद सम्राट भी नहीं होगा।
6: इसीलिए सदरुद्दीन ने सीमेन के आदेश का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया। और उनके सबक सिखाने का आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यदि मुकदमा चले तो उसके आधार पर खुद को बचाया जा सके।
7: पर भाई अब होगा क्या? अरे हमें मिलाकर पूरे 18 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश सीमेन ने जो दिया है।
6: सीमेन अपने को जितना चतुर समझता है ना, वो है नहीं। देखना वो अपने ही जाल में किस तरह से फंसता है। हमारे क्षेत्र के 2 वकीलों प्रभाकर जठार और नितेंद्र नाथ शील ने हम लोगों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।
7: अरे वाह, देश को ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता है।
6: अब देखना भाई, ये दोनों किस तरह से अदालत में पुलिस कर्मियों की बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं।

0: इस तरह से उन दो वकीलों ने ग्रामीणों का बचाव करने के लिए मुकदमा लड़ना शुरू किया। सीमेन का तबादला सिवनी से कहीं और हो गया।
1: अच्छा,
0: पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपनी किताब लिविंग इन एरा में इस घटना का जिक्र पृष्ठ क्रमांक 166 पर विस्तार से किया है।
1: अच्छा,
0: यद्यपि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सत्याग्रहियों और राजनीतिक बंदियों, खास तौर से बड़े नेताओं के प्रति सहानुभूति बरतते थे, लेकिन सीमेन उन कट्टर अधिकारियों में से था जो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के प्रति अत्यधिक सख्ती बरतने का हामी था। शुक्ल जी ने अपने अभिनंदन ग्रंथ में भी इस घटना का जिक्र किया है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा था अंग्रेजों का शासन, देखा कितना जुल्म ढाते थे वे हम पर।
1: पर काका, मूका लोहार और रामप्रसाद जी का क्या हुआ?
0: रामप्रसाद जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
1: अच्छा,
0: फिर उन्हें 6 माह की सजा दे दी गई। रही बात मूका लोहार की, तो तुम्हें बताएं कि देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को टुरिया के जंगल में सत्याग्रहियों के स्मारक का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ किया गया।
1: अच्छा,
0: इसमें टुरिया एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोगों ने भाग लिया और अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टुरिया ग्राम के पटेल सीताराम ने टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता मुका लुहार तथा उनके साथियों को महाकौशल प्रांतीय प्रतीक स्वरूप ताम्र पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
1: वाह काका वाह, आज तो आपने हमें इतिहास की बड़ी मूल्यवान जानकारी दी है।
0: देखो बेटा, आखिर ये आजादी हमें इतने सस्ते में तो मिली नहीं।
1: हाँ।
0: कि इसका सही मूल्य भी न जान पाए। लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है, इसे हमें ही संभाल कर रखना पड़ेगा बेटा।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुरसागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे भक्ति गायन। कलाकार हैं माधवी मधुकर झा। ये प्रस्तुति दी उन्होंने भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: गोस्वामी तुलसीदास विरचित गोपाल गोकुल बल्लभी। पहली बार कभी लाइव परफॉर्म करने वाली हूँ, प्रयास करूँगी कोई त्रुटि ना हो।

आचार्य शंकर विरचित भजगोविंदम है और मैं चाहूंगी आप सभी एक साथ कर्तव्य के साथ इसके मेरे साथ गाएंगे ना। वैसे तो काफी बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, मैं कुछ श्लोक गाती क्योंकि समय

दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और वसंत बार बार आते और जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, परंतु इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आचार्य

और आज की मेरी आपकी प्रस्तुति है, आप सभी मेरा साथ देंगे। मैं रिपीट भी करवाऊंगी, आप लोगों को भी गाना पड़ेगा।

0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां मेरी संगत कलाकारों के लिए होनी चाहिए और आप सभी श्रोतागणों के लिए भी जो इस प्रकार मुझे सुनने के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे माधवी मधुकर झा का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए हैं। वैसे तो वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका दमकता चेहरा, उज्ज्वल आंखें, उनकी विद्वता, बोलने की कला और आत्मविश्वास सभी को मोह लेता था। जिनसे वे वार्तालाप करते थे वे ही उनके हास परिहास करने की क्षमता का परिचय पा जाते थे। सभी से स्वामी जी हंसकर बातें किया करते थे। गंभीर से गंभीर विषयों पर आख्यान देते समय भी वे विषय को सरस भाव से प्रस्तुत करते थे ताकि विषय उबाऊ न बन जाए।
1: बातों के बीच हल्की फुल्की कहानियां, चुटकुले, संस्मरणों का पुट देना उनकी खासियत थी। उनकी बताई गई कुछ कहानियां हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप उनके व्यंग विनोद के बारे में कुछ और बातें करेंगे?
0: श्री रामकृष्ण ने काली माता से निवेदन किया था, माँ मुझे नीरस साधु मत बनाना, मुझे सरस साधु ही बनाना। स्वामी विवेकानंद भी सरस साधु थे। वे बचपन से ही विनोद प्रिय थे। कहा करते थे,
2: मैं साधु हूं तो क्या अपने हृदय को भी उखाड़ कर फेंक दूं? जो तो सन्यास मनुष्य को पाषाण बना देता है, पर ऐसा सन्यास मुझे पसंद नहीं है।
1: स्वामी जी महान प्रतिभाशाली थे और वे अपनी बातचीत, साहित्य और भाषण में परिहास और व्यंग का पर्याप्त प्रयोग करते थे। बचपन में स्वामी जी बहुत से चुटकुले कहा करते थे। उन्हें एक कहानी बहुत अच्छी लगती थी।
2: किसी बुढ़िया के पास एक बकरी थी। एक ठग ने एक दिन उसकी बकरी चुरा ली और उसके पास जाकर बोला,
3: राम राम अम्मा, राम राम,
4: राम राम, राम राम, कैसा है रे?
3: सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है अम्मा, और क्या। एक बात बताऊं आपको?
4: हाँ बोल।
3: अम्मा तुम्हारी जो बकरी है ना, वो आज अदालत में जज बन गई है, आपको पता है?
4: अरे बाप रे, ये कौन सी खबर सुना रहे हो बेटा?
2: बुढ़िया बड़ी सरल थी, उसने ठग की बात पर विश्वास कर दिया। वो अदालत गई, उसने देखा कि वहां जो जज के रूप में काम कर रहा है उसके मुंह पर भी बकरी के समान दाढ़ी है। ये देखकर हाथ में रस्सी लेकर जज के पास जा पहुंची और कहने लगी,
4: आजा आजा मेरी बकरी, आजा। आ,
5: आ, अरे अम्मा, अरे दूर हटो,
4: आजा आजा,
5: अरे दूर हटो अम्मा, अरे मैं बकरी, ओहो, अरे सिपाही, अरे इसे यहाँ से कोई हटाओ, अरे दूर हटो अम्मा,
4: आजा आजा।
2: जज की बात सुनकर बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया और वो बोली,
4: क्या तुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? तू मेरी बकरी था, मैंने बड़े जतन से तेरा पालन किया और तू सब भूल गई, आजा आजा।
2: अदालत में कुछ लोग उस बुढ़िया को पहचानते थे। उन्होंने उससे पूछा,

0: आज तो सारा माल तेरा। सारा के सारा माल पोटली में।
1: चल जल्दी से सब कुछ समेट ले।
0: चल जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप, रास्ता रास्ता कहां से। अरे भाग।
2: अरे उधर
0: रास्ता कहां से।
2: कौन है। अरे देखो कौन है। देखो भाई
3: आवाज कहां से।
2: अरे चोर है, चोर चोर पकड़ो।
4: चोर चोर चोर चोर।
3: अरे पकड़ो इसे।
4: अरे पकड़ो पकड़ो
3: पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
2: चोरी करता है।
4: चोरी चोरी चोरी करता
2: है। अरे एक काम करो, सेठजी को बुलाओ। सेठजी को जाके बोलो।
3: हाँ जाता हूँ।
0: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
2: सेठजी को बुलाओ।
5: सेठजी सेठजी उठो जल्दी, चोर घुसा है अपने घर में।
6: कौन घुसा है।
5: अरे चोर, जल्दी उठो।
6: अरे अरे चोर घुसाया। अरे बाप रे, अरे मेरी लाठी।
5: चलिए लो आपकी लाठी।
6: अरे पकड़ उसे, नहीं तो भाग जाएगा। मेरा माल लूट के ले गया। अरे मेरा माल लूट के ले गया। अरे क्यों मारते हो बेचारे को। अरे हटो हटो, तुम हटो। ऐसे मारा जाता है क्या। अरे ठीक है चुप रहो चुप रहो। अरे जानते नहीं हो क्या, अहिंसा परमो धर्म।
5: तो फिर इस चोर का क्या करें।
6: अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ ना इस चोर का क्या करना है। एक काम करो, तुम लोग ध्यान से सुनो। रक्तपात करना बहुत खराब है, उसको मारने से रक्तपात हो जाएगा। इसीलिए तुम सब मिलके इस चोर को पत्थर से बांध दो। क्या करो।
5: पत्थर से बांध देते हैं।
6: हाँ, उसके बाद इस चोर को नदी में फेंक दो।
5: हाँ, ये सही है, ये सही है,
6: ठीक है ना।
4: अरे मुझे माफ कर दो।
7: सही है।
8: लोकाचार के आडंबर को ही लोग धर्म समझते हैं। स्वामी जी ये सब देख सुनकर हैरान हो जाते थे, इस बात का मजाक भी बनाते थे। वो कहते थे,
9: सनातन हिंदू धर्म का गगनचुंबी मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जाने के न जाने कितने मार्ग हैं, और वहां क्या नहीं। वेदांती के निर्गुण ब्रह्म से लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति चूहे पर सवार गणेश जी छोटे देवता गण जैसे षष्ठी माँ काल इत्यादि और भी न जाने वहां क्या क्या मौजूद है। फिर वेद वेदांत दर्शन पुराण एवं तंत्र में ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसकी एक एक बात से भाव बंधन टूट जाता है। और लोगों की भीड़ का तो कहना ही क्या, 33 करोड़ लोग उस ओर दौड़ रहे हैं। मुझे भी उत्सुकता हुई और मैं भी दौड़ने लगा, किंतु ये क्या, मैं तो वहां जाकर एक अद्भुत कांड देखता हूं। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है। दरवाजे के पास एक 50 सिर वाले 100 हाथ वाली 200 पेट वाली है 500 पैर वाली मूर्ति खड़ी है। उसी के पैरों के नीचे सब लोटपोट हो रही हैं।
10: स्वामी जी सरस भाव से कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,
9: एक व्यक्ति से इसका कारण पूछने पर उत्तर मिला,
11: भीतर जितने देवता हैं उन्हें दूर से प्रणाम कर लेने अथवा 2 फूल डाल देने से ही उनकी पूजा हो जाती है। असली पूजा तो इनकी होनी चाहिए जो दरवाजे पर विद्यमान है। जो वेद वेदांत दर्शन पुराण और शास्त्र तुम देख रहे हो उन्हें कभी कभार सुन लो तो भी हानि नहीं, पर इनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा।
9: तब मैंने फिर पूछा, इन देवता जी का भला क्या नाम है। उत्तर मिला,
11: इनका नाम लोकाचार है।

0: चेन्नई के ब्राह्मणों को चंदन तिलक देखकर एक बार स्वामी जी ने कहा,
1: बंगाल से वैष्णव लोगों के तिलक पर इनका इतना विश्वास है कि तिलक विलक सब कोई कहे, पर रामानंदी तिलक दिखत गंगा पार से यम गौ द्वार के खिड़क।
2: बंगाल के साहित्यकारों के नारी सुलभ आचार व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये एक दल देश में उमड़ रहा है जिसमें पैदा लोग औरतों की तरह पहनते ओढ़ते नजाकत भरी बोली छांटते तिरछी चाल से चलते हैं। ये किसी की आंख पर आंख रखकर नहीं बोल सकते, ये पैदा होने के दिन से ही प्रेम की कविताएं लिखते हैं और विरह की आग में रो रो कर जिया करते हैं।
2: स्वामी जी सिर्फ दूसरों का मजाक ही नहीं बनाते थे, अपने विषय में भी मजाक करते थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा,
1: जब मेरी तबीयत अच्छी रहती है तब तो मैं समझता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, पर जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मां कहकर प्रार्थना करता हूं। देखा मैं कितना स्वार्थी और मौका परस्त हूं।
0: परिव्रजन के बाद स्वामी अमेरिका गए और वहां उन्होंने देखा कि लोग धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझते, वो कट्टर भी बहुत हैं।
2: स्वामी जी किसी भी संप्रदाय को छोड़ते नहीं थे। हमारे देश के पंडित पुजारी और पंडे पैसे वसूलने में तो तेज हैं ही, पर दूसरे धर्मों के ढोंगी पुरोहितों की भी कमी नहीं है। स्वामी जी मजाकिया अंदाज में एक कहानी सुनाते थे।
1: एक जापानी जहाज समुद्र में चलते चलते खतरे में आ गया। आकाश में बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। सब यात्री मिलकर जहाज के पुरोहित के पास गए और बोले,
3: स्वामी जी बहुत विपदा का समय है। स्वामी जी क्यों भाइयों?
4: बहुत बहुत बहुत बड़ी विपदा आ गई है महाराज।
3: स्वामी जी कुछ धर्म की बातें सुनाइए जिससे हम सबका कल्याण हो।
4: हाँ हाँ।
1: ये सुनते ही उन्होंने अपनी टोपी उतारी और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका धर्म तत्व चंदा उगाहने में ही निहित था। सब पंडे एक जैसे हैं।
0: अमेरिका में रहते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बारे में बहुत मजाक करते थे और वे कहते थे,
1: शरद जब अंग्रेजी में लेक्चर देता है तो ऐसा लगता है जैसे चंडी पाठ कर रहा हो, और गंगाधर उसकी तो नाक इतनी लंबी है और उत्तेजित हो जाने पर नाक से बोलने लगता है।
2: डॉक्टर राइट स्वामी जी के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने पूछा,
5: स्वामी जी क्या मैं डॉक्टर राइट भी ब्रह्म हूं?
1: जरूर।
2: एक दिन जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे तो डॉक्टर राइट को थोड़ी देर हो गई। जब वे वहां पहुंचे तो स्वामी जी ऊंचे स्वर में बोले,
1: आप लोग सावधान हो जाइए, ब्रह्म आ रहे हैं।

अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों को न जानने पर भी कभी कभी बहुत ही हास्यकर परिस्थिति बन जाती है। स्वामी जी जब राजस्थान भ्रमण कर रहे थे तो वे अपने को एक नए माहौल में पाए। वहां की रीति रिवाजों से वे अपरिचित थे, कई बार वे गलती भी कर बैठते थे।

0: स्वामी जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे कहते थे,
1: अच्छे सन्यासी बनने के लिए अच्छा रसोईया भी बनना पड़ता है।
0: बहुत ही सादे भोजन को भी वे बेहतर तरीके से पका सकते थे, जिसे लोग तृप्त होकर खाते थे। स्वामी जी पुलाव बहुत अच्छा पकाते थे। तरह तरह के पुलाव पकाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इस मामले में वे बहुत उदार थे। बंगाली भोजन में विलायती और मुगलई व्यंजन की मिलावट वे अक्सर करते थे।
2: स्वामी जी को मीठा बहुत पसंद था। बचपन में उनके घर पर मिठाई वाला आता था, सब बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते थे। स्वामी जी, जिनका नाम नरेन था, बहुत शरारती थे। एक बार मिठाई की हांडी से एक मिठाई उठाकर अपनी जीभ से छुआकर उसे फिर से हांडी में डाल दिया। सब शोर मचाने लगे, मिठाई वाला भी बिगड़ने लगा। नरेन बोले,
3: अब क्या होगा, पूरी हांडी की मिठाई तो झूठी हो गई है। अब तो मुझे ही सारी मिठाई खानी पड़ेगी। तुम लोग मेरी झूठन थोड़ी खाओगे।
0: स्वामी जी मिर्च बहुत खाते थे। 8-10 हरी मिर्च के बगैर उनका भोजन पूरा नहीं होता था। अमेरिका में जब कभी भी वे खाना पकाते थे, कोई खा नहीं पाता था। उनके लिए स्वामी जी अलग सब्जी पका कर देते थे। वे लोग भी मजाक में कहते थे कि स्वामी जी मिर्च डालकर काली मिर्च की सब्जी बनाते हैं।
2: स्वामी जी भोजन रसिक तो थे ही, पर उनका आधे से ज्यादा जीवन अर्धाहार में बीता था, अनाहार में बीता था। पिता की मृत्यु के बाद अधिकतर दिन वे फांका कशी में ही बिताते थे। फिर भारत भ्रमण के दौरान ज्यादातर दिन अनाहार के ही होते थे। कलकत्ते के मठ के प्रारंभिक दिनों में सभी सन्यासी भीख के अनाज पर ही आश्रित थे।
0: अपने भूखे रहने की कहानी स्वामी जी सबको सुनाते थे, और उनकी एक प्रिय कहानी थी, भ्रमण के दौरान हाथरस स्टेशन पर शरत चंद्र गुप्त से मुलाकात की कहानी। शरत चंद्र हाथरस स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। भूखे प्यासे स्वामी जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटे थे। शरत चंद्र की नजर पड़ी। उन्होंने पूछा,
4: स्वामी जी क्या आप भूखे हैं?
1: हाँ।
4: तो फिर घर चलिए, आइए।
1: क्या खिलाओगे?
0: शरत चंद्र ने एक उर्दू शेर कहा था, जिसका मतलब है, हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें अपना कलेजा भी मसाले में पकाकर खिला सकता हूं। यही शरत चंद्र बाद के दिनों में स्वामी जी के प्रिय शिष्य शरत महाराज बने थे।
2: स्वामी जी को फल बहुत पसंद थे। एक बार सन 1896 में लंदन में एक अद्भुत घटना घटी। वहां की सबसे बड़ी फलों की दुकान का नाम था विलियम व्हाइटली। स्वामी जी के किसी भक्त ने वहां काफी पैसा जमा करवा कर ये कहलवा दिया कि बढ़िया फल का टोकरा रोज सुबह स्वामी जी के पास पहुंचाया जाए। रोज सुबह 11 बजे फल स्वामी जी के पास पहुंच जाते थे। स्वामी जी के पूछने पर भी पता नहीं चला कि वो फल कौन भेजता है। एक दिन अनानास पाकर स्वामी जी बेहद खुश हुए। लंदन में अनानास? अजीब बात है, पर गुडविन जो उनके साथ रहते थे, अनानास छील ही नहीं पा रहे थे। कभी देखा जो नहीं था। स्वामी जी ने हंसते हुए उनसे चाकू ले लिया, छील कर काट कर थोड़ा चीनी डालकर सबको खिलाया। पहली बार सबने वो फल चखा, पर दाता का नाम किसी को मालूम न पड़ा। लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो दाता श्रीमती मैकलाउड ही थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। दिन के ठीक 12 बजे है। हमारे कार्यक्रमों को आप रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी। और इसके साथ ही अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अक्षय द्विवेदी का गायन।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने अक्षय द्विवेदी का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सुनो कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी भूत। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद।

0: मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, दो ही चार वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया, और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी कार्य उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो वो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांति को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, बस एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं, उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती, लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहन के ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने ये दान न दिया उसका तो जन्म ही वृथा गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी ही सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खेल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। और बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस तरह दीवान खाने में खूब कहकहे उठते। वकील साहब कभी इतने वात्सल्यमय न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते। बिन्नी बेटी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूं। पंडित जी ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर जवाब दिया, ना बताऊंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं। भाई, बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब ना कहना कि मेरी बेटी है, सुन रही हो? मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। दो कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में बिल्कुल निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला हो जाता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वो प्राणप्रद सुषमा और शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वतों में भी वो शीतलता नहीं थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादी में दिल का अरमान वो निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन। नौका पर सभी यात्रा करते हैं। जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बानक बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहां तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे और कहां निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए वो परलोक सिधार गई। संध्या घिर आई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए वो उस कमरे में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना। बिन्नी, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ भी काट छाट मत करना। पंडित जी ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, सुनो, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी कभी मत भूलना उसे। पंडित जी ने जवाब दिया, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, अच्छा सुनो, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला ने जवाब दिया, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने फिर कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। और पंडित जी ने कहा, कर दूंगा। और इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित, बिल्कुल तितर बितर हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से भी अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासमय उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वो उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो कुछ खा न लेते वो कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा चला करती, और जब तक वो सो न जाते तब तक वो भी सोने न जाती। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते और वो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति जब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सहज और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करते हैं वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है, वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, हंसने दीजिए, मैं यही आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई, तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया है? मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह को तुमने पूरा किया, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या क्या इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा अब नहीं करेंगे, उन लोगों के जो जी में आए करें। यहां कोई उनका दबैल बैठा हुआ है? पंडित जी ने कहा, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने जवाब दिया, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वो बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं? इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने, ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंध्येश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे और कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा? वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे दो घंटे बैठकर वापस चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आया। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा, वो अपने घर को ही रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं, कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहां पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने घर के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंधेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह लगती है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह से है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रच गया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर आए। विंधेश्वरी ने कहा, उन्हें याद करते करते बहुत रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे भी तो यही डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विंधेश्वरी ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने मना कर दिया कि अभी जल्दी क्या है शादी की। माता ने कहा, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देख कर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंधेश्वरी ने जोर से कहा, ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है और मैं भी उन्हें पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है, माँ ने दलील दी। विंधेश्वरी ने कहा, अरे अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। विंधेश्वरी ने बेचैन होकर कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूंगी। और वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी तो हो कोई। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 70 साल की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 के आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषण का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंधेश्वरी ने कहा, अम्मा मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं ये भी जानती हूं कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही माँ।
1: चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।

विंधेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने योग्य है। तंजीब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई संवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंधेश्वरी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल एक संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूं, उनके कंधों पर बैठी हूं, उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखलाऊंगी। अगर मैं पिछली बातें सोचूं तो ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री बनना स्वीकार किया, वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंधेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वो व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो देखो वो क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, कुछ न था, फिर कहा, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन? चौबे जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी, देख देख मेरे तो रोई खड़े हो गए। विंधेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी। चौबे जी ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो इसी घर में रहती थी ना, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार भी न था, उसमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी
फिर वही बात हुई। वो देखो मंगला खड़ी है। विंधेश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया जी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है भैया जी। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ करवाऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी, तुमसे क्या कहूं, मालूम होता है होगा। उस बात को जाने दो, यहां बड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चले। विंधेश्वरी ने कहा, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं करता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई देता है। मैं सच कहता हूं बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर ये दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंधेश्वरी ने कहा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहां। बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहां से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहां से चलो, न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। ये ध्वनि सहस्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही आवाज आ रही थी। बिन्नी ने रो कर पूछा, कैसी आवाज थी। पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी ने कहा, जरूर जरूर बहन जी की आत्मा है, जरूर उनकी आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं चाहा था। पंडित जी ने कहा, बिन्नी फिर वही आवाज आ रही है। बिन्नी, हाय ईश्वर, मैं सुन नहीं सकता, मैं कहां जाऊं, मेरे तो रोम रोम से वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है। कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा वो भागने लगे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, उन्हें मूर्छा आ गई। विंधेश्वरी भी दौड़ी, वो चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अतुल्य भारत।
0: श्रोताओं, मैं हूं कंचन।
2: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति संवाद, और संस्कृति संवाद में आज हम बात करेंगे गाय की महिमा की।
0: गाय यानी कि गौ माता भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जिसने न जाने कितनी गाथाओं, कितनी कहावतों तथा कितने शब्दों का निर्माण किया है।
2: बिल्कुल ठीक।
0: पुराना चलन रहा है कि अध्यापक जब बच्चे को निबंध लिखना सिखाते थे तो सबसे पहले इसी विषय पर निबंध लिखना सिखाया जाता था। वजह ये थी कि हर घर में गाय लगभग होती ही थी, इसलिए इस पर निबंध लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता था।
2: हाँ, गाय का चित्र आंखों में आता और कलम लिखने के लिए हरकत में आ जाता। गाय का दूध, दही, घी और इससे बनने वाली मिठाइयां, स्वाद जीभ पर आता और शब्द बनकर कॉपी पे उतर जाता।
0: लेकिन समय बदला, संस्कृति बदली, गाय COW काऊ हो गई और केवल तस्वीरों में ही दिखने लगी। शहरों की तो छोड़िए, गांवों में भी जब खेतों में हल खींचने का काम बैलों के बजाय ट्रैक्टरों से लिया जाने लगा तो गौ संपदा को भारी हानि पहुंची। नतीजा ये हुआ कि अब गाय पर निबंध लिखने में बच्चों के हाथ पांव फूलने लगे।
2: हाँ, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बच्चे से एग्जाम में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। अब उस बेचारे ने बड़ी मासूमियत से लिख दिया अपनी कॉपी में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। पर परीक्षक महोदय इतने रहम दिल नहीं थे। उन्होंने भी कॉपी पर नंबर देने के बजाय एक टीप लगा दी कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। खैर, ये तो हुई केवल हास परिहास की बात।
0: श्रोताओं, गाय के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भारतीय धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हो। ऋग्वेद से ही हम इसके बारे में सुनने लगते हैं और लगातार सुनते चले आते हैं। यहाँ तक आधुनिक काल में भी हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गाय पर ही आधारित है।
2: हाँ, इस उपन्यास का नायक हौरी एक स्थान पर कहता है, गौ से ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। वास्तव में हौरी की आवाज नहीं, यह आवाज तो हर एक भारतीय की है, भले ही वह मजबूरीवश गाय न पाल पाए।
0: आज हम चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अब हम गोदान नहीं पढ़ते, हैरी पॉटर पढ़ते हैं। अपने बगीचे के खुशबूदार फूलों को भूलकर प्लास्टिक के फूलों के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें कि गोदान का अनुवाद विश्व की असंख्य भाषाओं में हो चुका है और देश विदेश के कितने पुरस्कार इसे मिले हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। काश हमारी नई पीढ़ी इसे पढ़े और अपनी जड़ों को समझे।
2: तो चलिए एक बार फिर अपनी जड़ों में झांकते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। सत्तत्व सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचनाएं लिखी जा रही थी। हमारे पूर्वजों के घर में गाय थी और मन में ईश्वर। गाय उनका पेट भी पालती थी और उन्हें ईश्वर से भी जोड़ती थी, इसलिए उनके अधिकतर शब्द गाय से शुरू होते थे। लोग बेटी को दुहिता कहते थे क्योंकि गाय दुहने का काम बेटी ही करती थी।
0: झरोके को गवाक्ष कहते क्योंकि वो उन्हें गाय की आंख जैसा दिखता था। जब किसी चीज की छानबीन और विश्लेषण करना होता तो उसे गवेषणा कहते। गाय का दूध अमृत माना जाता था, इसलिए अमृत का एक पर्यायवाची बना गौरस। जब दो राजा आपस में लड़ते तो उसे गविष्ठी कहा जाता, जिसका मतलब होता गायों की खोज। वजह ये थी कि उस दौर में युद्ध गायों के कारण ही लड़े जाते थे।
2: श्रोताओं, गेहूं का आटा आज हम सब लोग खाते हैं, पर अनाज हमारे भोजन की थाली का इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। जी हाँ, हमारे पूर्वज इस अनाज को

0: धूम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है गाय का धुआं।
1: इसी तरह जिस गोबर की खाद को आज भी हमारे वैज्ञानिक जमीन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं, वो भी ऋग्वेदिक काल से ही उपयोग में लाई जा रही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद गाय की महिमा से भरा पड़ा है। यहाँ तक इस ग्रंथ में एक पूरा का पूरा सूक्त ही गाय को समर्पित है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौवे सब ऐश्वर्य का मूल है, मेरे लिए गौवे ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौ, तुम निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर। तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है।
0: दुनिया के सबसे पुराने इस ग्रंथ में तो गाय को देवी कहा गया है और इसकी तुलना अदिति से की गई है, जो देवताओं की माता थी। कई ग्रंथों में इसे लक्ष्मी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो सभी प्रकार के धन धान्य को देने वाली है।
1: सचमुच गाय धन और धान्य दोनों ही देती हैं। खेती के लिए अपना बछड़ा और अपने गोबर की खाद देकर वे धान्य देती थी और धन तो वे स्वयं थी, बिल्कुल अलाइव करेंसी।
0: जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। आपको तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गाय हुआ करती थी, और गाय चराने पर भी उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। गाय जब संध्या बेला को जंगल से चरकर वापस आती थी तो उसके खुरों से धूल उड़ती थी जो आसमान में छा जाती थी, और इसलिए संध्या बेला को गोधूली बेला कहा जाता था।
1: श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को जितनी इज्जत बख्शी उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। अवतार होकर भी वे गायों को चराने के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया, दुनिया उसे श्री कृष्ण पर्वत के नाम से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जानती है।
0: उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताया, गोप गोपियों के साथ पले बढ़े, खुद भी वे गोपाल कहलाए। यहाँ तक कि मानव तन त्यागने के पश्चात स्वर्ग में भी गाय के नाम से ही उन्होंने अपना लोक बसाया और उसे नाम दिया गोलोक।
1: भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की बात करें तो भगवान शिव का वाहन नंदी कौन है? गाय का बेटा ही तो है। आप किसी भी शिव पार्वती जी के मंदिर में चले जाइए, द्वार पर नंदी जी को प्रणाम करके ही आपको अंदर जाना पड़ेगा।
0: तो श्रोताओं, आप समझ ही सकते हैं कि गाय की जड़ें हमारे जीवन में कितनी गहरी हैं। गोबर व गोमूत्र के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
1: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान इससे भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
0: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गाय दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
1: परलोक में भी गाय ही इंसान को ताड़ती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। दादा चले, और भी कई आवाज आई। हाँ हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बछिया है, ना पैसे हैं। ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
1: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में। जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय और उस दुनिया में भी गाय। नतीजा ये हुआ कि गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात इस प्राणी की हत्या करने की मनाही है।
0: आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गौ संस्कृति की जबरदस्त वकालत की है। वे कहते हैं, मैं गाय की पूजा करता हूँ, इसकी पूजा के लिए अगर पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है, यह करोड़ों भारतीयों की माँ है।
1: लेकिन जैसे जैसे कृषि का यंत्रीकरण हुआ, गाय का महत्व कम होता गया। लोग बैलों की जगह ट्रैक्टर और मशीनें इस्तेमाल करने लगे, दूध के लिए भैंसे पाली जाने लगी और किसान गोबर की खाद को भूलकर केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ झुकने लगे।
0: शुरू शुरू में यह ग्रीन रेवोल्यूशन सबको बड़ी अच्छी लगी। पैदावार बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, अनाज के भंडार भरते चले गए। लेकिन आज इसने हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। कीड़े मकोड़े व बीमारियों से फसलों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे की तरफ उतरता जा रहा है।
1: वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अगर यही दौर चलता रहा तो एक दिन हम खेती से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है, एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें खास बात यह है कि जानवर और खेती का रिश्ता फिर से बहाल करना होगा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है संस्कृति संवाद। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गाय की महिमा की, और अब हम बात करेंगे भारत में गौ हत्या पर कानून के बारे में। श्रोताओं, भारत में गौ हत्या हमेशा से ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर 1857 की क्रांति को आप याद करें तो सिपाहियों की बगावत का एक प्रमुख कारण यही था कि राइफल की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
1: आज के वक्त की बात करें तो हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
0: इतिहास की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल शासक जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी गोवध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। इसी तरह मैसूर के सुल्तान हैदर अली व टीपू ने भी अपने राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि जो लोग गाय मारते थे या गाय का मांस खाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे।
1: श्रोताओं, ये तो भारत की बात हो रही है, भारत के बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। आप ये सोचने की भूल न करें कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो गाय की रक्षा को लेकर सजग है, बल्कि नेपाल तो हमसे भी एक कदम आगे है। इस देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है।
0: पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर गाय का मांस खाना पाप माना जाता है। खास करके यहाँ के बौद्ध लोग तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, 1961 में इस देश में कानून बनाकर गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
1: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
0: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
1: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
0: श्रोताओं, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
1: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
0: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसी हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
1: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है, क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
0: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है, और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
1: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
0: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है, बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
1: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
0: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
1: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है, उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, गोबर से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
0: एक वाक्य सुनाते हैं आप। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
1: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
0: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहां तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चिया के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही है। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काउ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
1: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
0: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गोमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
1: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
0: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
1: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
0: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका कराकर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
1: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती है। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
0: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गाय औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है वैसी विदेशों में नहीं उठती।
1: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है जबकि गाय का दूध दिमाग।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
0: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और कार्यक्रम है भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कबीर गायन। कलाकार हैं प्रेम सिंह देपाल पुरिया और उनके साथी।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

जी पंडित और मसाल जी दोनों को सूझत ना।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलाम अब्बास खान, क्लासिकल और गजल गायक, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। मेरे मुल्क भारत माता को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। हमारा मुल्क सलामत रहे और इसकी सलामती के लिए जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं वो हमारे फौजी हैं। मैं अपने तमाम फौजी भाइयों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे मुल्क के फौजी सलामत रहें और इस मुल्क में चैन और अमन कायम रहे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

बदनामी जन्म भर की, हाँ या बदनामी जन्म भर की, मत मालो गठड़िया तो जस की, मत मालो गठड़िया।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे कबीर गायन का। कलाकार थे प्रेम सिंह देपालपुरिया और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: शाम की सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रत्नेश सोनी। आपने ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 156 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विष्णु और छंद है जगति।
4: भवा मित्रो न शेव्यो घृतासु तिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथाः अधाते विष्णो विदुषा चिदर्घ्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता। हे विष्णुदेव, आप जल के उत्पादन करता, अति देदीप्यमान, सर्वत्र गतिशील, अति व्यापक तथा मित्र के सदृश ही हितकारी सुखों के प्रदाता हैं। हे विष्णुदेव, इसके पश्चात मनुष्यों द्वारा हविष्यान्न समर्पित करते हुए संपन्न किया गया यज्ञ स्तुति योग्य है। ज्ञान संपन्न मनुष्यों द्वारा आपके प्रति कहे गए स्तोत्र सराहनीय हैं। यह पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर युज्यम चिदभ्यसत। जो अनंत काल से ज्ञान रूप एवं सदा नवीन दिखते हैं तथा जो सद्बुद्धि के प्रेरक हैं, उन विष्णुदेव के लिए हविष्यान्न अर्पित करने वाले मनुष्य कीर्तिमान होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। तमुस्तोतारः पूर्व्यम् यथाविद ऋतस्य गर्भम् जनुषा पिपर्तन आस्य जानन्तो नाम चिद् विक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम् भजामहे। हे स्तोताओं, यज्ञ के नाभिरूप चिर पुरातन उन विष्णुदेव से संबंधित जिस भी ज्ञान से आप परिचित हों, उसी के अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इनके तेजस्वी पराक्रम से संबंधित जानकारी के अनुरूप आप इनका वर्णन करें। हे सर्वत्र व्यापक देव, हम आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं के अनुगामी बने। तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुम सचन्त मारुतस्य वेधसः दाधार दक्ष मुत्त मम हविर्विदम व्रजम च विष्णुः सखिवाम अपोर णुते। सर्वज्ञ विष्णुदेव के साथ तेजस्विता संपन्न वरुण और अश्विनी कुमार देवता भी कर्मरत रहते हैं। मित्रों से युक्त सूर्य रूप विष्णुदेव अपनी श्रेष्ठ सामर्थ्य से दिवस को प्रकट करते हैं, आवरण को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आयो विवाय सचथाय दैव्य इंद्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः वेधा अजिन्वत त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमान मा भजत। दिव्यलोक में निवास करने वाले श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वालों में सर्वोत्तम विष्णुदेव, श्रेष्ठ कर्मशील इंद्रदेव का सहयोग करते हैं। तीनों लोकों में व्याप्त ये विष्णुदेव श्रेष्ठ पुरुषों को तुष्ट करते हैं, यज्ञकर्ता के पास स्वतः पहुंच जाते हैं।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 156 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

19वीं सदी में जब वंदे मातरम गीत की रचना हुई तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये गीत नारा बनकर पूरे हिंदुस्तान में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनका आधा बांग्ला और आधा संस्कृत में लिखा ये गीत उनकी पहचान बन जाएगा। बंकिम चंद्र का लिखा गीत वंदे मातरम स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। बंकिम चंद्र ने इस गीत में स्वदेश प्रेम को साकार रूप देने का माध्यम माँ को बनाया। वे एक बंगाली हिंदू थे जो माँ या स्त्री को दुर्गा रूप में पूजते थे। शायद यही बात उनके इस गीत में परिलक्षित हुई। एक बार बंकिम ने कहा था कि शायद मेरे मरने के बाद लोगों को इस गीत का आशय समझ में आए, और हुआ भी वही। उनके मरने के पश्चात ये गीत आजादी के आंदोलन का एक ओजस्वी स्वर बन गया। बंग भंग आंदोलन में ये गीत क्रांति का शोला बनकर भड़क उठा।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल स्थित 24 परगना के कांठाल पाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय था, जो कि मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे। उनके पिता अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी साधु संन्यासियों के प्रति काफी श्रद्धावान थे। शायद यही गुण बंकिम ने अपने पिता से ग्रहण किया। सरकारी नौकरी में होने के कारण उनके पिता को सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत के भी संस्कार दिए। शायद यहीं से बंकिम के मानस पर भारतीय संस्कृति की छाप अंकित हो गई। बंकिम चंद्र के परिवार में उनकी माँ दुर्गा देवी, बड़े भाई श्यामाचरण, संजीव चंद्र और बहन नंदरानी के अलावा उनके सबसे छोटे भाई पूरन चंद थे। बंकिम चंद्र का विवाह राजलक्ष्मी से हुआ और उनकी 3 पुत्रियां हुई। बचपन से ही बंकिम का झुकाव साहित्य की ओर था और उन्होंने लगभग 15 साल की आयु में लेखन आरंभ कर दिया। विद्यार्थी काल में ही उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिनका नाम था ललिता और मानसी। बंकिम के भीतर कवि की अपेक्षा उपन्यासकार अधिक बलवान था। उनका पहला उपन्यास राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके उपरांत उनका सारा साहित्य बांग्ला भाषा में लिखा गया। बंकिम चंद्र ने सन 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये गौरव प्राप्त करने वाले वे पहले स्नातक बने। उनकी पढ़ाई कलकत्ता के प्रख्यात हिंदू कॉलेज से हुई, जिसे सन 1885 से प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाने लगा। यहाँ पर उनके सहपाठी थे केशव चंद्र सेन और सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसी विभूति से। स्नातक होने के बाद उनका चयन डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ और फिर डिप्टी कलेक्टर बनकर वे बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के रूप में लोकप्रिय हो गए। नौकरी के साथ साथ उनकी साहित्य सेवा अनवरत चलती रही। उनके साहित्य का कुछ श्रेय सरकारी नौकरी को भी जाता है। सरकारी नौकरी में होने के कारण एक ओर उनका संपर्क समाज के विभिन्न वर्गों से हुआ, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अंग्रेज अधिकारियों के आंतरिक कारनामों की प्रत्यक्ष जानकारी मिली। वे निष्ठावान और कठोर प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने न तो सुंदरवन के चोर डाकुओं पर शिकंजा कसने में कोई हिचक की और न ही गलती करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को बख्शा। इस कारण बंकिम चंद्र का तबादला जल्दी जल्दी हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। यह उनकी चतुराई का ही परिणाम था कि अंग्रेजों की नौकरी करते हुए भी उन्होंने अंग्रेज विरोधी साहित्य रचा।

26 वर्ष की आयु में बंकिम चंद्र ने दुर्गेश नंदिनी लिखी। ये उनका पहला बांग्ला उपन्यास था जो 1865 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास बेहद लोकप्रिय हुआ और बंकिम चंद्र के जीवन काल में इसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए। बंकिम चंद्र का दूसरा उपन्यास था कपाल कुंडला जो 1866 में प्रकाशित हुआ। सन 1869 में स्वदेश प्रेम पर आधारित उपन्यास मृणालिनी का प्रकाशन हुआ। ये उपन्यास शिक्षित वर्ग में काफी लोकप्रिय हुआ। इस उपन्यास का प्रमुख आकर्षण इसमें निहित काव्य गुण था। आज भी इस उपन्यास के गीत ग्रामांचलों में सुने जा सकते हैं। बंकिम चंद्र का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ। बांग्ला समीक्षकों ने पहले तो इस उपन्यास की कड़ी आलोचना की, लेकिन धीरे धीरे इस उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ने लगी। आनंद मठ उपन्यास का आधार था सन 1776 में हुआ सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में जो कुछ भी लिखा गया वो सब प्रामाणिक था। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि बंकिम चंद्र के जीवन काल में इसके 5 संस्करण प्रकाशित हो गए। 1763 के बाद 1780 तक के काल में ढाका, उत्तरी बंगाल, नेपाल का तराई प्रदेश, दिलाजपुर, रंगपुर और पूर्णिया क्षेत्रों में हुए सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित कागजातों और दस्तावेजों के आधार पर आनंद मठ उपन्यास का जन्म हुआ। 1882 तक बंकिम चंद्र के अनेक उपन्यास और लेख प्रकाशित हो चुके थे। धीरे धीरे उनका रुझान धार्मिक विचारों की ओर हुआ। नौकरी के कारण लेखन में आ रही कठिनाइयों ने उन्हें नौकरी से त्याग पत्र देने पर मजबूर कर दिया। सन 1891 में वे रिटायर हुए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। इस कार्यक्रम की 14वीं कड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। हर बार की तरह हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पूजा सक्सेना यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका एक बार फिर से।
4: नमस्कार।
3: श्रोताओं, हम गोंड राज्य शासन के बारे में बात कर रहे हैं 13वीं कड़ी में, यानी कि अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि छिंदवाड़ा, आज के छिंदवाड़ा में जो देवगढ़ का गोंड राज्य तब हुआ करता था, जाटवा अजानबाहू की हमने कथा सुनी जिन्होंने देवगढ़ का गोंड राज्य स्थापित किया था। उन्होंने किले का दरवाजा अपने हाथों में उठा लिया था और गवली बंधुओं का वध कर वो देवगढ़ राज्य के राजा बने थे। पिछले एपिसोड में ही पूजा जी ने हमें बताया कि उन्होंने किले के निर्माण के लिए स्थान का चुनाव किस प्रकार किया। ऊंची पहाड़ी चुनी और पहाड़ी के ऊपर जल की उपलब्धता भी थी। जानबूझकर देवगढ़ किले तक पहुंचने के लिए सर्पिलाकार मार्ग बनाया और बहुत सारे दरवाजे बनाए ताकि दुश्मन आसानी से किले तक पहुंच नहीं सके। हमने बात की हाथी दरवाजे की और इसके साथ ही हाथियों के लिए मुगलों की चाहत की। मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच मध्य हुए 5 पत्र व्यवहारों की हमने बात की, जिसमें हमने विचित्र हाथी जटाशंकर, जिसके बारे में जनश्रुतियां थी कि वो बहुत विचित्र हाथी है, विशाल हाथी है, बहुत शक्तिशाली है और वो देवगढ़ गोंड राज्य के पास है, उसे हासिल करना चाहते थे शाहजहां और जिसके लिए औरंगजेब को उन्होंने नियुक्त किया हुआ था। इसके साथ ही हमने बात की देवगढ़ किले के अंदर स्थित कचहरी की, जहां पर राजा विराजमान होते थे, नक्कार खाने की, जहां राजा के आगमन पर नगाड़े बजते थे, बादल महल और उसमें स्थित टेराकोटा पाइपलाइंस की और उससे चलने वाले फव्वारों के पीछे के विज्ञान की, और साथ ही कि इस किले के परिसर को किस तरह सुरक्षित किया जाता था। लेकिन अब हम इसी बारे में, सुरक्षा के बारे में विस्तार से आज जानेंगे डॉक्टर पूजा सक्सेना से। तो सबसे पहले पूजा जी से यही पूछते हैं कि किले की जो सुरक्षा थी उसके क्या इंतजाम थे।
4: जैसा हमने पिछली बार भी बात की थी कि किले को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची पहाड़ी का चयन किया गया और ऐसी पहाड़ी जिस पर पानी की उपलब्धता हो, रसद हो, आसपास जंगल था, खेत रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन किले की सुरक्षा का खतरा तो हमेशा ही मंडराता रहता है, इसलिए किले को बहुत सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाई जाती हैं। तो देवगढ़ के किले में भी हमने देखा सर्पिलाकार मार्ग है और उस पर जाते हुए कई सारे दरवाजों से होकर हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन ठीक है, दरवाजे तक तो आप अंदर आ गए, लेकिन इन दरवाजों से जुड़ी हुई पहाड़ी पर चारों ओर ऊंची ऊंची किले की दीवारें हैं, जिसे हम नॉर्मली फोर्टिफिकेशन वॉल बोलते हैं, है ना। और ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, किले की दीवार आपने देखी ही होंगी कैसी होती हैं, चौड़ी और ऊंची दीवारें और उसके ऊपर कंगूरे बने होते हैं ना,
3: बिल्कुल,
4: जहां से चौकसी के दौरान देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक और बात जो मैंने देवगढ़ के किले की दीवार में देखी वो ये थी कि दीवारों में स्लिट्स बने हुए हैं, यानी आयताकार छेद, लंबे लंबे छेद,
3: जिससे कि कुछ हथियार निकाले जा सके, वो तोप या बंदूक भी निकाल के इस्तेमाल की जा सके।
4: बिल्कुल बिल्कुल, इन स्लिट्स का इस्तेमाल जैसा आपने कहा हथियार चलाने के लिए होता है और दूसरा निगरानी रखने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि एक एक स्लिट्स में के तीन तीन पार्ट्स हैं, तीन, कहीं पांच और कहीं कहीं तो सात भी देखे मैंने। अगर आप किले के अंदर से इन स्लिट्स से बाहर की ओर देख रहे हैं, किले के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी नजर जम जाएगी। यानी कि अगर कोई शत्रु इस जगह से आ सकता है, स्लिट से देखने पर बिल्कुल वही जगह आपको दिखाई देती
3: ये
4: है।
3: तो बिल्कुल मतलब किसी कैमरे के व्यू फाइंडर की तरह हो।
4: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, ऐसा ही है। एकदम इतना सटीक निर्माण कैसे किया होगा ये तो बहुत, मुझे तो लगता है कि ये बड़ी ज्ञान परंपरा की बात है जो परंपरागत रूप से सदियों से चलती आ रही होगी, लेकिन देवगढ़ किले में उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो हम देखते हैं कि किले की सिर्फ एक ही दीवार नहीं है, ये जो पहाड़ी है ये तीन ओर से बिल्कुल खड़ी हुई है, यानी इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ओर से पहाड़ी थोड़ी ढलवा है, तो जिस ओर से पहाड़ी ढलवा है वहां दोहरी दीवार बनाई गई है। अच्छा। यानी कि कई सुरक्षा चक्र होंगे। अगर पहाड़ी पर दुश्मन सेना चढ़ भी गई है तो पहले एक दीवार को पार करना होगा, यदि उसमें वो सफल हो जाती है तो फिर दूसरी दीवार की चुनौती उसको मिलेगी। तो इस तरीके से दोहरी दीवार उस तरफ है जहां ऊंची पहाड़ी है और इन दीवारों में बहुत सारे बुर्ज भी बने हैं। पहले हमने बात की थी एक बुर्ज की जिस पर मैंने बताया था कि चंडी देवी का मंदिर भी बना हुआ है
3: जी।
4: क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमने जाटवा की कहानी भी सुनी थी जिसमें उन्होंने भैंस का वध करके शक्ति प्राप्त की थी। ये चंडी देवी का मंदिर एक बुर्ज पर है, पर वास्तव में ये बुर्ज जो है सुरक्षा चौकियों की तरह होते हैं जो किले के ऊपर से खड़े होकर सैनिक नीचे की तरफ देखते हैं, चारों ओर निगरानी रखते हैं। तो एक तो ये वाली बुर्ज है और इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए चौड़ी रैंप बनी हुई है। आपको मालूम होगा कि ये रैंप इसलिए बनाई जाती है कि जो तोप होती है उसको धका धका के ऊपर तक बुर्ज के ऊपर सेटल कर देते हैं, तो फिर वो बुर्ज जो है कई दिशाओं में वार करने लायक हो जाती है ऊंचाई से। तो इसी तरीके से और भी कई सारी बुर्ज है, लेकिन जहाँ ये चंडी देवी वाला बुर्ज है उसके बिल्कुल अपोजिट एक और बुर्ज है।
3: अच्छा।
4: मुझे याद है कि मैं 2003 में काम कर रही थी देवगढ़ किले में, तो जहां हम लोगों को बड़ी समस्या होती थी पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ के जाना, हाँफ जाते थे और बड़ा दुर्गम लगता था, यहाँ तक कि गाड़ी भी जो है हाँफने लगती है, बड़ी धीमे धीमे धीमे चढ़ती थी। लेकिन वहां के जो गोंड थे वो इतनी तेजी से पैदल चढ़ते हुए पहाड़ी पर आ जाते थे और कई बार उतर जाते, कई बार चढ़ जाते, उनके लिए तो मतलब जैसे वो एक समतल रास्ता हो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। एक और चीज मैंने वहां पर देखी कि मैं जब काम कर रही थी तो कुछ गोंड लड़के भी हमारे साथ में काम कर रहे थे, तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि किसी एक बुर्ज पर अगर आप खड़े होकर एक खास तरीके की आवाज निकालें
3: जी,
4: जैसा कि उन्होंने करके दिखाया कि वो एक बुर्ज पर खड़े हो गए और उसने जैसे पक्षी की आवाज होती है इस तरीके की साउंड निकाली अपने मुंह से, तो वो लगभग 5 किलोमीटर दूर पर सुनाई दी और वहां कोई गोंड खड़ा होगा तो उसने भी आवाज निकाली और हमें सुनाई दी। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर
3: आवाज पहुंच कैसे रही है बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के, माइक्रोफोन के लिए। ये तो वाकई ध्वनि विज्ञान के भी मतलब बहुत बड़े जानकार थे।
4: हाँ, ध्वनि विज्ञान के जानकार हैं, उसका उपयोग करना जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में आप किले से जो सामने वाली पहाड़ियां हैं वहां तक यदि संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो उस तरीके विविध प्रकार की उन्होंने उस तरह की कई आवाजें सुनिश्चित कर रखी होंगी जिनका उपयोग करके आपस में बात की जा सकती होगी, संकेत दिए जा सकते होंगे कि कि सुरक्षित है या सुरक्षित है, कि कोई भी इस तरीके के मैसेज उसके माध्यम से दिए जाते
3: मात्र होंगे। किले के अंदर और ऊपर ही ऐसे लोग नहीं थे जो नीचे नजर रख रहे थे, समतल भूमि पर भी 5 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं कि ऐसे लोग तैनात रहते थे जो अगर किसी भी गतिविधि को ऐसे देखें और उन्हें किले तक पहुंचने में तो क्योंकि वक्त लगेगा तो ऐसी कुछ आवाजें निकालते जो किले तक पहुंच जाएं और किले से वो आवाजों का प्रत्युत्तर दिया जाता था।
4: बहुत ही ये ध्यान देने योग्य बात है। अब धीरे धीरे लोग इसको भूलते जा रहे हैं कि ये होता कैसे था, आवाजें किस तरीके की निकाली जाती थी। इसके साथ ही मैंने देखा कि उनको औषधि का भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। हम लोग देव उठनी ग्यारस करते हैं ना,
3: जी जी,
4: जो देव उठनी ग्यारस है उससे पहले आपको बहुत सारी परिक्रमाएं करनी है और ज्ञान को दोबारा अर्जित करना, ये वो समय होता है
3: जी।
4: ऐसा हम लोग हमारी परंपरा में है। तो मैंने यहाँ भी देखा कि जो गोंड हैं वो भी इन दिनों में जगह जगह घूमते हैं।
3: अच्छा।
4: मतलब किसी पहाड़ पर चले गए, किसी नदी तक चले गए और करते क्या है, ये लोग औषधियां ढूंढते हैं, औषधियों के बड़े अच्छे जानकार हैं और उन औषधियों को बटोरते हैं और फिर साल भर उनका उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से।
3: अच्छा।
4: तो वो भी एक ज्ञान परंपरा इनके साथ में जुड़ी हुई है।
3: तो श्रोताओं, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें पूजा जी के माध्यम से मिल रही हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 14वीं कड़ी आप सुन रहे हैं। जी पूजा जी, हम बहुत उत्सुक हैं आगे की कहानी जानने के लिए, आगे के बारे में विस्तार से बताइए।
4: अच्छा, देवगढ़ की दीवार के बारे में मैं एक बात और बता दूं। यहाँ एक और चीज मैंने खास देखी
3: जी,
4: कि दीवार क्योंकि बहुत चौड़ी होती है तो उसमें कई कक्ष निकल आते हैं जो कि सैनिकों के रहने के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि दीवार में कुछ कक्ष ऐसे भी हैं छोटे छोटे जो कि टॉयलेट की तरह यूज किए जाते थे।
3: अच्छा, मतलब उस जमाने में उन्होंने टॉयलेट्स का निर्माण किया था वहाँ।
4: जी हाँ, 400-500 साल पहले टॉयलेट्स बने हुए हैं जिसका जो मैला है वो किले के बाहर जिस तरफ उपयोग नहीं होता, जंगल है उस तरफ निकल जाया करता होगा।
3: लेकिन पूजा जी, पानी का भी बहुत अच्छा उपयोग किया, पाइप्स के बारे में आपने बताया कि इस किले में किस तरह से पाइप्स और फव्वारे वगैरह चलते थे। लेकिन एक तो उस समय हम बहुत बार सुनते हैं कि न सिर्फ उस समय बल्कि आज़ादी के समय भी, और गांधी जी ने भी इस बात का, इस परंपरा का बहुत विरोध किया था, क्योंकि हम तो ये तक सुनते आए हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में मैला ढोने की परंपरा रही है। तो क्या ये उस वक्त नहीं थी इस किले में?
4: जी हाँ, मैला ढोने की परंपरा भारतीय नहीं है।
3: अच्छा।
4: हाँ जी हाँ, आपने सुना होगा बल्कि अब तक बहुत कुछ समय पहले तक भी हम देखते थे कि खुले में शौच जाने की परंपरा है
3: जी।
4: और भारत में टॉयलेट निर्माण की परंपरा तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दिखाई देती है
3: जी।
4: ये मैला ढोने की जो परंपरा आई ये बहुत बाद में थी, जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण होने लगे तो जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते थे किसी भी कीमत पर, उनको सजा के तौर पर ये दिया जाता था कि उन्हें अपने सर पे मैला ढोना पड़ेगा।
3: तो उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए ये बनाया गया।
4: बिल्कुल, मतलब ये जानकर हैरानी होती है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर धर्मांतरण नहीं किया और वो मैला तक ढोने के लिए तैयार हो गए।
3: पूजा जी, आपने किले के अंदर तो जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा दीवार, दोहरी सुरक्षा दीवार, इसके बारे में बताया, लेकिन किले के बाहर किस तरह की सुरक्षा थी, बिल्कुल इर्द गिर्द, उसके बारे में कुछ बताइए।
4: जो गोंड किले होते हैं
3: जी,
4: उनका सुरक्षा चक्र तो जैसे देखने लायक होता होगा और अभी भी उसके अवशेष हैं
3: जी।
4: तो हम जान सकते हैं शोध के माध्यम से कि ये कैसे होता होगा। तो हम अगर देवगढ़ के किले को ही उदाहरण के तौर पर देखें, किला तो अपने आप में सुरक्षित है ही, लेकिन चारों दिशाओं में कुछ दूरी पर और भी चौकियां बनाई गई थी। जैसे यहाँ देवगढ़ का किला है
3: जी,
4: तो उसके बाहर पूर्वोत्तर दिशा में हम देखते हैं कि कुसुम घाट नाम की एक चौकी है।
3: अच्छा।
4: उसके अवशेष आज भी हैं।
3: अच्छा।
4: और उत्तर में एक कालकोट चौकी है, पश्चिम दिशा में अगर सुरक्षा चाहिए तो सूर्य कुंड चौकी है
3: जी।
4: और दक्षिण की तरफ से जौवनी चौकी सुरक्षा दिया करती होगी। तो ये इसको घेरते हुए चारों दिशाओं में जहां आवश्यकता थी वहां पर चार चौकियां स्थापित कर दी। इन चौकियों को आप गढ़ी भी बोल सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: बहुत जगह आपको गढ़ी सुनाई देता होगा,
3: बुंदेलखंड में खासतौर पर गढ़ी शब्द का इस्तेमाल होता है
4: जी। हाँ, छोटे किले, छोटे गढ़,
3: छोटे किले
4: जी। तो ये जो गढ़ियां हैं या चौकियां हैं, अब देवगढ़ में इनके बाद इनको घेरते हुए दो नदियां भी हैं।
3: अच्छा।
4: और नदियां इनको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करेंगी। तो जैसे हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा है तो वहां पर से कान्हा नदी बहती है, तो इसने दो दिशाओं को सुरक्षित कर लिया। और उत्तर और पूर्व की दिशा देखेंगे तो वहां पर पेंच नदी बहती है।
3: अच्छा।
4: तो ये चारों दिशाओं को नदियों ने सुरक्षित कर लिया। अब इसके बाद बहुत घना जंगल है
3: जी।
4: तो जंगल अपने आप में बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें जंगली जानवर होते हैं, उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होता है, सेनाओं का मूवमेंट मुश्किल होता है, तो ये अपने आप में सुरक्षा देता है। अब इतना ही नहीं है, अगर देवगढ़ के सुरक्षा चक्र को और दूर तक देखा जाए, 100, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर
3: जी।
4: तो भी आपको गोंड किलों की एक ऐसी श्रृंखला दिखेगी जो कि वृत्त में है, मतलब चारों दिशाओं से सुरक्षित कर देगी। जी हाँ, गोलाकार है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर में गोंडों का किला है चौरागढ़, आजकल नरसिंहपुर जिले में
3: जी।
4: इसी तरीके से पूर्वोत्तर में देखें तो आज का जो सिवनी जिला है वहां पर छपरा का किला है।
3: अच्छा।
4: और पूर्व में देखें तो लांजी का किला है, ये बालाघाट जिला है आजकल
3: जी। जी।
4: और इसी तरीके से दक्षिण पूर्व में अगर हम देखें तो सानगढ़ी का किला है
3: जी।
4: इसी और प्रतापगढ़ का किला भी है जो गोंदिया जिले में।
3: ये तो महाराष्ट्र पहुंच गए हम।
4: जी हाँ, महाराष्ट्र तक जी, जी बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो देवगढ़ से दक्षिण दिशा में अंबागढ़ का किला है
3: जी।
4: और इसी ओर पवनी का किला भी है जो भंडारा जिले में है महाराष्ट्र के
3: जी।
4: तो इस तरीके से पूरी एक श्रृंखला बनते हुए अब हम पहुंच जाते हैं नागपुर।
3: अच्छा।
4: और नागपुर में नागपुर का खुद किला है
3: जी।
4: जो कि एक हिस्सा उसका गोंड है और दूसरा उमरेड़ की गढ़ी भी है नागपुर में।
3: अच्छा।
4: और अगर हम यहाँ से पश्चिम जाएं देवगढ़ से, खेरला का किला है आजकल बैतूल जिला जिसे हम कहते हैं, और पश्चिमोत्तर में फतेहपुर का किला है होशंगाबाद जिले में।
3: अच्छा।
4: हाँ, तो इस तरह ये पूरे किलों ने देवगढ़ के किले को घेर रखा है और ये सभी गोंड किले हैं
3: जी।
4: तो ये एक विस्तृत सुरक्षा चक्र की तरह हमें धरती पर दिखाई देता है।
3: तो ना सिर्फ देवगढ़ का किला, मान लीजिए अगर होशंगाबाद का किले पर आफत आती है तो दूसरी जगह से भी कोई सहायता मिल सकती
4: जी
3: है।
4: हाँ।
3: तो सभी किले एक दूसरे को एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए सुरक्षा चक्र ये बना हुआ है।

0: कक्ष है और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो राजा जाटवा शिव के बड़े भक्त रहे होंगे ऐसा लगता है उसको देखकर। तो ऐसी कई सारी समाधियां हमको कई सारे राजाओं की या राज परिवार की किले की पहाड़ी की ढलान पर दिखाई देती हैं। और जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो आज भी वहां पर पुराने गांव हैं जिसमें आज भी लोग रहते हैं और आसपास सागौन का बड़ा घना जंगल है। पर किले से जब हम नीचे उतरे तो कई सारी बावड़ियां हैं जो उस समय पानी के लिए उपयोग आती होंगी। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए भी बावड़ियों का उपयोग होता था क्योंकि वहाँ ठंडक रहती है। अच्छा। तो गर्मियों में वहाँ पर बैठ गए।
1: हाँ,
0: तो ऐसी कई सारी बावड़ियां वहाँ पर हैं, कई सारे तालाब भी हैं जिनमें वर्षा का जल संग्रहित होता होगा, यानी कि एक एक बूंद को संग्रहित करके साल भर के लिए रखा जाता था। आज भी ये तालाब और बावड़ियां हैं। इसमें से एक तो चोर बावड़ी है।
1: चोर बावड़ी।
0: जी हाँ, चोर बावड़ी। बड़ी सारी किंवदंतियां हैं उसमें, किसी चोर की कहानी है, किसी की कहानी है। लेकिन इस तरीके की जो चोर बावड़ियां होती हैं, असल में ये जब राज परिवार यात्राएं करता है या फिर जब युद्ध होते हैं तो उस समय ये छिपने के भी काम आती हैं। तो इनका प्रवेश द्वार कहाँ से है वो पता नहीं चलता, लेकिन जो वहां का रहने वाला उसे मालूम है सिर्फ कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है। तो अंदर ही अंदर निकलते हुए कई सारे कमरे और टनल्स वगैरह होती हैं।
1: तो कई सारी ऐसी जनश्रुतियां होती हैं कि महल के नीचे से सुरंग थी जो कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, कुछ इसी तरह की बात।
0: जी जी बिल्कुल। तो ये चोर बावड़ी बड़ी देखने लायक है। इसके अलावा मेरा एक बड़ा फेवरेट मॉन्यूमेंट है देवगढ़ का, किले की तलहटी में एक स्मारक है, उसका नाम है किसबन महल।
1: अच्छा
0: जी हाँ। और जैसे हम श्रुतियों में कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं
1: जी।
0: तो यहाँ भी बड़ी ध्यान से इस स्मारक को देखें तो ये कृष्ण का शायद कोई मंदिर रहा होगा।
1: अच्छा
0: हाँ, और नाम देखिए किसबन महल, वो कृष्ण वन है।
1: अच्छा, वो हाँ, अपभ्रंश होते होते हाँ, वो कृष्ण वन से किसबन हो गया।
0: तो जब हम किले की तलहटी में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा मैनमेड तालाब है
1: जी,
0: तीनों और उसके सीढ़ियां बनी हुई हैं और किले की पहाड़ी से बहता हुआ वर्षा का जल इसमें इकट्ठा होता होगा। और एक और ये कृष्ण वन या किसबन बना हुआ है। तो ये मंदिर है, बिल्कुल स्पष्ट इसका स्थापत्य है, इसमें गर्भगृह है, उसके शिखर के अवशेष हैं और साथ में ही अंतराल और फिर एक मंडप है। तो वो पूरा की पूरा एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर रहा होगा और साथ ही जो दृश्य बनता होगा ना वो तो देखने लायक होता होगा, क्योंकि आज भी अगर आप जाएं ठंडों में या बारिश के दिनों में तो पूरा दूर दूर तक हरा भरा जंगल दिखाई देता है और उसके पास में ये तालाब पानी से भरा हुआ नीला नीला और उसके पास में ये किसबन महल, तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता होगा। और उस जंगल में जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, खूब चिड़ियों की कलरव की आवाजें आती हैं। मुझे बस एक कमी लगती है, मोर और होने चाहिए थे, बाकी तो वो
1: हो सकता है पूजा जी उस समय रहे हों।
0: जी हाँ, उस समय जरूर रहे
1: होंगे, क्योंकि इतना सुरम्य वातावरण जब आप वर्णन कर रही हैं तो वहाँ मोर फिर कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं नाचेंगे, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी, वहाँ पर जंगली जीव थे, वहाँ पर घना जंगल था, तो निश्चित रूप से वहाँ मोर भी हो सकते हैं। जबकि हम हाथियों की कल्पना तो नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हाथी हुआ करते थे।
0: जी हाँ।
1: वाह, क्या बात है। तो पूजा जी, अब तो ये जो देवगढ़ का किला है ये तो अब हम इस इतिहास की धरोहर मानते हैं, इतिहास की थाती मानते हैं, लेकिन गोंडों का शासन इस किले पर कब तक रहा?
0: सन 1735 में देवगढ़ का राजा था चांद सुल्तान।
1: अच्छा।
0: और 1735 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो दोनों बेटे थे वो अल्पायु थे, इसलिए वो राज्यकाज तो संभाल नहीं सकते थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर एक स्थानीय सेनापति था वली शाह, उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो जो चांद सुल्तान की रानी थी रतन कुंवर, उन्होंने देवगढ़ की रक्षा के लिए नागपुर के रघुजी भोसले को संपर्क किया। आप जानते ही ये काल तो मराठा काल के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण भारत में मराठाओं ने इस समय विजय पताका फहरा दी थी। तो रघुजी ने रतन कुंवर के आमंत्रण पर एक युद्ध किया और वली शाह को मार डाला। उसके बाद रघुजी भोसले रानी कुंवर रतन और उनके जो दोनों बेटे थे उनको नागपुर ले गए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अब यहाँ से संचालन करना रतन कुंवर के बस का नहीं था। लगातार शत्रु आग गड़ाए हुए थे देवगढ़ पर और जब रघुजी उनको नागपुर ले गए तो उन्होंने उनको वहाँ बहुत सम्मान के साथ रखा और उन्हें वो माँ कहा करते थे।
1: अच्छा
0: जी हाँ। तो 1738 में रानी रतन कुंवर और रघुजी के बीच में एक संधि भी हुई, और इस संधि के तहत रानी तो उन्हें अपना पुत्र मानती ही थी
1: जी।
0: तो उन्होंने उन्हें अपना पुत्र कहा, और जो देवगढ़ राज्य का तीसरा हिस्सा था, अपने दोनों पुत्रों को एक एक हिस्सा दिया और एक तीसरा हिस्सा उन्होंने रघुजी को दिया। तो रघुजी ने उनको उतने ही सम्मान के साथ हमेशा नागपुर में रखा। और इस बीच में ही जो रतन कुंवर के दोनों बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई, वो युद्ध में मारे गए, तो फिर देवगढ़ राज्य मराठा राज्य में विलय हो गया और उसका संचालन फिर नागपुर से होने लगा।
1: तो चलिए, देवगढ़ के किले की हमने बात की, गोंड राज्य की हम बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों से हमारा जो कार्यक्रम है 14वीं कड़ी में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर देवगढ़ के किले की कहानी समाप्त होती है। तो अगली बार पूजा जी आप हमें किस किले के बारे में बताने वाली हैं, किस राज्य के बारे में बताएंगी?
0: गोंड राज्य की श्रृंखला में अगली बार हम जानेंगे खेरला का गोंड राज्य।
1: तो चलिए, उत्सुकता तो बहुत हो रही है कि अभी से जान ली, क्योंकि बहुत सारी अनूठी जानकारियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन समय की कमी है तो आज हम पूजा जी को यहीं धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इस जानकारी के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब आपसे विदा लेता हूं, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि संपादन और ध्वनि अंकन किया अमित कुंदानी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। नमस्कार, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक, जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहां एक मुख्य अंतर था। जहां फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया, पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
5: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, काल की उंगलियों पर नाचता ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है। जो कल अंकुर था वो आज वृक्ष है, और जो आज पुष्पित है वो कल मुरझाने की ओर अग्रसर होगा। दिन रात के साथ जीवन बहता जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, देह ढल जाती है, लेकिन काल का प्रवाह कभी नहीं रुकता। वृद्धावस्था जीवन का वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी समस्त उपलब्धियों, आकांक्षाओं और अभिमानों का वास्तविक स्वरूप देखता है। जिन पैरों में कभी गति का गर्व था वहां अब थकान है, जिन आंखों में कभी स्वप्न थे उन आंखों की ज्योति क्षीण हो चली है। काल उस अग्नि की तरह है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। काल पर्वतों को धूल और राजाओं को कथा बना देता है। उसके सम्मुख यौवन का मद, संपत्ति का मोह और संसार का आकर्षण निस्सार हो जाता है। इस सत्य का बोध भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि उस शाश्वत तत्व की खोज के लिए है जो कालातीत है, जो अविनाशी है। आइए योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के साथ वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा करें। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: नमस्कार।
6: आज इस कार्यक्रम में हम वृद्धावस्था पर बात करने जा रहे हैं, काल के स्वरूप पर बात करने जा रहे हैं। वृद्धावस्था के बारे में वैसे हर मन में वही बात आती है जो मैंने कही, वृद्धावस्था को वृद्धावस्था में ही महसूस नहीं करता आदमी, बल्कि जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है तभी से उसका भय उसके भीतर आने लगता है और एक तरह की दृष्टि हर मनुष्य के भीतर आने लगती है। भगवान श्री राम इतनी छोटी उम्र में वृद्धावस्था के विषय में क्या विचार कर रहे हैं?
7: ये विचार कर रहे हैं कि वृद्धावस्था किस तरीके से लोग इसमें दुखी हैं। वृद्धावस्था की दुखरूपता का वर्णन करते हैं वो गुरुजी से, कहते हैं वशिष्ठ जी से कि ये अवस्था वैसे ही है जैसे लेश मात्र विष का भक्षण करने से शरीर कुरूप बन जाता है, ऐसे ही वृद्धावस्था व्यक्ति के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है, और जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं वह जरा अवस्था के सारे अंगों पर जब विचार करते हैं तो उनको बड़ा गहरा दुख होता है और शरीर के नष्ट होने का भय भी उन्हें दिखाई देता है, और उनके साथ जो आसपास के सुहृद जन हैं, जो व्यवहार करते हैं, क्योंकि हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो जो नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव, ये सब लोग उनको उन्मत्त समझकर उनका हंसी उड़ाते हैं। बुढ़ापे में ऐसा भी राम जी देखते हैं बूढ़ों के साथ। तो ऐसे में कहते हैं कि ये अवस्था देख करके हमें लगता है कि इस शरीर और इस संसार के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण करने योग्य नहीं है। तो ऐसे में जिसमें दुख ही दुख हो, ऐसे जीवन के साथ हम जी करके क्या करेंगे, ये प्रश्न राम जी के चित्त में तब उठ रहा है जब वो 14 वर्ष के हैं।
8: जी जी।
7: तो अब आप ये विचार करें कि यहाँ तो वृद्धावस्था में व्यक्ति भूत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, न कि वृद्धावस्था के सत्य को देख करके वो उससे कुछ सीखता है। कुल मिलाकर के जैसा कि आपने कहा कि ये वैराग्य जो प्रकरण है, ये किसी प्रकार के भय का पटाक्षेप नहीं है, बल्कि ये आपको सजग और मतलब सावधान होने की बात है कि इसके पहले की वृद्धावस्था आए, आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानने या जीवन का जो सच है उस सच का साक्षात्कार करने की तरफ अग्रसर हो सके, ये जिज्ञासा है।
8: योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम क्या देखते हैं कि इस अवस्था में किस तरह का भय होता है?
7: इस अवस्था में सबसे बड़ा भय ये होता है कि व्यक्ति का संसार छूट रहा होता है, तो आदमी सोचता है कि परलोक में जाके मैं करूंगा क्या, क्योंकि परलोक की भी तमाम सारे दृश्य बनाए गए हैं कि परलोक में ये चीजें मिलेंगी, और संसार में भी वो दृश्य है, लेकिन आज उसका भोग करने की स्थिति में व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में जिस अवस्था में वो है, उस अवस्था के अनुसार जब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे परलोक जाऊंगा तो उस परलोक में मैं क्या करूंगा, ये सबसे बड़ा भय वृद्ध के मन में उत्पन्न हो रहा होता है और वो इस भय से भयभीत होता रहता है।
8: वृद्धावस्था में किस तरह के विचार आते हैं? भगवान श्री राम ने अपने विवेक से इस बात को देखा है,
7: बिल्कुल,
8: वो क्या कहते हैं, कैसे विचार आते हैं?
7: बहुत सुंदर आपने कहा। वो कहते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने आप को बेचारा महसूस करता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बेचारा हूं, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार कर्म करूं, क्योंकि उस समय व्यक्ति को उपेक्षा पूर्ण दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने सपनों को जीने का प्रयास किया, लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, जब बुढ़ापा आता है तो उस समय जब उसकी उपेक्षा होती है, तो उस उपेक्षा में वो अपने जीवन पर सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी हस्ती क्या है, मैं क्यों हूँ, ऐसे तमाम तरह के निराशाजनक जो ख्याल हैं उसके मन में आते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वृद्धों के साथ बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके चित्त में ऐसे विचार तो स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको उपेक्षित किया जाए तो इन विचारों को और बल मिलेगा और वो हताशा, निराशा और तमाम तरह के मानसिक विकृतियों के शिकार हो सकते हैं।
8: अच्छा, इस अवस्था में शरीर की जो शक्ति है, उसकी जो स्थिति है, उसके विषय में भी भगवान श्री राम कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के सामने वो भी आप एक व्याख्या की तरह।
7: इसमें जो शक्ति का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि वो हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आंख से धुंधला दिखने लगता है, खाने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है लेकिन पचाने का सामर्थ्य नहीं होता, और पचाने का सामर्थ्य जो होता है तो खाने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस तरह से भोग की शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो प्रबल होती है लेकिन उपभोग करने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस तरीके से शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। और राम जी कह रहे हैं कि संध्या काल की संध्या के प्रकट होते ही जैसे अंधकार दौड़ पड़ता है, वैसे ही जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। ऐसा भी मतलब बुढ़ापे में व्यक्ति देखता है, जी, क्योंकि अपने साथ मतलब बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देख रहा है वो। तो इस तरह से राम जी कहते हैं कि भूतल पर जो किसी से पराजित नहीं हुआ उसको ये अवस्था पराजित कर देती है और व्यक्ति की सारी ऐषणाएं खत्म हो जाते हैं, उसका तिरस्कार हो जाता है, उसकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती है जरावस्था।
8: बिल्कुल, अनुभव में भी ये बात आती है ना कि अगर हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं उनको जब हम देखते हैं तो सामान्य सी बीमारियां जो पहले भी उन्हें कभी हुई होंगी,
7: बिल्कुल,
8: लेकिन उम्र बढ़ने के बाद जब वही रोग दोबारा होता है, कोई बीमारी होती है, छोटी बीमारी ही हो, तो उनके मन में जो पहला विचार आता है वो मृत्यु का आता है,
7: बिल्कुल,
8: कि
7: बिल्कुल।
8: शायद ये उसका बहाना हो ना, तो एक स्वाभाविक सोच वैसी बनती जाती है वृद्धों की।
7: निश्चित ही बनती जाती है। और जब इसको व्यक्ति देखता है तो अब राम जी तो जिस उम्र में देख रहे हैं वो आज ही सजग है कि हमारे इन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें नहीं मिला तो हमें तो संसार में करने योग्य कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर कर्म करके ही तो वृद्ध हुआ है, तो बुढ़ापा में सारे सामर्थ्य उसके क्षीण हो गए। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ दुख रूप ही है और किसी भी जन्म लेने वाले व्यक्ति की अंतिम जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था ही होती है, जिसको वो पार करते हुए मृत्यु के करीब पहुंचता है। तो वो कहते हैं कि जब इतना दुख रूप ये संसार है तो इस संसार में करने योग्य क्या है, ये सवाल उनके मन में उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो कर्म से ही अपने को अलग कर रहे हैं। तो गुरुजन तो अभी उनकी इस वैराग्य की दशा की सारी बातें सुन रहे हैं, जिसको वो बेबाकी से कहकर पहले अपने चित्त को शांत कर लें और उसके बाद फिर उनकी क्या जिज्ञासा होती है, कैसे उनकी कह सकते हैं वैराग्य की अवस्था से उनको हटा करके फिर कर्म में कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए आगे के प्रकरण में हम लोग देखेंगे।
8: अच्छा, मैं अभी योग वासिष्ठ को जब पलट रही थी तो इसमें काल के ग्रास की बात आती है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को पहले तो आप बताएं कि काल क्या है, पहले तो ये समझाएं और फिर ये बताएं कि वो किसका भक्षण करता है।
7: बिल्कुल, काल का मतलब यहाँ पर बहुत विशद रूप में भगवान ने देखा है। काल का मतलब ये कह सकते हैं, काल का अर्थ समय भी है और भगवान ने तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा भी है कि गणना में मैं काल हूँ। कोई भी जो गणना करते हैं भूत भविष्य वर्तमान, ये काल की ही गणना है। तो कहते हैं ये काल जो है सातों भुवनों को निगल जाता है, इस काल से कभी भी कोई बचा नहीं है। तो इस काल को देखते हैं कि ये काल का ग्रास ये जगत है जिसमें पूरा जगत समाता जा रहा है। तो जगत जब समा रहा है तो जगत के सारे प्राणी भी समा रहे हैं। और मैं इसके लिए थोड़ा सा जो योग का सबसे मतलब वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता, जिसमें भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसमें वो काल का ही स्वरूप है जिसको हम विश्व रूप दर्शन कहते हैं कि कोई उनके जबड़े में फंसा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई जवान हो रहा है, कोई मर रहा है। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि पूरा जगत यानी जहां आपकी बुद्धि की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, ऐसे विस्तार का नाम है काल। उस काल में ये सारा जगत समा जाता है जिस जगत को साधने के लिए व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है और चिंतित होता है और व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को ग्रसित करता है और विभिन्न रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो जब जगत ही काल का ग्रास बन जाता है तो फिर जगत में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से निश्चिंतता का भाव जो योगियों के चित्त में होता है, इस भाव को भी हम समझ सकते हैं काल के स्वरूप से, कि काल में जैसे कबीरदास जी कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, ये भी एक काल का चित्रण है कि जो होना है वो हो ही जाता है। तो फिर अनहोनी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि काल में निश्चित है वो क्या होना है और मनुष्य अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाते उसको उद्घाटित करने की या उसको डिकोड करने की, उस रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास करता है, जबकि वो जाना नहीं जा सकता।
8: आपने अभी विश्व रूप की बात की, कहा कि काल का ही एक स्वरूप वो है विश्व रूप का, जो दर्शन करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। भगवान श्री राम ने क्या देखा, काल का स्वरूप क्या है?
7: भगवान श्री राम कहते हैं कि ये काल बड़ा निर्दय है, कठोर है, क्रूर है, कर्कश है, कृपण और अधम है।
8: अच्छा,
7: हाँ, संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उदरस्त न कर ले, जिसको ये उदर में अपने धारण न कर ले। अब आप देखिए कि जीव इसी संसार को साधने का प्रयास कर रहा है जिसको ये काल अपने उदर में लगातार लेता जा रहा है। हम लोग कहते भी हैं ना कि जीवन में जन्म लेने वाला जीव जो है हर पल मृत्यु के करीब यानी काल के करीब जा रहा है। तो काल के उदर में हम जा रहे हैं और उसके बाद भी इस संसार को पकड़ने और इस संसार के मोह में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि जहां लगता है कि संसार ही हमारे जीवन का अभिष्ट है। इसको बड़ा एक सुंदर उदाहरण में उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे काल को आपको देखना हो तो वो कहते हैं ऋषि कि जैसे एक मेढक को एक सांप ने अपने मुंह में पकड़ लिया है, लेकिन वो मेढक बार बार कीड़े को खाने का प्रयास कर रहा है, वो अभी भी जीवन की तलाश कर रहा है जबकि उसका जीवन खुद संकट में है, उसका काल बन करके वो सर्प उसे अपने उदर में लेना चाहता है। ऐसे ही काल के उदर में सब समाये हुए हैं, लेकिन इसको न देखने की वजह से वो भ्रम बस संसार में
8: तस्वीर
7: भटक
8: ये डरावनी बन जाती है। लेकिन भय की बात नहीं, समझ की बात
7: है
8: कि हम किस तरह से समय को देखें, किस तरह से हम जीवन को देखें।
7: जी,
8: अच्छा, मैं देख रही थी योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी, तो कहीं एक जगह वो कहते हैं भगवान श्री राम काल को उन्होंने धूर्तों का शिरोमणि कहा।
7: बिल्कुल।
8: तो ये मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप समझाएं कि ये किस तरह से उन्होंने ये कहा है।
7: हम लोग संसार में कहते हैं ना ये बड़ा धूर्त है, तो कहते हैं समय बहुत धूर्त की तरह है कि जहां आपको लगता है कि ये आपको पोषित कर रहा है, आपको जवान कर रहा है, आपके जीवन में खुशियां ला रहा है, लेकिन आपके जीवन की खुशियों का भक्षण भी यही कर रहा है, है ना। जो दुख है वो इसी काल के प्रभाव से है। तो श्री राम जी ने इनको धूर्तों का शिरोमण इसलिए कहा कि इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं है। ये दिखता तो है लेकिन ये दृश्य रूप में जो दिखाई देता है इसका सत्य हम नहीं देखते।
8: हाँ।
7: सत्य ये है कि जैसे परिणाम में आपको क्या मिल रहा है, जिस चीज को पाने के लिए आपने प्रयास किया उसका परिणाम क्या हुआ। तो संतुष्ट होने के लिए आपने प्रयास किया, परिणाम में असंतोष मिला। सुख के लिए आपने प्रयास किया, परिणाम में आप दुखी हो गए। तो ये इसकी धूर्तता का प्रभाव है। तो राम जी कहते हैं तो धूर्तों का शिरोमणि है जो दृश्य होकर के भी दिखता नहीं है, जो जो है वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो है नहीं। इसीलिए इसको माया भी कहा गया है। माया का मतलब मां मतलब नहीं, या मतलब जो जो नहीं है और होने जैसा प्रतीत हो वो है काल। तो काल की महिमा बड़ी विशद रूप में राम जी ने वर्णन किया है इसमें कि वो काल का जो मुझे दृश्य दिखाई देता है, ये काल बड़ा भयावह तो नहीं कहेंगे लेकिन इसका स्वरूप ऐसा है कि इस काल से ना कोई बच सकता है। तो ऐसे में इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर पाए, क्योंकि अंततः वो काल का ग्रास बन ही जाएगा।
8: जी जी। अच्छा, मेरे मन में अचानक ही मतलब मुझे याद हुआ है कि जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं,
7: जी जी,
8: तो जन्मदिन का आना भी काल से जुड़ा हुआ है।
7: हाँ, बिल्कुल जी, जी,
8: है ना?
7: जी,
8: तो उसको एक उत्सव की तरह आप मनाते हैं, समारोह पूर्वक मनाते हैं
7: जी,
8: लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि हम मृत्यु की तरफ एक और कदम बढ़ गए
7: जी।
8: तो शायद ऐसी ही बात है ये।
7: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
8: उस दृष्टि से हम देख नहीं पाते। हाँ,
7: देख नहीं पाते। एक बात और देखिए, वैराग्य का मतलब क्या हुआ, या योग का मतलब ये होता है कि समग्रता से किसी चीज को देखना। जैसे हम लोग क्या होता है कि हम अपने चुनाव के अनुसार चीजों के एक पार्ट को देखते हैं और दूसरे विषय को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क का ऐसा बनावट है कि जैसे हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं और जो हम नहीं देखना चाहते हैं वो होते हुए भी दिखता नहीं है। यहाँ पर जो कहते हैं जो नहीं देखते आपके अनदेखा कर देने से वो मिट नहीं जाता, उसका भी होना है। तो अगर आप उसको देख पाएंगे तो जो राग द्वेषात्मक जो बंधन है ये बंधन ढीला पड़ेगा और इसके जो प्रभाव से आपके चित्त में जो आंदोलन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, उस विचलन से आप शांति की अवस्था को उपलब्ध हो सकेंगे जब समग्रता से देखेंगे। तो ये इसका इशारा है कि आप उसे अनदेखा मत करें। अनदेखा करने से मिटेगा नहीं, जो चाहते हैं वो देखिए लेकिन जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसके भी सत्य को स्वीकारिए।
8: स्वीकारिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अब आप ये बताएं कि इस संसार में, जगत में, व्यावहारिक स्थिति में काल किस तरह से अभिव्यक्त होता है।
7: बिल्कुल सुंदर कहा आपने। व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता और संहार करने वाला, स्मरण करता भी यह काल ही है। इन तमाम रूपों में यह काल प्रदर्शित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो हम हर पल अपनी स्मृतियों के साथ ही अपने मैं का अस्तित्व बनाते हैं। आप देखें तो स्मृतियां क्या हैं, काल की ही तो हैं। आप अपने बचपन की करें, युवा अवस्था की करें, किसी भी दृश्य की स्मृति करें, चाहे वृद्धावस्था के बारे में सोचें, तो अंततः आप सोच किसके बारे में रहे हैं, काल के बारे में ही तो सोच रहे हैं। तो ये काल का जो स्वरूप है, जो व्यवहार में ये व्यक्त होता है, वो कर्ता, भोक्ता, संहारकर्ता और स्मरणकर्ता के रूप में काल ही है। यानी देखें तो समस्त जो कर्ता मनुष्य को अपने कर्तापन का जो बोध होता है वो उसके कर्तापन का बोध नहीं है। उस कर्तापन में जो जो योग की तरफ या वैराग्य जिसके चित्त में विवेक से उत्पन्न हुआ है उसमें कर्ता काल दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समय ही सब कुछ है, समय बलवान है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम कमजोर हो गए या हम ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं है, वो समय की शक्ति है। जी।
8: अच्छा शशिकांत जी, इसमें काल की पत्नी की चर्चा भी एक जगह आई।
7: बिल्कुल।
8: तो मैं चाह रही थी कि हमारे सुनने वालों को अब बताएं कि काल की पत्नी कौन है।
7: काल की पत्नी को चंडी कहा गया
8: जी,
7: और इसको काल रात्रि भी कहते हैं। अत्यंत कोपवती है ये काल रात्रि, मतलब जैसे काल का स्वरूप क्रूर है, तो जो उसकी पत्नी है, जो काल रात्रि जिसे कहते हैं, कई बार हम लोग अपने साधनाओं में काल रात्रि की पूजा देवी के रूप में काल रात्रि भी कहते हैं उसे, तो उसमें ये कहते हैं कि बड़ी कोपवती है जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है और इसके साथ सारी मातृकाएं, डाकिनी, शाकिनी आदि रहती हैं। इनकी पत्नी के साथ, ये जो मतलब जो मातृकाएं हैं, आप देखते होंगे जब हम घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मातृकाओं षोडश मातृकाओं की भी पूजा करते हैं,
8: जी, जी,
7: तो वो काल की जो पत्नी कालरात्रि हैं उन्हीं की साथ रहने वाली जो मातृकाएं हैं उनकी पूजा है।
8: अच्छा।
7: तो काल की पूजा भी की गई है हमारे यहाँ, क्योंकि काल से डरने की जरूरत नहीं है, काल में ही हम हैं, तो काल से डर के हम जाएंगे कहाँ, तो जिससे हम बच नहीं सकते उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके स्वरूप को जानने से हमारे चित्त में जरूर शुद्धि होगी और चित्त का जो मलिनता है वो दूर होगा।
8: जी जी
7: जी।
8: अच्छा, काल के धनुष की भी चर्चा है इसमें,
7: बिल्कुल,
8: तो मैं चाह रही थी कि वो भी आप बताएं।
7: काल का धनुष अभाव है, संहार है।
8: जी।
7: जैसे आप देखें तो काल स्मृति करता, जब आप स्मरण करते हैं किसी चीज को तो जो चीज समाप्त हो चुका है यानी भूत में बीत गया है उसको आप याद करते हैं, और या फिर भविष्य की योजनाओं को आप सोचते हैं उसके बारे में, वो भी नहीं है। तो काल के धनुष पर अभाव है, संहार है। तो काल के धनुष को कहा गया अभाव है, संहार है, जिस पर काल अनेक प्रकार के बाणों को चलाता रहता है जिससे संसार की गति होती है और अंततः वो काल के का ग्रास बन जाता है।
8: तो एक जगह नृत्यशाला की भी बात आई है।
7: हाँ, काल काल का नृत्यशाला
8: नृत्य करता है।
7: जी जी जी।
8: तो मैं चाह रही थी कि वो भी आप उसकी भी एक व्याख्या कर दें।
7: कहते हैं कि ये काल जो जगत मंडल दिखाई देता है वह इस काल की नृत्यशाला है, यानी पूरा जो जगत मंडल दिखाई दे रहा है इसी में ये काल नृत्य करता है विभिन्न रूपों में।
8: जी, जी,
7: तो आप देखें जैसे हम कार्य का काल का ही स्मरण करता है हम, तो हमारा जो चित्त तमाम सारी चीजों में स्मरण मतलब कर रहा है या भाग रहा है या नाच रहा है, उसे नाचना भी कह लें, दौड़ रहा है, तो वो अंततः काल की सीमा से अलग कोई चीज नहीं है। तो इस जगत को इस काल काल का नृत्यशाला भी राम जी ने कहा, और कहते हैं कि जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवनों, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता रहता है। यह है काल की नृत्यशाला।
8: जी, जी, जी। तो शशिकांत जी, आज हमने वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर चर्चा की है। मैं चाहती हूँ संक्षेप में इस पूरी चर्चा को अगर मैं कहूँ कि आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं के लिए रखते हैं।
7: संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था जो जीवन का एक कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जहां उसके अवसान भी कह सकते हैं और साथ ही साथ जीवन की यात्रा का वो एक मंजिल भी है वृद्धावस्था, जहां हर व्यक्ति वहां पहुंचेगा, तो वो दुख से भरा हुआ है। तो दुख से भरा हुआ है इस नाते इस संसार में जो सुख खोजने की मनुष्य की प्रकृति है, वो प्रकृति संसार में न हो बल्कि वो अपने स्वरूप के प्रति, अपने अद्वय जो रूप है उसको जाने, वो कि हम हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है और जो सच्चिदानंद जो रूप है उसकी तरफ हो जाए, ना कि संसार की तरफ। और दूसरी बात, जो आपने काल की बात कही, काल का विस्तार इतना प्रबल है कि काल इस जगत को अपना ग्रास बना लेता है, तो ऐसे में उस काल के स्वरूप को जानते हुए ये जाने कि सब कुछ काल में ही है और काल कभी भी स्थिर नहीं है, निरंतर गति उसकी हो रही है, और भगवान ने जब कहा कि गणना में मैं काल हूं तो इसका मतलब काल से हम बच नहीं सकते, तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति संज्ञान लेकर के करें ताकि काल हमारे कर्म का जो फल बनाए वो हमारे अनुकूल हो, और इसके लिए हमें कर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा
8: जी।
7: तब जाकर के फल हमारे मन के अनुकूल होगा।
8: बिल्कुल। तो शशिकांत जी, आज वृद्धावस्था और काल के स्वरूप पर हमने बहुत ही सार्थक चर्चा आपसे सुनी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपका बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: नमस्कार।
8: तो श्रोताओं, वृद्धावस्था और काल के स्वरूप का विवेचन आपने सुना योग संवाद कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
2: बजबज की विजय। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक को किसी महान सेनापति ने नहीं, बल्कि पूरी तरह नशे में धुत एक अकेले नाविक ने जीता था? ये साल 1756 की बात है, जब बंगाल के नवाब के हाथों कलकत्ता के पतन ने अंग्रेजों के बीच अकथनीय घबराहट पैदा कर दी थी और कंपनी की नींव हिला दी थी। मद्रास से एक राहत अभियान भेजा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थलसेना की कमान संभाल रहा था और एडमिरल वॉटसन एक शक्तिशाली नौसैनिक दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। हुगली नदी के रास्ते आगे बढ़ते समय उनकी पहली बड़ी बाधा बजबज का किला था, जो कलकत्ता के ठीक नीचे जल मार्ग पर नियंत्रण रखता था। स्वर्ग से जन्मे सेनापति कहे जाने वाले क्लाइव ने भोर होते ही किले पर औपचारिक हमले की पूरी योजना तैयार कर ली थी, लेकिन नियति और थोड़ी सी शराब को कुछ और ही मंजूर था। क्या आप जानते हैं कि जब अधिकारी रणनीति पर बहस कर रहे थे, तब स्ट्रेहन नाम का एक आम नाविक अत्यधिक शराब पीने में व्यस्त था। 29 दिसंबर की रात को नशे में चूर स्ट्रेहन अंग्रेजी कैंप से भटक गया और अनजाने में खुद को किले की दीवारों के नीचे पाया। उसे प्राचीर में एक दरार मिली जो नौसेना की गोलाबारी से बनी थी। स्ट्रेहन मलबे के सहारे ऊपर चढ़ गया और दरार के शीर्ष पर पहुंच गया, जहां उसने खुद को दुश्मन के संतरियों के सामने अकेला पाया। भागने के बजाय उस नशे में धुत नाविक ने अपनी कटार लहराई, पिस्तौल चलाई और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए 3 बार हुर्रे का जयघोष किया। ये जगह मेरी है। कैंप में मौजूद उसके साथी नाविकों ने जब शोर सुना तो उन्हें लगा कि आधिकारिक हमला समय से पहले शुरू हो गया है और वे उसकी मदद के लिए दरार की ओर दौड़ पड़े। किले की सेना, जिसे लगा कि ये बहुत बड़ा और अचानक हमला है, घबरा गई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। जब तक क्लाइव और उसके अधिकारी अपने शानदार हमले का नेतृत्व करने पहुंचे, उन्होंने पाया कि किला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जीता जा चुका था जो सीधे चल भी नहीं पा रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब इस आकस्मिक नायक को उसके वरिष्ठों के सामने लाया गया तो क्या हुआ? एडमिरल वॉटसन ने नौसैनिक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करते हुए स्ट्रेहन को कड़ी फटकार लगाई। उस नाविक ने, जो लहू लुहान था पर झुका नहीं था, एक ऐसा जवाब दिया जो कंपनी के इतिहास में अमर हो गया। उसने एडमिरल से कहा, अगर मुझे अपनी बहादुरी के लिए कोड़े खाने पड़ने हैं तो भगवान की कसम, मैं अपने पूरे जीवन में फिर कभी अकेले कोई किला नहीं जीतूंगा। बजबज की ये अजीबोगरीब घटना उस प्रसिद्ध 200 दिनों का एक निर्णायक मोड़ बन गई, जिसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता को वापस लिया और अंततः पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये घटना याद दिलाती है कि कंपनी के सत्ता में उदय के दौरान अक्सर भव्य सैन्य योजनाओं की तुलना में व्यक्तियों की, यहाँ तक कि नशे में धुत व्यक्तियों की चतुराई और साहस ने अधिक अंतर पैदा किया।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह है रेडियो आजाद हिंद। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम भारत विभूति के इस अंक में एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सुखद और समृद्ध जीवन त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा को अपना धर्म चुना। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिखाया कि मनुष्यता की सच्ची सेवा में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। हम आज भारत विभूति में बात करने जा रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं स्वाति और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
4: दीपेश।
3: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों को केवल दवाई नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया अर्थ दिया, जिन्होंने समाज की सोच बदली और घृणा को करुणा में बदल दिया।
4: जिनके लिए हर मनुष्य, चाहे वह कितना भी रोगग्रस्त या विकलांग हो, सम्मान का पात्र था। जिन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है। जिनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा की एक अमर कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, यानी बाबा आमटे की जीवन यात्रा के बारे में। तो आइए उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को जानें और उनसे प्रेरणा लें। तो आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा।
3: श्रोताओं, भारतीय समाज सेवा के इतिहास में बाबा आमटे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और विकलांग लोगों के लिए उनका कार्य न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और करुणा से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
4: मुरलीधर देवीदास आमटे जी का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता देवीदास आमटे ब्रिटिश सरकार के अधीन एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। परिवार हिंगन घाट के सबसे प्रभावशाली और धनी परिवारों में से एक था। बचपन में मुरलीधर को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ था।
3: मुरलीधर के घर में नौकर चाकर थे, अच्छे वाहन थे और हर तरह की विलासिता की चीजें उपलब्ध थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। परिवार में शिक्षा और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। घर में धार्मिक वातावरण था, लेकिन साथ ही आधुनिक विचारधारा को भी स्थान मिला था।
4: बालक मुरलीधर अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि थी। वे घुड़सवारी करते थे, शिकार किया करते थे और अन्य खेलों में भी निपुण थे। उन्हें तैराकी और कुश्ती में भी रुचि थी। उनका बचपन विलासिता और आराम से बीता, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार में उन्हें प्यार से बाबा के नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में उनकी पहचान और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया।
3: बचपन में बाबा आमटे को सांपों में विशेष रुचि थी। ये रुचि केवल एक शौक भर नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वो सांपों को पकड़ने और उनके बारे में जानने में घंटों बिता दिया करते। वे जंगलों में जाकर विभिन्न तरह के सांपों को पकड़ते और उनका अध्ययन करते। इस अनोखे शौक ने उन्हें निडर और अत्यंत साहसी बनाया। जो डर दूसरे बच्चों में होता था, वो बालक मुरलीधर में नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी और उनके हर शौक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी अपने बेटे को रोका टोका नहीं, बल्कि उसके साहस की हमेशा प्रशंसा ही की। बचपन के इन अनुभवों ने बाबा आमटे के व्यक्तित्व को गढ़ा। सांपों के साथ काम करने से उन्हें ये सीख मिली कि जिन चीजों से लोग डरते हैं, वो वास्तव में उतनी भयानक नहीं होती। ये सीख बाद में उनके जीवन में बहुत काम आई, जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ काम करना शुरू किया।
4: मुरलीधर आमटे की प्रारंभिक शिक्षा हिंगन घाट के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और हर कक्षा में प्रथम आते थे। शिक्षकों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे किसी भी विषय को शीघ्रता से समझ लेते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के प्रतिष्ठित मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। नागपुर उस समय मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और वहां शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं थी। कॉलेज में भी वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने गए। वे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने कॉलेज में नाटकों में भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि दिखाई।
3: कॉलेज के दिनों में युवा मुरलीधर एक शानदार जीवन शैली जी रहे थे। उनके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे शौक थे और वो अपने मित्रों के बीच लोकप्रिय भी थे। वे अक्सर पार्टियों में जाते, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते। उनके पास एक कार भी थी, जो उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वकालत उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा हुआ करता था। परिवार भी चाहता था कि मुरलीधर एक सफल वकील बने। उन्होंने कानून की पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1942 में वकालत की डिग्री हासिल की। उसी साल उन्होंने वर्धा में अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू की।
4: बाबा आमटे की प्रतिभा, वक्तव्य कला, और कानूनी ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही एक सफल और लोकप्रिय वकील बन गए। उनकी आय बहुत अच्छी थी और वे आरामदायक जीवन जी रहे थे। उनके मुवक्किलों में धनी और प्रभावशाली लोग होते थे। वे अदालत में अपनी दलीलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन युवावस्था में ही बाबा आमटे के मन में देश और समाज के प्रति चिंता जागने लगी थी। वे उस समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का दर्शन और उनकी विचारधारा ने युवा मुरलीधर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश उन्हें बहुत पसंद आया।
3: गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रह रहे थे, जो बाबा आमटे के घर से ज्यादा दूर नहीं था। बाबा आमटे ने कई बार सेवाग्राम जाकर गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी के सरल जीवन और उच्च विचारों ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा। बाबा आमटे ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कानूनी मदद भी की। 1942 के भारत छोड़ आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कई माह बिताए। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इन महान व्यक्तियों के विचारों और जीवन शैली ने युवा मुरलीधर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा।
4: जेल से बाहर आने के बाद भी बाबा आमटे की वकालत चलती रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। वे महसूस करते थे कि केवल धन कमाना और आरामदायक जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसी बीच 1946 में बाबा आमटे का विवाह साधना ताई मोघे से हुआ। साधना ताई एक असाधारण महिला थी। वे भी एक संपन्न परिवार से थी और उन्होंने आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय महिलाओं का इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक असाधारण बात थी। साधना ताई प्रगतिशील विचारों वाली और समाज सेवा में रुचि रखने वाली महिला थी।
3: विवाह के बाद साधना ताई ने अपने पति के हर निर्णय में उनका साथ दिया। वो न केवल एक पत्नी थी बल्कि बाबा आमटे की सबसे बड़ी सहयोगी और मित्र भी बनी। उनका विवाह एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण था। साधना ताई ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पति के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। विवाह के समय बाबा आमटे का जीवन बहुत आरामदायक था। वो एक सफल वकील थे, उनकी अच्छी कमाई थी, उनके पास एक बड़ा मकान था, कार थी और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा आमटे के मन में एक अजीबोगरीब सी बेचैनी थी। वो महसूस करते कि जीवन में कुछ कमी है, कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
4: 1945 की एक रात की घटना ने बाबा आमटे के जीवन की दिशा ही बदल दी। वर्धा की एक सुनसान सड़क पर रात के समय वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी कार की रोशनी में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक मनुष्य सड़क के किनारे असहाय पड़ा था। पास जाने पर पता चला कि वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसकी उंगलियां गल चुकी थी, पूरा शरीर सड़ रहा था और असहनीय दुर्गंध आ रही थी। उस अंधेरी रात में आवारा कुत्ते उसके घाव को चाट रहे थे और वह असहाय व्यक्ति चिल्लाने की शक्ति भी खो चुका था। यह दृश्य देखकर बाबा आमटे के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उन्हें घृणा और भय हुआ। उनका मन हुआ कि वहां से भाग जाए, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं इतना कायर हूं कि एक मरते हुए मनुष्य की मदद नहीं कर सकता? क्या मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा साहस सब बेकार है?
3: वो कार से उतरे और उस व्यक्ति के पास गए। पहली बार उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को इतने करीब से देखा था। वो दृश्य इतना भयावह था, लेकिन बाबा आमटे ने अपने डर पर विजय पाई।

0: सारी रात सोचते रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन इन उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने साधना ताई से अपने विचार साझा किए। साधना ताई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहेंगी।
1: 1946 से 1949 के बीच बाबा आमटे ने कुष्ठ सेवा की शुरुआत की। उन्होंने अपने निर्णय के बाद सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पूरी जानकारी के वो इन रोगियों की सही सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता, के प्रसिद्ध स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में जाकर कुष्ठ रोग का विधिवत अध्ययन किया। कलकत्ता में रहते हुए बाबा आमटे ने कई महीने कुष्ठ रोग के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग संक्रामक तो है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते हैं। लंबे समय तक और निकट संपर्क से ही यह फैलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है। सही दवाइयों और देखभाल से कुष्ठ रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं।
0: बाबा आमटे ने यह भी सीखा कि कुष्ठ रोग में त्वचा और नसें प्रभावित होती हैं। इसके कारण रोगी को अपने हाथ पैरों में संवेदना महसूस नहीं होती। छोटे छोटे घाव और चोटें, जिन्हें रोगी महसूस नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। उंगलियां और अंग सड़ने लगते हैं, लेकिन सही समय पर इलाज से इसे रोका जा सकता है। वापस वर्धा लौटने के बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम शुरू कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। पहला सवाल यह था कि रोगियों को कहां से लाया जाए। कुष्ठ रोगी जो समाज से छिपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बाबा आमटे ने शहर के बाहरी इलाकों में जाना शुरू किया। वे उन जगहों पर जाते थे जहां कुष्ठ रोगी छिप कर रहते थे। उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वे उनका इलाज करेंगे और उनकी मदद करेंगे। धीरे धीरे कुछ रोगी उनके पास आने लगे।
1: बाबा आमटे ने अपने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। वो अपने हाथों से रोगियों के घावों को साफ किया करते, पट्टियां बदलते और उन्हें दवाइयां देते। प्रारंभ में उन्हें बहुत घृणा और भय होता था। घावों की दुर्गंध से उनका मन मिचलाता था। सड़े हुए मांस को छूते समय उनके हाथ पैर कांप जाते। रात को सोते समय वो सपनों में वही दृश्य देखते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

0: खाना बनाया, उसके कपड़े धोए और उसकी देखभाल की। एक संपन्न घर की पढ़ी लिखी महिला का इस तरह एक कुष्ठ रोगी की सेवा करना उस समय अकल्पनीय था। धीरे धीरे तुलसीराम की हालत में सुधार आने लगा, उसके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया। कुछ महीनों में वह काफी स्वस्थ हो गया। यह बाबा आमटे के लिए एक बड़ी सफलता थी। इस घटना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा संभव है और वे भी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
1: लेकिन समाज में इस कार्य का भारी विरोध हुआ। पड़ोसी बाबा आमटे से नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कुष्ठ रोग उन तक भी फैल जाएगा। लोग बाबा आमटे और उनके परिवार से दूर रहने लगे। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक करार दे दिया। ये कहा गया कि एक सफल वकील अपना करियर और जीवन बर्बाद कर रहा है। उनकी वकालत पर भी इसका असर पड़ा। कुछ मुवक्किलों ने उनसे संबंध तोड़ लिया। लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों को छूता है उसके पास कैसे जाया जाए। बाबा आमटे की आय में अब कमी आने लगी थी।
0: लेकिन बाबा आमटे और साधनाताई ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे और रोगी उनके पास आने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि केवल घर में छोटे से क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, कुछ रोगियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां वे रह सकें, इलाज करा सकें और सम्मान से जी सकें। फिर स्थापना हुई आनंद वन की। 1949 से 1960 के बीच बाबा आमटे ने अपने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्धा जिले के वरूरा तहसील के पास चंद्रपुर में 264 एकड़ जमीन खरीदी और वहां आनंद वन यानी आनंद का वन इसकी स्थापना की। यह नाम भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। आनंद वन, जहां दुख और पीड़ा से भरे जीवन को आनंद मिले।
1: ये जमीन खरीदने के लिए बाबा आमटे ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उन्होंने अपना मकान, कार और सभी कीमती सामान बेच दिए। उन्होंने अपनी सफल वकालत को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक संपन्न जीवन से वे सब कुछ त्याग कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ चले। प्रारंभ में जो जमीन खरीदी गई थी वो पूरी तरह से बंजर थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, न पेड़, न पानी, न कोई इमारत, केवल सूखी बंजर जमीन जिस पर कांटेदार झाड़ियाँ उगी थी। कोई भी इस जमीन पर खेती करने का साहस नहीं करता था, लेकिन बाबा आमटे ने इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया।
0: साधनाताई और उनके दो छोटे बेटे प्रकाश और विकास, ये भी उनके साथ आनंद वन आ गए। साधनाताई ने अपने आरामदायक घर, सभी सुविधाओं और समाज की प्रतिष्ठा को छोड़कर इस बंजर जमीन पर रहने का निर्णय लिया। बच्चे भी छोटी उम्र से ही इस कठिन जीवन में शामिल हो गए। शुरुआत में परिस्थितियां बहुत कठिन थी। कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। पानी की बहुत समस्या थी, खाने पीने की भी दिक्कतें थी। रात को जंगली जानवर आते थे और डर पैदा करते थे। मच्छरों और अन्य कीड़ों का भी प्रकोप था।
1: बाबा आमटे ने पहले कुछ कुष्ठ रोगियों को आनंद वन में बुलाया। शुरू में केवल 6 रोगी ही आए। इन रोगियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ तो चल भी नहीं पाते थे, कुछ की आंखें खराब हो चुकी थी। लेकिन बाबा आमटे का दृष्टिकोण कुछ अलग था। वो इन रोगियों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सक्षम व्यक्ति ही मानते थे। आनंद वन में बाबा आमटे का दर्शन बहुत स्पष्ट था। कार्य ही पूजा है और भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें काम का अवसर देना चाहता हूँ। तुम भी काम कर सकते हो। तुम्हारे हाथ पैर भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है।
0: यह विचार क्रांतिकारी था। उस समय लोग कुष्ठ रोगियों को केवल दान और भीख का पात्र समझते थे, लेकिन बाबा आमटे ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। सबसे पहला काम था जमीन को उपजाऊ बनाना। बाबा आमटे ने स्वयं कुदाल उठाई और खेत जोतना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। साधनाताई भी उनके साथ काम करती थी। कुष्ठ रोगियों को भी काम में लगाया गया। जो चल सकते थे वो खेतों में काम करते थे, जो जो हाथों से काम नहीं कर सकते थे उन्हें दूसरे काम दिए गए।
1: धीरे धीरे बंजर जमीन हरी भरी होने लगी, पेड़ लगाए गए, कुआं खोदा गया, छोटे छोटे घर बनाए गए, खेतों में सब्जियां उगाई गईं, पशुपालन शुरू हुआ। हर रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता और उसके लिए मजदूरी भी मिलती। बाबा आमटे ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, उन्होंने आनंद वन में एक स्कूल खोला। यहाँ कुष्ठ रोगियों के बच्चे पढ़ते थे और साथ ही आसपास के गांवों के बच्चे भी। यह समाज में एक बड़ा बदलाव था। पहली बार कुष्ठ रोगियों के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे।
0: आनंद वन में अस्पताल की सुविधा भी विकसित की गई। यहाँ कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी इलाज होता था। कई रोगी जो पूरी तरह निराश हो चुके थे यहाँ आकर नया जीवन पाने लगे, उनके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आनंद वन में विभिन्न कार्यशालाएं भी स्थापित की गई। यहाँ बुनाई, चमड़े का काम, कृषि उपकरण बनाना और अन्य कई तरह के काम होते थे। कुष्ठ रोगी इन कामों में लगे थे और अपनी रोजी रोटी कमा रखे थे। यह उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी। वे अब भिखारी नहीं रहे बल्कि कमाने वाले व्यक्ति बन गए थे। धीरे धीरे आनंद वन की ख्याति फैलने लगी। देश के विभिन्न हिस्सों से कुष्ठ रोगी यहां आने लगे। 1950 के दशक के अंत तक आनंद वन में सैकड़ों रोगी रह रहे थे। यह एक समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदाय बन गया था।
1: बाबा आमटे ने अपने कार्य को केवल कुष्ठ रोगियों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने विकलांग लोगों, अंधों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए भी काम किया। आनंद वन में नेत्रहीनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गईं। 1973 में उन्होंने गढ़चिरौली जिले के हेमलक्सा में एक नई परियोजना की शुरुआत की।
0: उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। बाबा आमटे ने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे बड़े बांधों के निर्माण से होने वाले विस्थापन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विकास के नाम पर गरीब लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
1: बाबा आमटे को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। बाबा आमटे के अथक सेवा कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1986 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: 1985 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया। इस पुरस्कार की राशि उन्होंने आनंद वन के विकास में लगा दी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें टेम्पलटन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन सभी पुरस्कारों के बावजूद बाबा आमटे अत्यंत विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी भी इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं माना बल्कि उन लोगों के प्रति समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक माना जिनकी वे सेवा कर रहे थे।
1: जीवन के अपने अंतिम वर्षों में बाबा आमटे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और वो बिस्तर पर ही रहने लगे। चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन बीमारी ने भी उनके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आनंद वन और हेमलक्सा के कार्यों का संचालन किया करते। वे अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे।
0: साधना ताई ने अंत तक अपने पति की सेवा की। उनके दोनों बेटे प्रकाश और विकास ने भी अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में आदिवासियों की सेवा को जारी रखा। विकास आमटे ने आनंद वन का संचालन संभाला। 9 फरवरी 2008 को आनंद वन में बाबा आमटे ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति था। भारत ने अपना एक महान समाज सेवक खो दिया।
1: उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन सबसे अधिक दुख उन हजारों लोगों को था जिनके जीवन में बाबा आमटे ने उजाला भरा था। बाबा आमटे का जीवन दर्शन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। उनके कुछ प्रमुख विचार और सिद्धांत इस तरह थे।
0: मैं एक मनुष्य की जान बचाना नहीं चाहता, मैं एक मनुष्य को जीवन देना चाहता हूँ।
1: ये उनका मूल मंत्र था। वो केवल रोगियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देते थे।
0: कर्म ही पूजा है, उनका मानना था कि मनुष्य को काम करना चाहिए, काम से ही मनुष्य को आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य मिलता है। भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए, विदान और भिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मनुष्य को भीख नहीं बल्कि काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय, बाबा आमटे ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारा। आनंद वन में सभी को समान अवसर और सम्मान मिलता था।
1: बाबा आमटे पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति

0: की सुविधाएं हैं। यहाँ के निवासी आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बाबा आमटे का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने सुखद जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा की। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और समर्पण समाज में महान परिवर्तन ला सकता है।
1: बाबा आमटे न केवल कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे, बल्कि उन्हें जीवन जीने का एक नया अर्थ भी देते। उन्होंने समाज की सोच बदली, कुष्ठ रोगियों के प्रति घृणा और भय को भी समाप्त किया। उन्होंने बताया कि ये लोग भी समाज के उपयोगी सदस्य हो सकते हैं। उनका जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो उपेक्षित और तिरस्कृत हैं। बाबा आमटे का जीवन हमें सिखाता है कि हमें इन वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देना चाहिए।
0: बाबा आमटे जी ने कहा था, मैं केवल एक मोमबत्ती जला रहा हूँ। यदि हर कोई अपनी एक मोमबत्ती जलाए तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। यही उनका संदेश था और यही उनकी विरासत है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना।
1: तो श्रोताओं, इसी प्रेरक संदेश के साथ हमारा ये कार्यक्रम भारत विभूति अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बात कर रहे थे पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पातम का, वाचन कर रहे थे मैं यानी स्वाति
0: और मैं दीपेश,
1: लेखन था अखिलेश कुमार वर्मा का। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था? 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स, और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांद भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: थोम कोरिया की मौत। फरवरी 1623 की एक उमस भरी शाम को अम्बोइना के सुदूर द्वीप पर थोम कोरिया नामक एक 50 वर्षीय सैनिक का जीवन अपने हिंसक अंत की ओर बढ़ रहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे आधिकारिक तौर पर एक जापानी सैनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसका नाम एक भूले हुए वतन और आधुनिक एशिया की अशांत समुद्री धाराओं से परिभाषित जीवन की गूंज समेटे हुए था। थोम का जन्म 1573 में जापान में नहीं बल्कि कोरिया में हुआ था। उसका जीवन संभवतः 1590 के दशक में तब तहस नहस हो गया जब जापानी सेनापति टोयोटोमी हिदेयोशी ने कोरियाई प्रायद्वीप पर क्रूर आक्रमण किया। जापानी सामंतों द्वारा हिराडो बंदरगाह पर लाए गए सैकड़ों कैदियों में युवा थोम भी शामिल था। क्यूशु की महानगरीय दुनिया में कैदी अक्सर निवासी बन जाते थे और पूर्व दुश्मन निहोनमाजी जापानी बस्तियों में नया जीवन तलाशते थे। अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते थोम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था और एक यूरोपीय कंपनी राज्य की सेवा में मर्सनरी के रूप में एक स्थिर वेतन की तलाश करने लगा। थोम को अवसर तब मिला जब डच कंपनी, जो हमेशा सैनिकों की कमी से जूझती थी, उसने सीधे जापान से सैनिकों की भर्ती का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। डच अधिकारियों का मानना था कि जापानी एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति थे। कंपनी की नज़र में थोम की वास्तविक जातीयता अप्रासंगिक थी। चूंकि उसे एक जापानी बंदरगाह में भर्ती किया गया था, इसलिए उसे एक पेशेवर जापानी सैनिक के रूप में ही भेजा गया। भर्ती के ये अनुबंध अत्यंत कठोर थे। थोम ने संभवतः जापानी लिपि में अनुवादित 3 साल के कठोर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मौत की सजा के डर से डच अधिकारियों की हर बात मानने का संकल्प लिया गया था। इन समझौतों की एक खास बात सामूहिक दंड थी। यदि कोई सैनिक भागता या विद्रोह करता तो वीओसी जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को सजा देने का अधिकार रखती थी। यह प्रयोग अम्बोइना साजिश ट्रायल के रूप में एक दुखद और डरावने मोड़ पर समाप्त हुआ। संदेह तब शुरू हुआ जब शिचिजो नामक एक साथी सैनिक ने डच संतरी से निकले के पहले स्टेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए। यातना के असैन्य दबाव में शिचिजो और अन्य लोगों ने अंग्रेजों के लिए किला हथियाने की एक बड़ी साजिश का कबूलनामा दे दिया। थोम कोरिया भी इस उन्माद की चपेट में आ गया। उसे 1623 में 9 अन्य जापानी सैनिकों और 10 अंग्रेज व्यापारियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। उसका जीवन संवादात्मक प्रभुत्व यानी इंटरेक्टिव डोमिनेंस के उस वैश्विक युग का एक ज्वलंत प्रमाण है जहां एक कोरियाई लड़का जापानियों द्वारा बंदी बनाया जा सकता था और एक डच सैनिक के रूप में मर सकता था।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी का एक कारण भारत के लोकमानस में आई आजादी की वो चेतना थी जो सुदूर वन प्रांतरों में बसे टोलों में स्वतंत्रता के लिए पनपी थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी तो मध्य प्रदेश में नमक की जगह जंगल सत्याग्रह ने ले ली। प्रदेश भर में ये आंदोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया। अनेकों देशभक्त शहीद हुए, लाठियां खाई, जेल की यातनाएं भोगी, पर टस से मस नहीं हुए। आंदोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। सिवनी जिले के ग्राम टुरिया में उठी आंदोलन की आंधी बिना प्रशिक्षण और बिना किसी योजना के उठी एक ऐसी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयंसेवक शासकीय जंगल चंदन बगीचा में जाकर घास काटकर सत्याग्रह करते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिए जाते। बावजूद इसके आंदोलनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घास काटकर सत्याग्रह किया जाना तय हुआ। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया, मगर सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। पुलिस ने आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोग भड़क उठे। लोगों की उत्तेजना के विरोध में उन पर गोलियां बरसाई गईं। आंदोलनकारियों को वृक्षों से बांधकर कोड़े मारे गए। लहूलुहान आजादी के दीवानों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। टुरिया गांव चीत्कार कर उठा। मगर अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीढ़ियों तक आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा। स्वाधीनता के लिए उठा ये विप्लव देश की आजादी तक नहीं थमा।

0: यार ये कजबई काका का खाना इतना लजीज बनता है, क्या बताएं यार।
1: अरे वो इसलिए कि काका केवल खाना ही नहीं देते बल्कि उसमें अपने पन का बघार भी लगाते हैं।
0: बिल्कुल सचमुच ऐसा खाना मिले तो यार मैं तो कभी शादी ही ना करूं।
1: बिल्कुल सही। अरे जब काका का खाना हो तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है।
0: सही बात है।
1: लेकिन यार आज पूरा वातावरण महक रहा है, ऐसी कौन सी अगरबत्ती लगाई है काका ने?
0: अरे अभी पूछ लेते हैं। काका, ओ काका, अरे ये तो बताओ आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है जो पूरे वातावरण को महका रही है?
2: ये चंदन की अगरबत्ती है बेटा।
0: चंदन की अगरबत्ती? क्या इस अगरबत्ती से आपका कोई खास लगाव है?
2: अब क्या बताएं बेटा, चंदन की अगरबत्ती जलती है तो न जाने कितनी आहें इतिहास से टकरा कर लौट आती हैं।
0: क्या चंदन की इस अगरबत्ती का भी कोई इतिहास है काका?
2: लगता है आज एक बार फिर तुम सब ने मिलकर काका को फंसा ही लिया। अब तुम्हें चंदन के जंगल और तुरिया सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताना ही होगा।
0: हाँ काका बताओ ना, यही तो हम सुनने आए हैं, हमें अच्छा लगेगा अपने पुरखों का इतिहास जानकर।
2: तो सुनो, ये कहानी है जंगल सत्याग्रह की।
0: अच्छा।
2: इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह अंग्रेज हम भारतीयों पर जुल्म ढाते थे, किस तरह निर्दोषों पर गोली चलाकर उन्हें मार डालने में कोताही नहीं बरतते थे।
0: अच्छा।
2: फिर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर सीमेन हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदरुद्दीन, आतंक का चेहरा सब तरफ एक जैसा ही होता है।
3: अरे ये तो हद हो गई भैया।
1: अरे ऐसा का हुआ जो इतना चिल्ला रहे हो?
3: क्या, अरे तुम्हें पता नहीं ये जो अंग्रेज अब हमारे जंगल पर भी अपना अधिकार जमाने लगे हैं?
1: वो तो हमारे देश में मेहमान बनकर आए और अब पूरे देश पर कब्जा जमा लिया।
3: हा?
1: तो जंगल भी उन्हीं के होंगे ना?
3: पर भैया ये तो अति हो गई। जब जंगल पर ही उनका कब्जा हो जाएगा तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे और हमारे पशु कहाँ चरेंगे?
1: कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: अच्छा सुनो।
1: हाँ।
3: तुम्हें पता है कि हमारे गांधी बापू ने कोई सत्याग्रह किया है?
1: हाँ, नमक बनाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। मुझे तो बस इतना ही मालूम है।
3: अच्छा, इससे अधिक जानकारी हमें भाई मूका और राम प्रसाद से ही मिल पाएगी।
1: हाँ।
3: है ना, वो ही हमें बताएंगे क्योंकि वो आसपास ही नहीं पूरी दुनिया की खबर रखते हैं।
1: तो फिर चलो उनसे ही पूछते हैं।
3: हाँ।
1: इसका कोई उपाय है भी? हाँ। या नहीं?
3: चलो चलो
1: चलो चलो।
2: तो ये थी एक चिंगारी जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम टुरिया से उठी। यह चिंगारी आग बनकर जंगल सत्याग्रह के रूप में पूरे देश में फैल गई। सन 1929-30 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया।
0: अच्छा।
2: जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। इस नमक सत्याग्रह को मध्य प्रदेश में एक नया स्वरूप दिया गया जिसे आज जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
3: तो मूका भाई, आप ही हमें कुछ सलाह दो ताकि हम इन अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त हो सकें।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो कभी कम नहीं होगा साथियों, हमें ही कुछ करना होगा।
3: आप तो देख ही रहे हैं मूका भाई, अभी कुछ ही दिनों पहले ही अंग्रेजों के पिट्ठू बने हमारे ही भारतीय भाइयों ने किस तरह से हमारे साथियों को पेड़ों पर बांध कर 40-40 कोड़े मारकर उन्हें लहूलहान कर दिया।
1: कुछ को तो कांजी हाउस में ही बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ भी कोड़े फटकारे गए।
5: भाई, यदि हमें भोजन के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मजबूरन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
4: हमें जंगल सत्याग्रह करना पड़ेगा ताकि हम ईंधन और चारे की सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
3: ये कैसे होगा मुका भाई? अरे आखिर हमें भी तो कुछ बताएं।
5: देखो भाई, हमें गांधी जी को अपना आदर्श मानकर बिना अस्त्र और शस्त्र लिए चंदन के बगीचों में जाकर घास काटने का काम करना होगा।
4: और हाँ, ये काम हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर करेंगे ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे अंग्रेज और अधिक आक्रामक हो जाएंगे।
5: जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में दांडी यात्रा की और नमक बनाया, उसी तरह हम अपने जंगल में घास काटकर विरोध दर्ज करेंगे ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हम में भी एकता है। हमारा नारा होगा, आदिवासियों की हुंकार
6: डोलेगी गोरी सरकार,
7: आदिवासियों की हुंकार
8: डोलेगी गोरी सरकार।

0: लो भाई, जंगल सत्याग्रह तो शुरू हो ही गया।
1: ये दुर्गा शंकर मेहता जी भी कमाल के आदमी हैं। कांग्रेस कार्यालय में शिविर प्रारंभ कर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।
0: भैया कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: कि हमारे साथी चंदन बागीचे में रोज ही जाकर घास काटने का काम कर रहे हैं।
1: अरे घास काटने के पहले नोटिस भी तो देते हैं, तभी तो चार पांच लोग मिलकर जा पाते हैं।
0: इसके एवज में जुर्माना जो भरना पड़ता है वो?
1: अरे वो तो हमें भरना ही पड़ेगा, आखिर देश के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं।
0: तुमने देखा
1: क्या,
0: पहले तो इन अंग्रेजों ने हम पर जुर्माना किया।
1: हाँ।
0: फिर हमारे बर्तन भाड़े रख लिए, लेकिन अब जब सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ गई तो सबको गिरफ्तार नहीं करते बल्कि जंगल में ही कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं।
1: इन्हें भी पता चल गया है कि हमारे मूका भाई की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, लोग उनकी एक आवाज पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
0: सही कहा।
2: इधर जंगल सत्याग्रह चल ही रहा था, पर अंग्रेज सरकार भला कैसे चुप रह सकती थी। वो भी ताक में थी कि किस तरह ये आदिवासी भड़कें और गोरी सरकार अपना वास्तविक रूप दिखा सके। तब वहां डिप्टी कमिश्नर सीमेन थे, उन्हें जब मूका एवं उसके साथियों द्वारा किए जा रहे जंगल सत्याग्रह करने की बात का पता चला तब उसने भी कुछ करने की ठान ली। उसकी इस जिद ने टुरिया सत्याग्रह की नींव रखी।
3: सदरुद्दीन
4: जी साहब,
3: ये क्या हो रहा है?
4: टुरिया में लोग जमा हो रहे हैं साहब।
3: तुम क्यों कुछ नहीं करते?
4: मैं अकेले क्या कर सकता हूँ साहब?
3: क्यों, तुम्हारे साथ रेंजर मेहता नहीं है क्या?
4: वो तो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं साहब।
3: तो फिर कमी किस बात की है?
4: बात ये है साहब कि आदिवासी कई बार आक्रमक हो उठते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम उन पर गोली चला सकें। ऐसे में हम पर कभी भी हमला हो सकता है।
3: तुम चिंता मत करो, तुमको आदेश भी मिलेगा और पुलिस फोर्स भी।
4: थैंक यू साहब, तब तो समझो काम हो गया।
3: सद्दुद्दीन, तुम इन आदिवासियों को ऐसा सबक सिखाना ताकि और कोई आदिवासी सर न उठा सके।
4: जी साहब।
3: टीच देम ए लेसन, समझा?
4: जी साहब।
3: तुमको आदेश चाहिए, ये लो आदेश।
4: समझ गया साहब, समझ गया। चलो मेहता, अब हमें कोई डर नहीं है, साहब भी हमारे साथ हैं, अब तो जो भी सामने आएगा उसे भून कर रख देंगे।
5: पर इंस्पेक्टर साहब, आदिवासियों में जबरदस्त एकता है, उसका क्या करें?
4: उनकी एकता के पीछे मुंह का लोहार है, उसको गिरफ्तार कर लो, बस काम पूरा।
5: ऐसे में कहीं स्थिति विस्फोटक हो गई तो?
4: अरे उससे निपटने के लिए हमारे पास बंदूकें तो हैं ही। तुम चिंता मत करो मेहता, मेरे पास सीमेन साहब का ये लिखित आदेश है कि टूरिया गांव के लोगों को जोरदार सबक सिखाना है ताकि फिर कभी कोई मुंह का लोहार पैदा ही ना हो पाए।
5: कैसा आदेश है साहब?
4: ये देख रहे हो?
5: हाँ।
4: ये सीमेन साहब का आदेश।
5: अच्छा।
4: जिसमें साफ साफ लिखा है कि टूरिया गांव के लोगों को ऐसा सबक सिखाओ जिससे कभी कोई सर ऊंचा ना कर पाए।
5: यार सदरुद्दीन, ये सीमेन तो बहुत ही कमीना साहब है यार।
4: अरे ये तो इतना कमीना है कि जब भी वाइसराय को चिट्ठी लिखता है तो गांधी जी के मरने की कामना करता है।
5: हम ऐसे ही कमीने अफसर के साथ कब तक काम करते रहेंगे यार?
6: क्या करें यार, अंग्रेजों की खा रहे हैं ना, तो उनकी बजानी भी होगी।
5: हाँ।
0: भैया सुना?
1: हाँ।
0: ये इंस्पेक्टर सदरुद्दीन के नखरे आजकल बहुत ही बढ़ गए हैं।
1: अरे जब से वो सीमेन साहब से मिलकर आया है ना, तब से न जाने कहां से उसके पर उगाए हैं, हमेशा मार डालने की धमकी देता रहता है।
0: मार डालने की धमकी देता है यूं नहीं देगा, पर जिस दिन वो मूका भाई के हत्थे चढ़ गया ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
1: पर मूका है कहां? आजकल वो कर क्या रहा है पता ही नहीं चलता।
0: अरे वो आजकल गांव गांव घूमकर लोगों को जागृत कर रहे हैं ताकि ये गोरी सरकार कुछ सबक सीख सके।
1: हाँ, लगता है अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा।
0: ऐसा कैसे कह रहे हो भाई?
1: मुझे लगता है कि सदरुद्दीन के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं।
0: हे ईश्वर, हमारे गांव को बुरी नजर से बचाना।
1: अरे भाई, बुरी नजर तो लग ही गई है, अब तो कुछ होकर ही रहेगा।
0: तुमने सुना है, जंगल सत्याग्रह की आग अब पूरे देश में फैल रही है।
1: हाँ,
7: सुनो साथियों, बैतूल के पास चिकलार गांव में 22 अगस्त को हमारा एक साथी शहीद हो चुका है।
0: अरे, ये आपको कैसे पता चला मुका भाई?
7: वहां से मुझ तक खबर आई कि दीपचंद गोठी के नेतृत्व में बैतूल के पास चिकलार ग्राम में और गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में बंजारी ढाल में जंगल सत्याग्रह हो चुका है। इसी में हमारे साथी कोका गौंड पुलिस की गोली से शहीद हो चुके हैं।
1: अब तो हमें भी कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे।
7: तो हम सब मिलकर तय करते हैं कि 9 अक्टूबर 1930 को हम सब घास सत्याग्रह करेंगे।
1: हाँ,
7: इसके लिए गोरी सरकार को नोटिस भेजने का काम मैं कर देता हूँ। धरती की माटी है साधारण वस्तु नहीं, सोने चांदी से अधिक कीमती माटी है। जो मूल्यवान सर्वाधिक प्राण हुआ करते वे प्राण धरा हित देने की परिपाटी है। जिस धरती की है गंध हमारी सांसों में, अभिमान उसी के प्रति अपना अपनापन है। उस माँ के प्रति ममता वो सबसे बड़ा गर्व, उसका कहलाना ही गौरव संवर्धन है।
0: चलो भाई, आज 9 अक्टूबर है, सब नदी किनारे चलो।
1: हाँ,
0: वहाँ आज मूका भाई और राम प्रसाद सत्याग्रह करेंगे। इसके लिए उसने गोरी सरकार को नोटिस भी दे दिया है।
1: तभी मैं सोचूं कि आज हमारे गांव के आसपास इतनी पुलिस क्यों दिखाई दे रही है।
0: अरे वो तो आएगी ही, आखिर उन्हें भी तो अपनी ड्यूटी करनी ही है।
1: हाँ चलो, सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। चलो।
0: हाँ, हाँ, चलो भाई आओ। चलो, अरे वाह, इसमें तो औरतें भी शामिल हैं।
1: अरे उधर देखो, वो बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।
0: अरे आखिर ऐसा क्या होने वाला है भाई?
1: अरे भाई, हमारे मूका भाई और राम प्रसाद जी अपना भाषण करेंगे और बताएंगे कि ये आंदोलन कितना जरूरी है।
0: हाँ, चलो चलो
1: चलो,
0: आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। हाँ चलो, उठो बैठे।

0: के ढेर पर बैठ गया था। किसी को भी अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सभी के सर पर मौत का कफन था।
1: मीटिंग बड़ी जोरदार होने वाली है, आज मौका भाई जो है ना, उसके ऊपर बात
2: करेंगे। साथियों, ये गोरी सरकार हम पर लगातार जुल्म ढा रही है। हमें जंगल से लकड़ी और घास काटने की इजाजत नहीं मिलती। आखिर हमें भी तो भोजन के लिए लकड़ी और हमारे पशुओं के लिए चारा चाहिए। हम कहाँ से लाएं ये सब? यदि इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक नहीं होगा तो आखिर किसका होगा? बोलो साथियों।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने,
4: सही कह रहे हैं मुंगा भाई।
2: इसी भूमि पर हम पैदा हुए, बड़े हुए, अब इस जंगल पर हमारा नहीं तो फिर किसका अधिकार होगा? आखिर हम इस जंगल के पेड़ों को तो नहीं काट रहे, हम तो यहाँ से लकड़ी और घास ही तो काट रहे हैं। फिर ये गोरी सरकार हम पर क्यों जुल्म करती है? ये कौन होती है हमारा हक मारने वाली? साथियों, आज तो हम घास काट कर सत्याग्रह करके ही रहेंगे।
3: बिल्कुल
4: बिल्कुल,
2: चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों नहीं लगानी पड़े। साथियों, बस मुझे इतना ही कहना है, जो कुछ बच गया है उसे भाई राम प्रसाद पूरा करेंगे।
3: भूखा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
4: हम तुम्हारे साथ हैं।
3: भूखा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: हम तुम्हारे साथ हैं।
6: साथियों, भाई मूका सच कह रहे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। गांधी जी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से अधिक दोषी तो जुल्म सहने वाला होता है। हमने इस गोरी सरकार का बहुत जुल्म सह लिया, अब हम और अधिक दोषी नहीं बनना चाहते। हमें गांधी जी के इस उपदेश को सामने रखकर गोरी सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ एक होना होगा और उसके लिए इसका विरोध करना होगा, तब ये सरकार जीतेगी। कहां तो ये गोरे हमारे देश में मेहमान बनकर आए और कहां ये हम पर ही राज करने लग गए। अब सहन नहीं होता ये सब, इसलिए आओ साथियों, आज हम चंदन के इस बाग में पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल घास ही काटेंगे। इस संकल्प के साथ आओ, हम सब मिलकर घास काटें।
7: हम तुम्हारे साथ हैं।
5: मूका, तुम घास नहीं काट सकते, तुम्हें अपनी गिरफ्तारी देनी होगी।
2: गिरफ्तारी? आखिर किस जुर्म में? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया।
5: इतने सारे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हो और कह रहे हो मैंने कोई जुर्म नहीं किया।
6: लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना जुर्म नहीं है?
5: ये तुमसे ज्यादा हम अच्छी तरह से जानते हैं।
2: तुम क्या जानोगे क्या होती है देशभक्ति? तुम तो बिक चुके हो। हमारे ही साथी होकर हम पर बंदूक तानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
5: लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मूका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
2: कर लो गिरफ्तार।
5: सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उनको।
2: कर लो गिरफ्तार, इसका परिणाम भी सोच लो।
5: वह तो बाद में देख ही लेंगे।
8: अरे साथियों, सुना तुमने, हमारे मूका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो गोरी सरकार के कैदी बन गए हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो उनके आखिरी दर्शन तो कर लें। क्या पता अब उनसे कब भेंट हो पाए। तो चलो साथियों, चलो उठो, आओ चलो चलो।
9: रेंजर मेहता
5: जी,
9: देख रहे हो इस जनसराब को?
5: हाँ देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, भीड़ का गुस्सा भी देख रहा हूँ।
9: जानते हो इनसे कैसे निपटना है?
5: हमारे पास इन बंदूकों के सिवाय और कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
9: नहीं मेहता, तुम भूल रहे हो, हमारे पास पूरी पुलिस फोर्स है।
5: वो तो है इंस्पेक्टर साहब, पर भीड़ को देखते हुए हमारी फोर्स बहुत कम दिखाई देती है।
9: मेहता, तुम कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो, हमारे जवानों के पास भरी हुई बंदूकें भी तो हैं।
5: ये सभी मूका के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये उसका अभिवादन करना चाहते हैं। एक गिरफ्तार व्यक्ति का अभिवादन, यही है हमारी भारतीय परंपरा।
9: अरे तुम देखते रहो मेहता, कौन किसका किस तरह से अभिनंदन करता है।
5: हे भगवान।
9: सिपाहियों तैयार हो जाओ, इस भीड़ पर अत्याचार शुरू कर दो।
5: देख रहे इंस्पेक्टर साहब, लोग अत्याचार सहकर भी हमारे सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं।
9: वही तो मैं चाहता हूँ रेंजर मेहता, ये लोग उत्तेजित होकर कुछ ऐसा करें कि गोली चलाने के लिए मेरे हाथ खुल जाएं।
5: तुम हाथ खुलने की बात कर रहे हो सदरुद्दीन, उधर लोग हसिया लेकर के इधर ही पढ़ रहे हैं।
9: मुझे तो इसी घड़ी का इंतजार था। सिपाहियों तैयार हो जाओ, ये लोग उस पॉइंट से आगे बढ़े तो गोली चला देना।
5: अरे ये तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे सतीश जी, ये तो आगे बढ़ रहे, कुछ करो वरना हमारी भी जान खतरे में।
10: सिपाहियों फायर!
0: तो इस तरह से गोरी सरकार ने जो चाहा वो होकर रहा। अंततः इस मनोरम शांतिपूर्ण घाटी में पुलिस की बंदूकें गरज उठी, परिणाम स्वरूप 4 लोग शहीद हो गए।
11: अरे?
0: और 30 लोग घायल हो गए।
11: ओ।
0: विशाल जन समुदाय पर गोली चलाकर आखिर ये गोरी सरकार क्या समझती थी कि उसने कोई तीर मार लिया? इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक महिला ने तो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। 2 अन्य महिलाओं एवं एक पुरुष को सिवनी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इन 4 शहीदों के नाम थे गुड्डेबाई साकिन खामरीट, श्रीमती रेनीबाई साकिन खंबा, श्रीमती देवोबाई साकिन भीलवा और बिरजू भोई साकिन मुरझोड़। ये 4 अमर शहीद आदिवासी थे। जंगल सत्याग्रह की लपटें सतपुड़ा के जंगलों में उठी तो खंडवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगांव आदि स्थानों पर आंदोलन तेज हो गया। क्रांतिकारी चेतना को लोक आश्रय मिला, हुकूमत के प्रतिरोध की भावना को पंख लग गए। 103 सेनानी जेल पहुंचे। अंग्रेजों के जुल्म की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती।
8: अरे भाई सुना, ये सदरुद्दीन ने जो गोली चलाई,
11: हाँ,
8: उससे कितने लोग मारे गए हैं?
11: हाँ, 4 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल भी हुए हैं। पर ये गोरी सरकार तो बहुत ही जल्लाद निकली।
8: क्यों, क्या हुआ क्या?
11: अरे तुमने नहीं सुना, अभी तक शहीदों की लाश उनके परिवार वालों को नहीं दी गई है। यही नहीं, घायलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
8: हाँ, ये तो सुना, और ये भी सुना कि सिवनी अस्पताल में भी कड़ा पहरा लगा रखा है।
11: पर ऐसा आदेश दिया किसने होगा?
8: अरे वही है पुलिस कप्तान पेरी, ये उसी की हरकत है।
11: कैसे कैसे लोग होते हैं, इन्हें ना तो लाशों पर दया आती है और ना ही विवश घायलों पर, पूरी कौम ही जल्लाद है।
8: अरे भाई, विदेशी सरकार के स्वदेशी पुलिस कर्मियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे साम्राज्य के प्रति इतने अधिक वफादार होते हैं जितना कि खुद सम्राट भी नहीं होगा।
11: इसीलिए सदरुद्दीन ने सीमेन के आदेश का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया। और उनके सबक सिखाने का आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया था, ताकि यदि मुकदमा चले तो उसके आधार पर खुद को बचाया जा सके।
8: पर भाई अब होगा क्या? अरे हमें मिलाकर पूरे 18 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश सीमेन ने जो दिया है।
11: सीमेन अपने को जितना चतुर समझता है ना, वो है नहीं। देखना वो अपने ही जाल में किस तरह से फंसता है। हमारे क्षेत्र के 2 वकीलों प्रभाकर जठार और नितेंद्र नाथ शील ने हम लोगों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।
8: अरे वाह, देश को ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता है।
11: अब देखना भाई, ये दोनों किस तरह से अदालत में पुलिस कर्मियों की बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं।

0: इस तरह से उन दो वकीलों ने ग्रामीणों का बचाव करने के लिए मुकदमा लड़ना शुरू किया। सीमेन का तबादला सिवनी से कहीं और हो गया।
1: अच्छा,
0: पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपनी किताब लिविंग इन एरा में इस घटना का जिक्र पृष्ठ क्रमांक 166 पर विस्तार से किया है।
1: अच्छा,
0: यद्यपि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सत्याग्रहियों और राजनीतिक बंदियों, खास तौर से बड़े नेताओं के प्रति सहानुभूति बरतते थे, लेकिन सीमेन उन कट्टर अधिकारियों में से था जो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के प्रति अत्यधिक सख्ती बरतने का हामी था। शुक्ल जी ने अपने अभिनंदन ग्रंथ में भी इस घटना का जिक्र किया है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा था अंग्रेजों का शासन, देखा कितना जुल्म ढाते थे वे हम पर।
1: पर काका, मूका लोहार और रामप्रसाद जी का क्या हुआ?
0: रामप्रसाद जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
1: अच्छा,
0: फिर उन्हें 6 माह की सजा दे दी गई। रही बात मूका लोहार की, तो तुम्हें बताएं कि देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को टुरिया के जंगल में सत्याग्रहियों के स्मारक का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ किया गया।
1: अच्छा,
0: इसमें टुरिया एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोगों ने भाग लिया और अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टुरिया ग्राम के पटेल सीताराम ने टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता मुका लुहार तथा उनके साथियों को महाकौशल प्रांतीय प्रतीक स्वरूप ताम्र पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
1: वाह काका वाह, आज तो आपने हमें इतिहास की बड़ी मूल्यवान जानकारी दी है।
0: देखो बेटा, आखिर ये आजादी हमें इतने सस्ते में तो मिली नहीं।
1: हाँ,
0: कि इसका सही मूल्य भी न जान पाए। लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है, इसे हमें ही संभाल कर रखना पड़ेगा बेटा।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। ये दुनिया
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुरसागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे भक्ति गायन। कलाकार हैं माधवी मधुकर झा। ये प्रस्तुति दी उन्होंने भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: गोस्वामी तुलसीदास विरचित गोपाल गोकुल बल्लभी। पहली बार कभी लाइव परफॉर्म करने वाली हूँ, प्रयास करूँगी कोई त्रुटि ना हो।

आचार्य शंकर विरचित भज गोविंदम है और मैं चाहूंगी आप सभी एक साथ कर्तव्य ध्वनि के साथ मेरे साथ गाएंगे ना। वैसे तो काफी बहुत सारे श्लोक हैं, इसमें मैं कुछ श्लोक गाती क्योंकि समय से

शाम और सुबह, सर्दी और वसंत बार बार आते और जाते रहते हैं। काल की स्थिरता के साथ जीवन नष्ट होता रहता है।

आप सभी को मेरे साथ आचार्य शंकर विरचित

और आज की मेरी आखिरी प्रस्तुति है। आप सभी मेरा साथ देंगे, मैं रिपीट भी करवाऊंगी, आप लोगों को भी गाना पड़ेगा साथ में। एक हिंदी भजन आप सभी के लिए।

0: सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां मेरे संगत कलाकारों के लिए होनी चाहिए और आप सभी श्रोतागणों के लिए भी जो इस प्रकार मुझे सुनने के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे माधवी मधुकर झा का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए हैं। वैसे तो वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका दमकता चेहरा, उज्ज्वल आंखें, उनकी विद्वता, बोलने की कला और आत्मविश्वास सभी को मोह लेता था। जिनसे वे वार्तालाप करते थे वे ही उनके हास परिहास करने की क्षमता का परिचय पा जाते थे। सभी से स्वामी जी हंसकर बातें किया करते थे। गंभीर से गंभीर विषयों पर आख्यान देते समय भी वे विषय को सरस भाव से प्रस्तुत करते थे ताकि विषय उबाऊ न बन जाए।
1: बातों के बीच हल्की फुल्की कहानियां, चुटकुले, संस्मरणों का पुट देना उनकी खासियत थी। उनकी बताई गई कुछ कहानियां हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप उनके व्यंग विनोद के बारे में कुछ और बातें करेंगे?
0: श्री रामकृष्ण ने काली माता से निवेदन किया था, माँ मुझे नीरस साधु मत बनाना, मुझे सरस साधु ही बनाना। स्वामी विवेकानंद भी सरस साधु थे। वे बचपन से ही विनोद प्रिय थे। कहा करते थे,
2: मैं साधु हूं तो क्या अपने हृदय को भी उखाड़ कर फेंक दूं? जो तो सन्यास मनुष्य को पाषाण बना देता है, पर ऐसा सन्यास मुझे पसंद नहीं है।
1: स्वामी जी महान प्रतिभाशाली थे और वे अपनी बातचीत, साहित्य और भाषण में परिहास और व्यंग का पर्याप्त प्रयोग करते थे। बचपन में स्वामी जी बहुत से चुटकुले कहा करते थे। उन्हें एक कहानी बहुत अच्छी लगती थी।
2: किसी बुढ़िया के पास एक बकरी थी। एक ठग ने एक दिन उसकी बकरी चुरा ली और उसके पास जाकर बोला,
3: राम राम अम्मा, राम राम,
4: राम राम, राम राम, कैसा है रे?
3: सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है अम्मा, और क्या। एक बात बताऊं आपको?
4: हाँ, बोल।
3: अम्मा, तुम्हारी जो बकरी है ना, वो आज अदालत में जज बन गई है, आपको पता है?
4: अरे बाप रे, ये कौन सी खबर सुना रहे हो बेटा?
2: बुढ़िया बड़ी सरल थी, उसने ठग की बात पर विश्वास कर दिया। वो अदालत गई, उसने देखा कि वहां जो जज के रूप में काम कर रहा है उसके मुंह पर भी बकरी के समान दाढ़ी है। ये देखकर हाथ में रस्सी लेकर जज के पास जा पहुंची और कहने लगी,
4: आजा आजा मेरी बकरी, आजा। अरे अम्मा, अरे दूर हटो, आजा आजा, अरे दूर हटो, दूर हटो अम्मा। अरे मैं बकरी? ओहो, अरे सिपाही, अरे इसे यहाँ से कोई हटाओ, अरे दूर हटो अम्मा, आजा आजा।
2: जज की बात सुनकर बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया और वो बोली,
4: क्या तुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? तू मेरी बकरी था, मैंने बड़े जतन से तेरा पालन किया और तू सब भूल गई, आजा आजा।
2: अदालत में कुछ लोग उस बुढ़िया को पहचानते थे। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। बुढ़िया का किस्सा सुनने पर सब हंसने लगे। अंत में ठग को पकड़कर थाने भेज दिया गया।
0: स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे तब बहुत से लोगों के साथ उनकी पहचान हुई। स्वामी जी ने मजाक में सब लोगों को एक एक मजेदार नाम दे दिया था। हरमोहन को उन्होंने हारमोनियम कहा, गंगाधर को गेंजेज और हरिप्रसन्न को इलाहाबाद का बिशप।
1: बाबूराम बड़े भक्त थे। ईश्वर का नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। स्वामी जी ने उनको नाम दिया भोपू। किशोरी मोहन दाढ़ी रखते थे और बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। वे बन गए अब्दुल। यज्ञेश्वर भट्टाचार्य की भी दाढ़ी थी और उन्हें स्वामी जी फकीर कहते थे। स्वामी जी ने उनका नाम बनाया फकीरुद्दीन हैदर।
0: अमेरिका में भी स्वामी जी ने अनेक लोगों को मजेदार नाम दिए थे। जॉर्ज हिल और उनकी पत्नी बड़े भक्त थे। स्वामी जी ने उन दोनों को फादर पोप और मदर चर्च बना दिया। गुडविन बैडविन बन गए। सिंगरावेलू मुदलियार स्वल्पाहारी थे, उनका नाम किडी हो गया। तमिल भाषा में किडी का अर्थ होता है पंछी, यानी चिड़ियों जैसा स्वल्पाहारी। जापानी पंडित ओकाकुर को उन्होंने अक्रूर काका कहा।
1: स्वामी जी को दिखावटीपन से बहुत चिढ़ थी। कहते थे, भक्त हो ठीक है, उसका प्रदर्शन करने की क्या जरूरत। जो लोग ऐसा करते थे वे उनका मजाक बनाते थे।
0: गाजीपुरा में एक आदमी रहता था जिसे सब लोग ठाकुरदा कहते थे। गांजा अफीम और भांग में तो वो सिद्ध पुरुष था। उसकी धारणा थी कि रोना ही धर्म का लक्षण है। स्वामी जी ने एक दिन उससे कहा, आओ ठाकुरदा, आज मैं तुम्हें वेद सुनाऊंगा। ठाकुरदा बड़े आनंद से वेद सुनने बैठे। स्वामी जी ने मजाक में कहा, वेद का प्रथम श्रोत है,
2: कस्मिंश्चित वने भासुरको नाम सेह प्रतिवसति स्म।
0: ठाकुरदा को पता ही नहीं चला था कि ये वाक्य हितोपदेश का है और उसका अर्थ है, किसी वन में भासुरक नामक सिंह रहता था। उन्होंने तो इसे वेद मंत्र समझ लिया और सुनते ही रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहने लगे,
2: आहा क्या पद लालित्य है, कैसा शब्द विन्यास है, कितना भावपूर्ण श्लोक है।
0: इस प्रकार स्वामी जी वेद पाठ कर रहे थे और ठाकुरदा जमीन पर लोट लोट कर रो रहे थे। इसी बीच जब शिरीष चंद्र कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने उनसे कहा,
2: अभी तुम भागो, मैं ठाकुरदा को वेद सुना रहा हूँ।
0: शिरीष तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचकर जोरों से हंसने लगा।
1: जयपुर में पंडित सूर्य नारायण एक बार स्वामी जी से बोले,
3: मेरा अवतारवाद में जरा भी विश्वास नहीं है। यदि कहूं कि मैं भी एक अवतार हूं, तो क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं अवतार नहीं हूं?
1: स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया,
2: नहीं भाई, हिंदू शास्त्र में तो सुअर मछली और कछुए को भी अवतार माना गया है। आप बताइए कि आप इनमें से कौन से अवतार हैं?
0: बंगाल के प्रख्यात नाट्यविद अभिनेता गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। उनका लिखा नाटक बुद्ध चरित बहुत जनप्रिय हुआ। एक दिन स्वामी जी उस नाटक का मंचन देखने गए। नाटक समाप्त होने के बाद स्वामी जी गिरीश बाबू के कमरे में बैठे। वहां और लोग भी थे। जिस अभिनेता ने बुद्ध की भूमिका की थी वो भी वहां मौजूद था। इसके अतिरिक्त एक ऐसा विद्याविलासी व्यक्ति भी था जो सदैव अपनी विद्या की धाक जमाने का अवसर देखा करता था। उस गर्वीले आदमी ने गिरीश बाबू से पूछा,
5: क्या बुद्ध देव नास्तिक थे?
0: गिरीश बाबू ने उनसे कहा,
6: स्वामी जी से ही पूछिए।
0: उसने जब स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया,
2: यहाँ तो बुद्ध देव स्वयं हाजिर है, उन्हीं से पूछ लीजिए।
1: भ्रमण करते हुए जब स्वामी राजस्थान पहुँचे तब एक राजपूत उनके पास आकर बोला,
5: स्वामी जी, राजस्थान में सब आदमी कहते हैं वे बहुत ऊंचे कुल के हैं। कोई आपने सूर्य वंश को कहवे तो कोई चंद्र वंश को, तो आप मने बताओ कि मैं कौन वंश को हूँ।
1: तब स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: देखो भैया, सूर्य वंश और चंद्र वंश तो पुराने पड़ गए हैं, तुम एक नया वंश शुरू करो, आज से तुम तारा वंश के हो जाओ।
0: परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी ने अच्छी तरह से देश की हालत देखी समझी थी। उन्होंने देखा कि सभी लोग छुआछूत और जात पात आदि को ही धर्म मानते हैं। ये देखकर उनका हृदय बड़ा दुखी था, पर कभी कभी वे इसे लेकर मजाक भी किया करते थे। उन्हें अहिंसा परमो धर्मः नामक कहानी बड़ी पसंद थी। इसे सुनाते हुए वे कहते थे,
2: किसी मकान का नाम था अहिंसा परमो धर्मः, एक दिन एक चोर उस घर में घुस गया।
7: अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर! अरे वाह, कितना सारा माल है इस सेठ के पास! खर्राटे मार के सो रहा है। चल अपना काम शुरू कर दे उस्ताद। अरे वाह, मोतियों के हार, सोने के हार। सोने के सिक्के, अरे आज तो सारा माल तेरा, सारा के सारा माल पोटली में।
8: चल जल्दी से सब कुछ समेट ले,
7: चल जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप, रास्ता रास्ता कहां से? अरे भाग,
9: अरे उधर
7: रास्ता कहां से है?
9: कौन है? अरे देखो कौन है, देखो भाई
10: आवाज कहां से
9: है? अरे चोर है, चोर चोर पकड़ो,
11: चोर चोर
9: चोर,
10: अरे पकड़ो इसे,
11: अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
9: अरे एक काम करो, सेठ जी को लेके बोलो।
10: हाँ जाता
7: हूँ। छोड़ दो मुझे।
9: सेठ जी को बुलाओ।
10: सेठ जी उठो जल्दी, चोर घुसा है अपने घर में।
12: कौन घुसा है?
10: अरे चोर,
12: चोर घुसाया। अरे बाप रे, अरे मेरी लाठी,
10: ये लो आपकी लाठी,
12: अरे पकड़ उसे, नहीं तो भाग जाएगा, मेरा माल लूट के ले गया। अरे मेरा माल लूट के ले गया।
10: चोर दो।
12: अरे क्यों मारते हो बेचारे को? अरे हटो हटो, तुम हटो, ऐसे मारा जाता है क्या? अरे ठीक है, चुप रहो चुप रहो। अरे जानते नहीं हो क्या, अहिंसा परमो धर्मा।
10: तो फिर इस चोर का क्या करें?
12: अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ ना इस चोर का क्या करना है। एक काम करो, तुम लोग ध्यान से सुनो, रक्तपात करना बहुत खराब है, उसको मारने से रक्तपात हो जाएगा, इसीलिए तुम सब मिलके इस चोर को पत्थर से बांध दो। क्या करो?
10: पत्थर से बांध देते हैं।
12: हाँ, उसके बाद इस चोर को नदी में फेंक दो।
10: हाँ, ये सही है, ये सही है,
12: है ना?
10: अरे मुझे माफ कर दो।
1: लोकाचार के आडंबर को ही लोग धर्म समझते हैं। स्वामी जी ये सब देख सुनकर हैरान हो जाते थे, इस बात का मजाक भी बनाते थे। वो कहते थे,
2: सनातन हिंदू धर्म का गगनचुंबी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जाने के न जाने कितने मार्ग हैं, और वहां क्या नहीं, वेदांती के निर्गुण ब्रह्म से लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति चूहे पर सवार गणेश जी छोटे देवता गण जैसे षष्ठी माँ काल इत्यादि, और भी न जाने वहां क्या क्या मौजूद है। फिर वेद वेदांत दर्शन पुराण एवं तंत्र में ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसकी एक एक बात से भाव बंधन टूट जाता है, और लोगों की भीड़ का तो कहना ही क्या, 33 करोड़ लोग उस ओर दौड़ रही हैं। मुझे भी उत्सुकता हुई और मैं भी दौड़ने लगा, किंतु ये क्या, मैं तो वहां जाकर एक अद्भुत कांड देखता हूं। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है। दरवाजे के पास एक 50 सिर वाले, 100 हाथ वाली, 200 पेट वाली है, 500 पैर वाली मूर्ति खड़ी है, उसी के पैरों के नीचे सब लोट पोट हो रही हैं।
0: स्वामी जी सरस भाव से कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,
2: एक व्यक्ति से इसका कारण पूछने पर उत्तर मिला,
13: भीतर जितने देवता हैं उन्हें दूर से प्रणाम कर लेने अथवा 2 फूल डाल देने से ही उनकी पूजा हो जाती है। असली पूजा तो इनकी होनी चाहिए जो दरवाजे पर विद्यमान है, जो वेद वेदांत दर्शन पुराण और शास्त्र तुम देख रहे हो उन्हें कभी कभार सुन लो तो भी हानि नहीं, पर इनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा।
2: तब मैंने फिर पूछा, इन देवता जी का भला क्या नाम है? उत्तर मिला,
13: इनका नाम लोकाचार है।

0: चेन्नई के ब्राह्मणों को चंदन तिलक देखकर एक बार स्वामी जी ने कहा,
1: बंगाल से वैष्णव लोगों के तिलक पर इनका इतना विश्वास है कि तिलक विलक सब कोई कहे, पर रामानंदी तिलक दिखत गंगा पार से यम गौ द्वार के खिड़क।
2: बंगाल के साहित्यकारों के नारी सुलभ आचार व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये एक दल देश में उमड़ रहा है जिसमें पैदा लोग औरतों की तरह पहनते ओढ़ते नजाकत भरी बोली छांटते तिरछी चाल से चलते हैं। ये किसी की आंख पर आंख रखकर नहीं बोल सकते, ये पैदा होने के दिन से ही प्रेम की कविताएं लिखते हैं और विरह की आग में रो रो कर जिया करते हैं।
2: स्वामी जी सिर्फ दूसरों का मजाक ही नहीं बनाते थे,

0: स्वामी जी किसी भी संप्रदाय को छोड़ते नहीं थे। हमारे देश के पंडित, पुजारी और पंडे पैसे वसूलने में तो तेज हैं ही, पर दूसरे धर्मों के ढोंगी पुरोहितों की भी कमी नहीं है। स्वामी जी मजाकिया अंदाज में एक कहानी सुनाते थे।
1: एक जापानी जहाज समुद्र में चलते चलते खतरे में पड़ गया। आकाश में बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। सब यात्री मिलकर जहाज के पुरोहित के पास गए और बोले,
2: स्वामी जी बहुत विपदा का समय है। स्वामी जी क्यों भाइयों,
3: बहुत बड़ी विपदा आ गई है महाराज।
2: स्वामी जी कुछ धर्म की बातें सुनाइए जिससे हम सबका कल्याण हो।
3: हाँ हाँ।
1: ये सुनते ही उन्होंने अपनी टोपी उतारी और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका धर्म तत्व चंदा उगाहने में ही निहित था। सब पंडे एक जैसे हैं।
4: अमेरिका में रहते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बारे में बहुत मजाक करते थे और वे कहते थे,
1: शरद जब अंग्रेजी में लेक्चर देता है तो ऐसा लगता है जैसे चंडी पाठ कर रहा हो, और गंगाधर उसकी तो नाक इतनी लंबी है और उत्तेजित हो जाने पर नाक से बोलने लगता है।
0: डॉक्टर राइट स्वामी जी के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने पूछा,
5: स्वामी जी क्या मैं डॉक्टर राइट भी ब्रह्म हूं?
1: जरूर।
0: एक दिन जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे तो डॉक्टर राइट को थोड़ी देर हो गई। जब वे वहां पहुंचे तो स्वामी जी ऊंचे स्वर में बोले,
1: आप लोग सावधान हो जाइए, ब्रह्म आ रहे हैं।

अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों को न जानने पर भी कभी कभी बहुत ही हास्यकर परिस्थिति बन जाती है। स्वामी जी जब राजस्थान भ्रमण कर रहे थे तो वे अपने को एक नए माहौल में पाए। वहां की रीति रिवाजों से वे अपरिचित थे, कई बार वे गलती भी कर बैठते थे।

0: स्वामी जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे कहते थे,
1: अच्छे सन्यासी बनने के लिए अच्छा रसोईया भी बनना पड़ता है।
0: बहुत ही सादे भोजन को भी वे बेहतर तरीके से पका सकते थे, जिसे लोग तृप्त होकर खाते थे। स्वामी जी पुलाव बहुत अच्छा पकाते थे। तरह तरह के पुलाव पकाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इस मामले में वे बहुत उदार थे। बंगाली भोजन में विलायती और मुगलई व्यंजन की मिलावट वे अक्सर करते थे।
2: स्वामी जी को मीठा बहुत पसंद था। बचपन में उनके घर पर मिठाई वाला आता था, सब बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते थे। स्वामी जी, जिनका नाम नरेन था, बहुत शरारती थे। एक बार मिठाई की हांडी से एक मिठाई उठाकर अपनी जीभ से छुआकर उसे फिर से हांडी में डाल दिया। सब शोर मचाने लगे, मिठाई वाला भी बिगड़ने लगा। नरेन बोले,
3: अब क्या होगा, पूरी हांडी की मिठाई तो झूठी हो गई है। अब तो मुझे ही सारी मिठाई खानी पड़ेगी। तुम लोग मेरी झूठन थोड़ी खाओगे।
0: स्वामी जी मिर्च बहुत खाते थे। 8-10 हरी मिर्च के बगैर उनका भोजन पूरा नहीं होता था। अमेरिका में जब कभी भी वे खाना पकाते थे, कोई खा नहीं पाता था। उनके लिए स्वामी जी अलग सब्जी पका कर देते थे। वे लोग भी मजाक में कहते थे कि स्वामी जी मिर्च डालकर काली मिर्च की सब्जी बनाते हैं।
2: स्वामी जी भोजन रसिक तो थे ही, पर उनका आधे से ज्यादा जीवन अर्धाहार में बीता था, अनाहार में बीता था। पिता की मृत्यु के बाद अधिकतर दिन वे फांका कशी में ही बिताते थे। फिर भारत भ्रमण के दौरान ज्यादातर दिन अनाहार के ही होते थे। कलकत्ते के मठ के प्रारंभिक दिनों में सभी संन्यास

0: भीख के अनाज पर ही आश्रित थे।
1: अपने भूखे रहने की कहानी स्वामी जी सबको सुनाते थे और उनकी एक प्रिय कहानी थी, भ्रमण के दौरान हाथरस स्टेशन पर शरत चंद्र गुप्त से मुलाकात की कहानी। शरत चंद्र हाथरस स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। भूखे प्यासे स्वामी जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटे थे। शरत चंद्र की नजर पड़ी, उन्होंने पूछा,
2: स्वामी जी क्या आप भूखे हैं?
3: हाँ।
2: तो फिर घर चलिए, आइए।
3: क्या खिलाओगे?
1: शरत चंद्र ने एक उर्दू शेर कहा था जिसका मतलब है, हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें अपना कलेजा भी मसाले में पकाकर खिला सकता हूं। यही शरत चंद्र बाद के दिनों में स्वामी जी के प्रिय शिष्य शरत महाराज बने थे।
0: स्वामी जी को फल बहुत पसंद थे। एक बार सन 1896 में लंदन में एक अद्भुत घटना घटी। वहां की सबसे बड़ी फलों की दुकान का नाम था विलियम व्हाइटली। स्वामी जी के किसी भक्त ने वहां काफी पैसा जमा करवा कर ये कहलवा दिया कि बढ़िया फल का टोकरा रोज सुबह स्वामी जी के पास पहुंचाया जाए। रोज सुबह 11 बजे फल स्वामी जी के पास पहुंच जाते थे। स्वामी जी के पूछने पर भी पता नहीं चला कि वो फल कौन भेजता है। एक दिन अनानास पाकर स्वामी जी बेहद खुश हुए। लंदन में अनानास? अजीब बात है, पर गुडविन जो उनके साथ रहते थे अनानास छील ही नहीं पा रहे थे। कभी देखा जो नहीं था। स्वामी जी ने हंसते हुए उनसे चाकू ले लिया, छील कर काट कर थोड़ा चीनी डालकर सबको खिलाया। पहली बार सबने वो फल चखा, पर दाता का नाम किसी को मालूम न पड़ा। लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो दाता श्रीमती मैक्लाउड ही थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: फ्रेम, बॉम्बे का वे गुप्त हथियार जो फ्लोटिंग ताबूत बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा अजीबोगरीब और विशाल गुप्त हथियार बनाया था जिसे एक महान और शक्तिशाली तैरने वाली मशीन कहा गया था। ये था फ्रेम, एक ऐसा जहाज जिसे बॉम्बे के गवर्नर चार्ल्स बून की हताशा ने जन्म दिया था। बून मराठा नौसेना और उसके महान सेनापति कान्होजी आंगरे को नष्ट करने के जुनून में सवार थे। 1721 तक भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा समुद्री डकैती, जैसे कि वे कहते थे, को दबाने के प्रयास शर्मनाक विफलताओं की एक श्रृंखला बन चुके थे। बून ने फैसला लिया कि कोंकण तट के चट्टानी और ऊंचे किलों, जिन्हें भारतीय जिब्राल्टर कहा जाता था, को तोड़ने के लिए पारंपरिक युद्धपोत काफी नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फ्रेम का निर्माण कराया। क्या आप जानते हैं कि ये मशीन वास्तव में कैसी दिखती थी? ये आधा बेड़ा और आधा किला था। इसका निचला हिस्सा सपाट था ताकि ये केवल 6 फीट गहरे पानी में भी किनारे के करीब रेंग सके। इसके किनारे एक विशेष मिश्रण से बने थे जिसके बारे में दावा था कि वे पूरी तरह से कैनन प्रूफ, तोप के गोलों का असर ना होने वाले हैं। इसमें 12 विशाल तोपें लगी थीं जो 48 पाउंड के गोले दागती थीं, जो उस समय की मानक भारी तोप खाने के आकार से दोगुना था। फ्रेम को उस अचूक हथियार के रूप में देखा जा रहा था जो युद्ध को समाप्त कर देगा। 1721 में मराठों को मजबूत गढ़ घेरिया पर हमले के दौरान बड़े उत्साह के साथ इस मशीन को खींचकर मोर्चे पर लाया गया। अधिकारियों ने अपनी सांसें थाम ली और तोपों में आग लगा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसने अंततः फायर किया तो क्या हुआ? किले की दीवारों को नष्ट करने के बजाय विशाल लोहे के गोले जहाज से थोड़ी ही दूर समुद्र में गिर गए। किसी ने इंजीनियरिंग की एक बड़ी गलती कर दी थी। तोप की गाड़ियां या तो बहुत ऊंची थी या पोर्ट बहुत नीचे थे, जिससे तोपों को सही ढंग से निशाना साधना असंभव हो गया था। अपमानित अंग्रेजों के संशोधनों के लिए फ्रेम को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा प्रयास और भी बदतर रहा। घेरिया का किला ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित था और फ्रेम एक सपाट निचली सतह वाला बेड़ा था। दूर से इसके गोले दुश्मन से ज्यादा ब्रिटिश लैंडिंग पार्टियों के लिए खतरा थे, और अगर ये बेहतर कोण पाने के लिए करीब जाता तो ये एक आसान शिकार बन जाता। क्या आप इसके कैनन प्रूफ कवच की विडंबना जानते हैं? जबकि इसके किनारे सीधे प्रहार को रोक सकते थे, इसके सपाट और भीड़भाड़ वाले डेक ऊपर से पूरी तरह असुरक्षित थे। मराठा रक्षकों ने बस बेड़े पर ऊपर से गोले बरसाए, जिससे उस पर सवार नाविकों को भारी नुकसान हुआ। वह शक्तिशाली मशीन अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुकी थी। फ्रेम की विफलता कंपनी के सैन्य इतिहास के अंधकार युग का एक सटीक प्रतीक है। एक ऐसा युग जो कुप्रबंधन से भरा था। इसके विलियम जेम्स जैसे पेशेवर नौसैनिक कमांडरों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को इन किलों को जीतने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा। अभी आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।